जय गुरु भाई बहनों, आप सबको गणमान स्वागत करो हूँ हमारी आज की परबात की सभा में। आप सब हम रिया हो आपनो सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM माते मु हूँ आपने हाथे आपनी बुनंजलि पारेश्वर ने आज वार सोमवार ने तारीख 15 जून 2026 नो दाड़ो है। भाई बहनों में देखी रहे हो कि अपने स्टूडियो की घड़ी में परबात ना 6 बजे के हैं। तब आपने शुरुआत करो परबात ने सभा में प्रसारित थवा वाला कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। तो भाई बहनों आज सभा ने शुरुआत करेंगे सप्ती की पहले भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की। इन्हें मैं अपना हम रंगा आज न सुविचार ने हाथी भक्ति में गीता में मानस क्रम में अगाड़ी बढ़ेंगा किसान भाई बहनों तक जुड़ू कार्यक्रम खेती बाड़ी। आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 6:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने मु आपनी बुन अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इस कड़ी में अपने बीजा कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे जेने कई बालकनु बालपन एटले कार्यक्रम सच्चा बचपन। आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 7 बजे प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मु आपनी बुन अंजलि पारेश्वर ने हाथे। इस कड़ी में अपने अगाड़ी रुख करेंगे तमारी ने अमारी आवाज कार्यक्रम युवाओं ने आवाज ने आड़ी। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 7:30 माते प्रस्तुत करता जागृति भट्ट ने कशिश पारेश्वर ने हाथ थी। इस कड़ी में अपने अगाड़ी बढ़ेंगे अपने अधिकार कानून नियम तक जुड़ कार्यक्रम सच्चा स्वराज। आ कार्यक्रम आप हमरी शकोगा ठीक 8 बजे प्रस्तुत करता अंजलि पारेश्वर इटले मो ने मारे हाथे रहेंगे मारे रेडियो साथी जागृति भट्ट। अनस क्रम में बढ़ते तक अपना रुख करेंगे राजस्थानी गीत तक जुड़ कार्यक्रम लोक संगीत। आ कार्यक्रम आप हम रिश्कोगा ठीक 8:30 माते श्रोताओं बिजु कार्यक्रम शुरू था का ठीक 9 बजे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य। आ कार्यक्रम लेने आवेगा प्रस्तुत करता कशिश पारेश्वर ने मनीषा पटेल। इन्हें बाद भाई बहनों ठीक 9:30 माते आप हम रोगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी बहन बुनो हमारी आप तक की हिंदी मुलाकात था का कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में ठीक 10 बजे। आ कार्यक्रम लेने आवेगा हमारे रेडियो साथी। इन्हें बाद बहन बुनो शुरू था का अपनी पसंद का कार्यक्रम जिन्हें आप हमारी शकों का प्रभात 11 तक की बोपर 1 बजे वैस में। बहन बुनो अगर आप भी अपनी फरमाइश न गीत ने हम रोचा हो तो मैंने लेकिन मोकली शको फिल्म नाम गीत ना बोल आपनो नाम ने अपना गाम नो नाम हमारे अणा व्हाट्सएप नंबर माते हमारो नंबर है 9460051234। तो बहन बोनो आ तो हती हमारी आज ने प्रभात ने सभा में प्रसारित थवा वाली कार्यक्रमों ने संक्षिप्त रूपरेखा। अब आवो अपने सभा ने शुरुआत करा भक्ति श्रद्धा ने आस्था तक जुड़ कार्यक्रम आराधना तक की।

समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है, इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की जीडीपी से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
1: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी तकी एनीमिया रोग आपने थी सके, जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
3: होवे भाइयों बोनू, आ लक्षण आपने अपने में देखाए तो आपने अपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाने एनीमिया ने निःशुल्क जाँच करावी सुवे। आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते अनीमिया उपचार ने गोरिये निशुल्क मले है। होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपना ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे। होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो अनीमिया थकी बची सकंगा।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
6: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है।
8: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
7: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जाएगा।
8: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ू जीवन है।
7: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ू जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
8: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ू ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
7: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार कर रही है। मानी दुआ, पिता ने उम्मीद, मुसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, किनकी घेरे कोई आपरो इंतजार कर रही है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनों ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हमरी रहे हो आपनो सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो घणीमान स्वागत करो हो अमारे आज से कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थई सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लईने एक ना विषय ने हाते। तो भाई बुनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तकी बातचीत नो विषय है फसल विविधीकरण एटले हांगणी खेती नु हुं महत्व है ने हरते आपणे आने अपनावुं जोईए। तो आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घणा काकानी वाते थेंगा पण कार्यक्रम शुरू करा एने पहले आपने हमरा विदो आ गीत ने मोरे करा आपणी वाते। तो भाईन बोनू आप हमरते रहजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: માઇનબોનું ગીત તો અહીં પૂર્ણ અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું ઘણેમાં સ્વાગત કરો હો અમારે આજે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં. જેમ કે ભાઈનબોનું ગીત કે પહેલા આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હો કે ફસલ વિવિધીકરણ એટલે હાંગણી ખેતી શું કહેવાય હે, આનું શું મહત્વ હે ને હરતે આપણને આને અપનાવવું શું હે, તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ થકી જોડી રહી માંગીલાલજી. તો સપ્તકી પહેલા આપણે હામરી લાણાની વાત અને મોરે કર આપણી વાતે. સર નમસ્કાર.
1: નમસ્કાર જી.
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતે હૈ વાગ રેડિયો પરિવાર મેં.
1: જી ધન્યવાદ.
0: સર જૈસા કે આજ આપ હમારે કાર્યક્રમ સે જુડ રહે હૈ ઓર આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં આપસે બાતચીત કા વિષય હૈ ફસલ વિવિધીકરણ કો લેકર.
1: જી
0: જાનેંગે આજ કાર્યક્રમ કે માધ્યમ સે કે યે ક્યું જરૂરી હૈ, સાથ હી ઇસકી આવશ્યકતા ક્યું હૈ ઓર ક્યા લાભ હમે મિલતે હૈ.
1: જી
0: તો સબસે પહેલે આપ હમે યહી બતાઈએ કે ફસલ વિવિધીકરણ ક્યું જરૂરી હૈ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કે લિયે.
1: તો દેખે આપકા બહોત અચ્છા સવાલ હૈ ઓર વર્તમાન મેં ઇસ વિષય પર જો હૈ બાત કરના બહોત જરૂરી હૈ. તો દેખીએ પિછલે કુછ વર્ષો સે જો જલવાયુ પરિવર્તન હૈ, અનિયમિત વર્ષા હૈ, બઢતા તાપમાન હૈ, કીટો કા પ્રકોપ હૈ, તો ઇસમેં ક્યા ખેતી હૈ જિસમેં એક તો લાગત જો હૈ કાફી બડી હૈ, દૂસરી કિસાનો કે લિયે એક ચુનૌતી ભી હૈ.
0: બિલકુલ.
1: એસી પરિસ્થિતિઓ મેં કેવલ એક હી ફસલ પર નિર્ભર રહેના જોખિમપૂર્ણ હો સકતા હૈ. ઇસલિયે આજ કે સમય કી માંગ હૈ કે કિસાન ભાઈ હૈ વો ફસલ કો વિવિધીકરણ અપનાએ.
0: બિલકુલ.
1: તો યે બહોત જરૂરી હૈ ઓર ફસલ વિવિધીકરણ કા અર્થ કી એક વાત કરતે તો હમ જાનતે હૈ કે એક હી ખેત મેં યા એક હી વર્ષ મેં વિભિન્ન પ્રકાર કી ફસલે જૈસે અનાજ હૈ, દાલે હૈ, તિલન હૈ, સબ્જિયાં હૈ, ફલ હૈ, ચારા હૈ, તો ફસલો કા ઉત્પાદન કરના, તો ઇસ તરહ સે હમ સમજ સકતે હૈ કે અનેક પ્રકાર કે એક હી જમીન પર યા ફિર એક હી વર્ષ મેં અલગ અલગ ફસલે બોના તો ફસલ વિવિધીકરણ હૈ.
0: બિલકુલ.
1: ઇસકે સાથ મેં યે હૈ કે જૈસે હમ બાત કરતે હૈ હમારે યહાં કે સમાજ કી, તો યે પરંપરાગત જો આપ કઈ વર્ષો સે હૈ જો કૃષિ કા એક મહત્વપૂર્ણ હિસ્સા રહા હૈ હમારે સમાજ કા, જિસને સદીઓ સે પરિવારો કો પોષણ, આજીવિકા ઓર ખાદ્ય સુરક્ષા પ્રદાન કી હૈ.
0: બિલકુલ સર. તો સર જૈસા કે આપને હમે યે બતાયા કે ફસલ વિવિધીકરણ ક્યું જરૂરી હૈ ઓર યે ક્યા હોતા હૈ, યહી અબ બાત કરતે હૈ કે ઇસકી આવશ્યકતા ક્યું હૈ.
1: જી તો દેખે ફસલ વિવિધીકરણ કી હમ બાત કર રહે હૈ તો વર્તમાન મેં બહોત બડી આવશ્યકતા ઇસકી યે હૈ કે જલવાયુ પરિવર્તન કે કારણ બહોત સારા જોખિમ આપકો દેખને કો મિલ રહા હૈ.
0: બિલકુલ.
1: જૈસે અનિયમિત વર્ષા, કભી જ્યાદા હો ગઈ, કભી કમ હો ગઈ, ઇસકે સાથ મેં કભી સૂકા પડ જાતા હૈ, કભી અધિક વર્ષા હો રહી હૈ, તો ઇન પરિસ્થિતિઓ મેં ક્યા હૈ કે જો ફસલે હૈ સભી ફસલે એક સાથ પ્રભાવિત નહીં હોતી.
0: બિલકુલ.
1: જબકી અગર એક હી ફસલ હોગી હો સકતા હૈ કે પૂર્ણ તરહ સે નષ્ટ હો જાય, તો ઇસલિયે કે એક ફસલ અગર ખરાબ હોતી હૈ તો હમે દૂસરી ફસલ મિલ જાતી હૈ, ઇસલિયે ભી યે જરૂરી હૈ. દૂસરા હૈ પરિવાર કે લિયે પોષણ મેં સુધાર કે જબ હમ વિવિધ પ્રકાર કી ફસલે કરતે હૈ ઉગાતે હૈ હમારે ખેતો મેં તો યહાં પે આપકો પરિવાર કે લિયે અનાજ મિલ જાયેગા, દાલે મિલ જાયેગી, સબ્જીયાં મિલ જાયેગી, ફલ મિલ જાયેંગે. અગર આપ એક હી પ્રકાર કી જૈસે અનાજ હી કરેંગે તો બાકી ચીજે આપકી છૂટ જાયેગી.
0: બિલકુલ.
1: તો આપકી પોષણ થાલી હૈ વો ભી ઉસ તરહ સે નહીં રહેગી જૈસે પરંપરાગત હુઆ કરતી થી.
0: જી જી.
1: ઇસી કે સાથ મેં इससे दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है ये दिखेगा कि जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, तो उनको इन जो विविध फसलें मिलती है जिसे हम बात करते हैं कि जिसे फूड डाइवर्सिटी, तो जैसे अगर भोजन की विविधताएं होगी तो आपके शरीर को सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है वो आसानी से उपलब्ध होंगे. जबकि अगर आप एक ही चीज बार बार खाएंगे या बार बार बोएंगे तो उसमें क्या कि आपके शरीर के लिए भी नुकसान है, दूसरा आपकी खेती के लिए भी आपके लिए भी जोखिम भरा रहता है.
0: बिल्कुल.
1: इसके साथ में ये है कि जैसे विविध फसलों की हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा उम्मीद बनी रहती है आय का स्रोत कि जब विविध प्रकार की फसलें होती है तो उसमें क्या है कुछ फसलें ऐसी होती है जो आपके बेचने के लिए होती है, कुछ है अपने खाने के लिए होती है, कुछ फसलें ऐसी होती है जो खाने के लिए और बेचने के लिए, तो आपको वहां से जो है परिवार के लिए आपको एक आय का स्रोत भी बनती है विविधता जो फसलों में होती है. इसके साथ ही जब बाजार में हम बात करते हैं कि फसलों की बिक्री है तो होता क्या है कि एक फसल का भाव कम हो जाता है तो दूसरे का अगर ज्यादा मिलता है तो आपको वहाँ फायदा हो जाता है कि आपको जो ज्यादा भाव मिल रहा है उसको बेच सकते हो.
0: जी जी.
1: तो और जो कम भाव है उसको आप रख सकते हो खाने के लिए अगर अनाज है तो, इस तरह से.
0: बिल्कुल सर.
1: इसके साथ ही हम मिट्टी के अगर संदर्भ से देखते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो जैसे किसान एक से अधिक फसलें करेंगे तो उससे क्या होगा कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है. जैसे कई प्रकार की दालें होती हैं तो दालों में जो पत्तियां हैं जो मिट्टी पे अगर वो झड़ती है जैसे मूंग है, उड़द है, तो मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता है आपकी मिट्टी को
0: जी जी।
1: तो इस तरह से उसकी उर्वरकता बढ़ती है और दूसरा मिट्टी को हरी खाद मिल जाती है क्योंकि जब पत्तियां झड़ती है उसको खाद बनता है तो मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं और जो मिट्टी में जो मित्र कीट होते हैं या जीवाणु होते हैं वो भी उसको खाकर जीवित रहते हैं, वो भी आपकी मिट्टी को उर्वरक बनाने में मदद करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से आपकी मिट्टी भी उर्वरक रहती है। दूसरी बात ये है इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कीट प्रकोप की हम बात करते हैं तो जब एक ही फसल आप खेत में बोएंगे तो हो सकता है कि कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहे
0: जी जी।
1: लेकिन अगर आप खेत में एक से अधिक फसलें जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं हांगणी, तो हांगणी में क्या होता है कि आपने फसलें बोई 5-6 प्रकार तो होता है कि कीटों का प्रकोप कम हो जाता है।
0: बिल्कुल।
1: जो कई कीट होते हैं जो एक फसल के लगते दूसरी के नहीं लगते तो उससे फायदा ये होता है कि भैया एक फसल के लग रहा है तो दूसरी में फायदा है। और आप अगर जैसे हम जीवामृत या फिर दसपर्णी का उपयोग करते हैं तो जो शत्रु कीट होते हैं जो नुकसानदायक होते हैं वो कीट वहां से भाग जाते हैं
0: जी जी।
1: तो इस तरह से क्या है कि विविध प्रकार की फसलें बोना जैसे हांगणी जैसी को अपनाना बहुत ही अच्छा है हमारे किसान भाइयों के लिए।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो सर जैसा कि आप हमें बता रहे हैं फसल विविधीकरण जिसे हम वागड़ क्षेत्र में हांगड़ी खेती के नाम से जानते हैं
1: जी।
0: तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये क्यों जरूरी है, ये इसके क्या लाभ हैं जो हमारे किसान भाई बहनों को पता होने चाहिए
1: जी। जैसे हमने चर्चा में पहले भी बात की है कि एक तो आपकी उत्पादन है उसमें स्थिरता रहती है, खेती में जोखिम कम होता है, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और जलवायु अनुकूल खेती है उसको बढ़ावा मिलता है।
0: बिल्कुल।
1: तो कहीं ना कहीं आप जलवायु को भी यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहे हो आपकी विविध फसलों के माध्यम से। दूसरा है अगर पोषण की दृष्टि से देखें तो आपको विविध प्रकार का आहार मिलेगा जिससे आपको शरीर की आवश्यक जो पोषक तत्व है वो आसानी से आपको उपलब्ध होंगे
0: जी जी।
1: कुपोषण जैसी बीमारियां हैं वो कम होगी। आजकल आप देख रहे हो कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो अगर हम परंपरागत फसल और विविध फसलें करते हैं तो मदद मिलती है कि इस तरह की बीमारियां नहीं होती है
0: जी जी।
1: दूसरा है कि जो बच्चों के लिए है जो शारीरिक और मानसिक विकास है उसमें सहायता मिलती है।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ में तीसरे प्रीफिक्स देखें हम आर्थिक रूप से तो यहाँ पे जैसे आपको विविध फसलें होंगी तो आय के स्रोत भी आपके विविध होंगे
0: जी जी।
1: बाजार में जैसे कम भाव उतार चढ़ाव की स्थिति में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिसका भाव अधिक आप उसको सेल कर सकते हैं। इसी तरह खेती जो है आपको लाभकारी नजर आएगी। अगर आप एक ही फसल करेंगे अगर नुकसान होता है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह हम बात करें पर्यावरणीय लाभ का तो एक तो जैव विविधता का संरक्षण होता है इससे क्योंकि आपकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, विविधताएं हैं आपके पास
0: जी जी।
1: मिट्टी और जल संरक्षण में मदद मिलती है और रासायनिक जो खाद है जो बाजार की निर्भरता आप लाकर डालते हैं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी
0: होती है। बिल्कुल।
1: तो ये भी आपको फायदा होगा। तो इस तरह से आपको अपनाने की वर्तमान की आवश्यकता है
0: जी। हाँ सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि फसल विविधीकरण के कई सारे लाभ हैं लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी बार किसान भाई बहन जो है वो ये समझ ही नहीं पाते कि कौन सी फसल के साथ हम कौन सी दूसरी फसल कर सकते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र में फसल विविधीकरण के कौन कौन से उदाहरण हैं जो उन्हें अपनाने चाहिए
1: जी। तो देखिए हमारे यहाँ मुख्य तौर से बारिश के दिनों मक्का काफी अधिक मात्रा में होता है तो मक्का के साथ आप उड़द डाल सकते हो, अरहर डाल सकते हो, तुअर जो है आप कर सकते हैं, इसके साथ में आप भिंडी भी उसमें डाल सकते हैं, चौले डाल सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग प्रकार की और अलग अलग इनका ग्रोथ होता है और अलग उत्पादन की स्थिति में होती है।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। अगर इसी तरह हम सब्जी बाड़ी की बात करें तो आपने एक लाइन में बैंगन लगाए, दूसरी में टमाटर लगाए, फिर मिर्ची लगाई, या फिर आपके तुरई गिलकी है जो मेड़ों पे लगा दिया आपने, तो इस तरह से ककड़ी लगा दी आपने, बेल वाली लगा दी वो मेड़ों के पास लगा दिया आपने, और जो छोटे पौधे वाली वो वहां लगा सकते हैं
0: जी जी।
1: और उनके बीच में जैसे धनिया है या फिर आप लहसुन करना चाहते हो, प्याज है तो वो आप उसमें कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से सब्जी की जो है अच्छे से आप पैदावार ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे कुछ मेड़ों पे आपको नीम के पेड़ लगा दिए, सहजन है, करंज है, सीताफल है, संतरे, नींबू है, तो अमरूद है, आम है, तो ये जो फलों की डाइवर्सिटी है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी।
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी जब अगर हम फसल विविधीकरण अपनाते हैं तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और हम क्या करें
1: जी। तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो फसल विविधीकरण की बात करते हैं तो स्थानीय एवं परंपरागत बीजों का उपयोग करना चाहिए क्योंकि वो हमारे जलवायु के अनुकूल होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जबकि हाइब्रिड अगर आप करते हो तो आपको पता नहीं होता कि वो कितना अनुकूल है या प्रतिकूल है, या नुकसानदायक है, तो आप परंपरागत बीजों का उपयोग करें स्थानीय जो भी आपके है। इसके साथ में जब आप मिश्रित खेती करें या हांगणी हम बात करते हैं, तो अनाज है, दाल है, तिलन और सब्जियां, तो इनका मिक्सर जैसे हमने पहले भी बात की थी कि भिंडी लगा दिया आपने, मक्का भी है, तुअर है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा कि जो मेड़े हैं उन पे हमने बात की थी, फलदार पौधे लगाए ताकि वो बहुत अच्छे रहते हैं और आने वाले समय में आपको अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होंगे।
0: बिल्कुल।
1: इसके साथ ही पोषण वाटिका, जिसमें हम बात पोषण बाड़ी की बात करते हैं, तो जैसे विविध प्रकार की जो सब्जियां हैं वो आप उसमें लगाएं, और इसी तरह से जैसे हम हांगणी की बात करते हैं, मिश्रित खेती की बात करते हैं जिसमें हम बात भी कर रहे हैं बहुफसली, तो वहां पे आपको मिश्रण देखना जरूरी है कि मेरा कितनी लाइन में मक्का है, कितनी तुअर है, या तुअर के साथ आपने मक्का भी की है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा, आपकी मिट्टी और मौसम के अनुसार पानी की जो आवक है या क्षमता है उसके अनुसार आप बीजों का चयन करें।
0: बिल्कुल।
1: ना कि आपने जहाँ पानी बढ़ता है तो अगर वहाँ आपने मूंग उड़द लगा दिया तो वो नहीं होंगे, वो उनकी वो बहुत कमजोर होते हैं, नाजुक होते हैं,
0: बिल्कुल
1: सड़ जाएंगे।
0: जी हाँ।
1: तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने हमें बहुत अच्छी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मैं सभी श्रोतागणों को यही संदेश देना चाहूंगा कि बहुफसली या हांगणी की बात करते हैं वो हमारे पर्यावरण के अनुकूल है और हमारे परिवार का जो पोषण है उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं, तो अधिक से अधिक इस प्रणाली को अपनाएं और अपने परिवार एवं स्वयं की जो पोषण सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करें।
0: बिल्कुल। तो सर आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: जी धन्यवाद।
0: मैन बोनू सीम की अवडे आपने वैसे में मंगीलाल जी जुड़े तक हतो ने एने आपड़ा ने घणी असल तरीका तकी घणा आकानी वाते बताड़ी है। आशा करो हो कि हंगरी वाते आपने गमी होंगा, किम की अभी टाइम थी गयो है आपने अणस कार्यक्रम तकी सूटा पड़वानू, तो सूटा तो पड़ा पण साथे पहले हमरी लाए गीत ने मोरे पड़ा सूटा।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही, साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमी माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनाओ पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
3: तो हमरो बोनु अड़ी सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावू है, फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बोनो, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन के साथ में एक नए विषय को लेकर। आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत बचपन से। हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की मजबूती उनके नागरिकों के चरित्र व्यवहार और जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। एक अच्छा नागरिक केवल अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता कशिश, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन यह गुण अचानक विकसित नहीं होता है, कह सकते हैं कि यह बचपन से धीरे धीरे सीखने और अपनाने से होता है।
0: जी हाँ,
1: कहना बिल्कुल सही है कशिश कि अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत बचपन से ही होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से आज ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं इस बात को कि मनोरंजन करना भी कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना पहले शुरुआत में गीत हम सुने और फिर से हमारी बातचीत की शुरुआत करें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे हमारे विषय की ओर। जैसा कि कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं साथियों, अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत बचपन से को लेकर, तो यहीं आपको बताना चाहेंगे कि बचपन जो है वो व्यक्तित्व निर्माण की नींव होता है। क्योंकि अंजलि जी, बचपन को उस अवस्था के नाम से जाना जाता है जब बच्चे का मन कोमल और सीखने के लिए तैयार होता है।
1: बिल्कुल।
0: इस समय जो आदतें, मूल्य, संस्कार बच्चों में डाले जाते हैं माता पिता के द्वारा, वही उनके पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं।
1: जी हाँ।
0: हम देखें तो अगर बचपन में ही बच्चों को सही और गलत का फर्क सिखाया जाए अंजलि जी, तो वो बड़े होकर जिम्मेदार भी बनेंगे, समझदार नागरिक के रूप में उभरेंगे।
1: जी जी।
0: हम जैसा कि जानते हैं कि एक अच्छे नागरिक के ढेर सारे गुण होते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, समय की पाबंदी, दूसरों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी निभाने की भावनाएं, कानून और नियमों का पालन करना, देश और समाज के प्रति प्रेम। दोस्तों, इन सभी गुणों को बचपन से ही हमें अपने बच्चों को सिखाना है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि हम जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि अच्छे नागरिक बनने के लिए शुरुआत हमें बचपन से करनी होती है।
1: बिल्कुल। यही कशिश, अब बात आती है कि परिवार पहली पाठशाला है। श्रोता साथियों, परिवार बच्चों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला होती है।
0: जी हाँ।
1: बच्चा अपने माता पिता और घर के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। यदि माता पिता ईमानदार हैं तो बच्चा भी ईमानदारी सीखता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि घर में अनुशासन है तो बच्चा अनुशासित बनता है। यदि परिवार में सम्मान और प्रेम है तो बच्चा दूसरों का सम्मान करना सीखता है। इसलिए माता पिता को अपने व्यवहार से बच्चों के लिए उदाहरण बनना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही अब बात आती है, शिक्षा और संस्कार का केंद्र विद्यालय होता है इसकी। तो दोस्तों, विद्यालय बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। कशिश, बच्चों को समय पर आना, नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी का बोध भी कराया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षक बच्चों को अच्छे नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। यही अगर बात करें सामाजिक जिम्मेदारी के विकास की, तो देखते हैं कि हमारे बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है श्रोता साथियों, कि वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: जी जी।
0: और उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है समाज के प्रति, जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जरूरतमंदों की मदद करना जो कि बहुत जरूरी है, और पर्यावरण की सुरक्षा करना। अंजलि जी,
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जब इन सभी जिम्मेदारियों को समझते हैं साथियों, तो वे समाज के प्रति सजग भी रहते हैं और उत्तरदायी भी बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अगर बात करें नैतिक मूल्यों और संस्कारों की, तो जैसा कि जानते हैं कि नैतिक शिक्षा बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है।
1: जी जी।
0: जैसे कि सच बोलने की आदत, ईमानदारी से काम करने की आदत, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखना, गलत कार्यों से बचना। श्रोता साथियों, ये जो सभी गुण होते हैं वो बच्चों को एक अच्छा इंसान और नागरिक बनाते हैं।
1: बिल्कुल। यही कशिश, अब बात आती है डिजिटल युग में नागरिकता की समझ की। क्योंकि आज के समय में बच्चों को डिजिटल दुनिया में भी जिम्मेदार नागरिक बनाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: इंटरनेट का सही और सुरक्षित उपयोग करना, फेक न्यूज से बचना, दूसरों का ऑनलाइन सम्मान करना और अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखना। साथियों, यह डिजिटल नागरिकता भी आज के समय में उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ।
1: बचपन में सीखी गई छोटी छोटी आदतें ही आगे चलकर बड़े बदलाव लाती है।
0: बिल्कुल।
1: कूड़ा कूड़ेदान में डालना, पानी और बिजली की बचत करना, लाइन में खड़े रहना और दूसरों की मदद करना। साथियों, कहना चाहूंगी कि ये छोटी आदतें ही एक अच्छे नागरिक का निर्माण करती हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि एक अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत बचपन से ही होती है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे। लेकिन अभी मनोरंजन करवाते हैं साथियों को इस प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि एक अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत जो है वो बचपन से ही होती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर यही बात करें कशिश अब के माता पिता, शिक्षक और समाज की क्या इसमें भूमिका होती है, तो साथियों बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है।
1: बिल्कुल।
0: माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, शिक्षक उन्हें दिशा और ज्ञान देते हैं, समाज उन्हें व्यवहारिक अनुभव देता है। साथियों, इन तीनों गुणों के सहयोग से ही बच्चे एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक अच्छा नागरिक ही देश को आगे बढ़ाता है, वह नियमों का पालन करता है, समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखता है, देश की प्रगति में भी योगदान देता है। इसलिए कहना चाहेंगे साथियों कि यदि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे तो देश तेजी से विकास कर सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो हम इस बात से समझ सकते हैं साथियों कि अच्छे नागरिक बनने की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू होती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अंजलि जी, बचपन में दिए गए संस्कार, शिक्षा की आदतें और भविष्य के हम कह सकते हैं कि जो गुण है वो एक नागरिक का स्वरूप तय करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखकर उन्हें जीवन के वास्तविक मूल्यों जैसे कि ईमानदारी, अनुशासन के गुण, जिम्मेदारी की भावनाएं और सहानुभूति की शिक्षा दे तो वे न केवल अपने जीवन में सफल होंगे बल्कि समाज और देश के लिए भी उपयोगी साबित होंगे।
0: जी जी,
1: कह सकते हैं अंजलि जी कि आज के समय में जब समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये बात और भी जरूरी हो जाती है कि हम अपने बच्चों को एक जागरूक, संवेदनशील नागरिक बनने के लिए तैयार करें।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, कह सकते हैं कि यदि हम आज उन्हें सही दिशा देंगे तो कल वे एक बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसलिए हर माता पिता, शिक्षक और समाज के सदस्य का यह कर्तव्य है कि वे बच्चों को अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें और उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाएं।
1: बिल्कुल।
0: आज का संस्कार ही कल का संस्कृत समाज बनाता है और अच्छे नागरिक ही एक महान राष्ट्र की पहचान होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि अच्छे नागरिक बनने की प्रक्रिया कोई एक दिन का या एक कक्षा में पूरी होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो बचपन से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है।
1: बिल्कुल।
0: बच्चे जिस वातावरण में पलते हैं, बढ़ते हैं, जिन बातों को सुनते हैं और जिन व्यवहारों को देखते हैं, वही उनके व्यवहार का आधार बनते हैं। बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने का मतलब केवल उन्हें नियम सिखाना नहीं है बल्कि उनके अंदर सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है।
1: जी हाँ।
0: जब बच्चा यह समझने लगता है कि उनके छोटे छोटे काम जैसे कि सफाई रखना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना समाज पर बड़ा असर डालता है, तभी वह एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अगर हम बात करें श्रोता साथियों से तो दोस्तों, हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि एक अच्छा नागरिक केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता है।
0: जी जी।
1: वह समाज में प्रेम, सहयोग और सम्मान का माहौल बनाता है, क्योंकि अंजलि जी ऐसे नागरिक ही किसी देश को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं।
0: जी जी।
1: साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहेंगे कि बच्चों को यह एहसास आप दिलाएं कि बदलाव उनके द्वारा लाया जा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं अंजलि जी कि बच्चे छोटे हैं तो वे क्या ही कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटी सोच और छोटे कदमों से ही शुरू होता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, अगर बच्चा आज से ही जिम्मेदारी समझने लगे तो कल वही समाज का सशक्त और जागरूक नागरिक बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में माता पिता, शिक्षक और समाज को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा अंजलि जी, जहाँ बच्चे न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे बल्कि वे अपने कर्तव्यों को भी समझे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जब बच्चे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी महत्व देना शुरू करते हैं, तभी एक संतुलित सशक्त समाज का निर्माण होता है। साथियों,
0: जी हाँ,
1: ऐसे में आपसे अंत में यही कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि अच्छे नागरिक कभी पैदा नहीं होते, उन्हें बचपन से समझ, संस्कार और सही मार्गदर्शन के जरिए बनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम आज अपने बच्चों में अच्छे नागरिक के गुण विकसित करेंगे दोस्तों, तो भविष्य में हमें एक ऐसा समाज मिलेगा जो न केवल प्रगति कर रहा होगा बल्कि मानवीय मूल्यों में भी समृद्ध होगा।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत जो है वो बचपन से ही होती है।
1: बिल्कुल।
0: और हम बचपन से ही कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो बच्चों को दे सकते हैं। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,
2: चकरा का चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरा का टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकना का हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकला का बिको चिको सिली सिली सिली गो भगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: दोस्तों इस गीत के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से हम विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3201। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल और आपके अपने साथी जागृति भट्ट और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वक्त रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश और मनीषा हम बात करने वाले हैं बुढ़ापे में कम से कम इतना जरूर करें कि मन हल्का रहे।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये जो विषय है वो बहुत खास है क्योंकि ये हर इंसान की जिंदगी का वो पड़ाव है जिससे कोई बच नहीं सकता और वो है बुढ़ापा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बुढ़ापा बोझ बनना चाहिए या एक सुकून भरा सफर। तो श्रोता साथियों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि बुढ़ापे में कम से कम इतना जरूर करें कि मन हल्का रहे। ये बातें जरूर रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
0: जी हाँ, तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बुढ़ापे में कम से कम इतना जरूर करें कि मन हल्का रहे।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें बचपन, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और बुढ़ापा के सभी पड़ाव आते हैं।
1: जी हाँ,
0: हर अवस्था में अपनी सुंदरता, अपनी चुनौतियाँ और अपने अनुभव होते हैं श्रोता साथियों। बुढ़ापा जीवन का वह समय है जब व्यक्ति ने बहुत कुछ देखा होता है,
1: बिल्कुल
0: बहुत कुछ सीखा होता है और अनेक जिम्मेदारियां निभाई होती हैं।
1: जी हाँ,
0: इस समय श्रोता साथियों शरीर पहले जैसा तेज नहीं रहता है।

0: ऊर्जा कम हो जाती है, कई बार स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी बढ़ जाती हैं और परिवार की भूमिकाएं भी बदल जाती है। साथियों, ऐसे समय में सबसे जरूरी बात यह होती है हमारे लिए कि हमारा मन हल्का रहे, मन प्रसन्न रहे और जीवन में हमें बोझ महसूस न हो।
1: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत में हम सपने देखते हैं
0: जी,
1: युवा अवस्था में उन्हें पूरा करने के लिए भागते हैं कशिश, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो हम अक्सर सोचते हैं काश थोड़ा और जी लिया होता
0: जी, हाँ।
1: काश थोड़ा और मुस्कुरा लिया होता। बुढ़ापा सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं है श्रोताओं, ये मन की स्थिति भी है। अगर मन हल्का हो तो उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि बुढ़ापे में सबसे बड़ा बोझ होता है पुरानी यादों का दर्द। कभी किसी की कही बातें, कभी किसी का दिया हुआ धोखा, ये सब दिल में जमा होता जाता है
0: जी।
1: लेकिन सच तो ये है कशिश और मनीषा, जो बीत गया वो अब सिर्फ एक कहानी है, उसे जिंदगी की सच्चाई मत बनाइए श्रोताओं। अगर आप हर दिन पुराने दुखों को याद करेंगे तो मन भारी होता जाएगा
0: जी।
1: इसीलिए माफ करना सीखिए, भूलना सीखिए।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। और अक्सर हम बुढ़ापे को कमजोरी, अकेलेपन और बीती यादों से जोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों सच क्या है? सच तो ये है कि बुढ़ापा भी जीवन का एक सुंदर पड़ाव हो सकता है
0: जी। हाँ,
2: अगर मन हल्का, संतुलित और संतुष्ट हो श्रोता साथियों, हम कह सकते हैं कि जीवन हमारी एक यात्रा है, जहां हम बचपन की यात्रा, युवावस्था की यात्रा और फिर बुढ़ापे की यात्रा करते हैं।
0: बिल्कुल
2: साथियों, जैसे सूरज सुबह उगता है, दोपहर में चमकता है और शाम को ढलता है, ठीक वैसे ही जीवन भी हमारे हर चरण में अलग रंग दिखाता है
0: जी। हाँ,
2: लेकिन समस्या तब आ जाती है जब हम बुढ़ापे को बोझ समझने लग जाते हैं जागृति जी।
1: जी हाँ,
2: असल में अगर बताएं युवाओं तो बुढ़ापा शरीर का होता है, मन का नहीं। अगर मन हल्का और खुश है तो बुढ़ापा भी एक उत्सव बन सकता है
0: जी। बिल्कुल कशिश, यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि बुढ़ापे में मन हल्का रखना क्यों जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: तो श्रोता साथियों, मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं चलता
1: जी,
0: मन से भी चलता है। यह मन खुश है तो बीमारियां भी व्यक्ति के पास नहीं आती
1: जी। हाँ,
0: यदि मन दुखी है श्रोता साथियों तो सुख सुविधाएं भी अच्छी नहीं लगती। बुढ़ापे में मन हल्का रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि श्रोता साथियों, यह हमारे तनाव को कम कर देता है, नींद हमें अच्छी आती है और हमारे रक्तचाप और चिंता को भी कम करता है।
1: बिल्कुल,
0: साथ ही श्रोता साथियों, परिवार के साथ संबंध हमारे मधुर करता है, अकेलापन हमें कम महसूस होता है और जीवन जीने की इच्छा भी हमारी अच्छी बनी रहती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए श्रोता साथियों, मन की शांति ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: जी हाँ मनीषा, क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जैसा कि कशिश आपने पहले बताया था
0: जी। हाँ,
1: बच्चे अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, दोस्त धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, ऐसे में सबसे जरूरी है खुद का साथ। अपने आप से बातें कीजिए श्रोताओं, अपनी पसंद के काम कीजिए, किताबें पढ़िए, गाने सुनिए, टहलने जाइए। याद रखिए, अगर आप खुद के साथ खुश है तो दुनिया की कोई कमी आपको उदास नहीं कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए कहा गया है कि खुद से दोस्ती कर लो, हर कमी में भी खुशी भर लो। श्रोताओं, बुढ़ापा मतलब रुक जाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे चलकर भी जीवन का आनंद लेना है।
0: बिल्कुल,
1: थोड़ा टहलना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, किसी सामाजिक कार्य में भाग लेना, ये सब मन को हल्का और खुश रखते हैं
0: जी।
1: याद रखिए, जिंदगी तब तक है जब तक हम खुद को जीवित महसूस करते हैं।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम युवा साथियों से बात कर रहे हैं कि बुढ़ापे में कम से कम हमें इतना जरूर करना है कि हमारा मन हल्का रहे
0: जी। हाँ,
2: तो ये बातें हम आगे भी करेंगे। साथियों, आगे हम जानेंगे कि मन हल्का करने के क्या ऐसे पहले मंत्र हो सकते हैं जो हमें अपनाने चाहिए
0: जी।
2: तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे इस गीत के साथ में
0: जी। बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि बुढ़ापे में कम से कम इतना जरूर करें कि मन हल्का हो जाए।
1: जी
2: बिल्कुल।
0: तो कशिश, जैसा कि आपने बताया था कि गीत के बाद हम बात करने वाले हैं कुछ मंत्रों के बारे में।
1: जी जी।
0: वो मंत्र हमारे जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल। अगर बात करें सबसे पहले क्षमा करने की, तो हम देखते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा बोझ ये होता है कि हमारे मन में कुछ कड़वाहट रखी हुई हो जाती है किसी व्यक्ति के लिए।
0: बिल्कुल।
1: जिसके कारण भी जब हमारा बुढ़ापा आता है जागृति जी, तो हमारा मन अशांत रहता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, अगर आपने किसी को कभी माफ नहीं किया तो आप खुद ही उस दर्द को ढो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: बुढ़ापे में जाकर ये बोझ और भारी हो सकता है, इसलिए दूसरों को माफ करने की प्रवृत्ति आप अपनाएं। खुद को भी माफ करें श्रोता साथियों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वो गलती का पुतला है जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: गलती हर किसी से हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हमारे युवाओं को ये ध्यान रखना है कि उन्हें दूसरों को भी माफ करना है और खुद को भी माफ करना है।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों, आप अपनी गलती को सीख में बदल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा विकल्प है, कह सकते हैं कि बोझ को कम करने का। इसलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जो क्षमा होती है वो मन को मुक्त करती है।
0: बिल्कुल
2: कशिश। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को ध्यान रखना है कि वे पुरानी बातों को छोड़ दें। बहुत से बुजुर्ग लोग बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: किसने क्या कहा, किसने सम्मान नहीं दिया, किसने दुख दिया, ऐसी बातें मन को भारी कर देती है साथियों। बुढ़ापे में सबसे अच्छा काम यह है कि हम पुरानी कटु बातों को छोड़ दें।
0: जी
1: जी, जी।
2: जो बीत गया उसे बार बार टोने से वर्तमान खराब होता है। क्षमा करना सीखें और आगे बढ़ें।
0: जी हाँ, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो सोचते हैं अब कहने से क्या फायदा।
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: ये चुप्पी श्रोता साथियों मन को भारी बना देती है। किसी से बात कीजिए, अपना दर्द, अपनी खुशी सब साझा कीजिए, क्योंकि बातें बांटने से ही मन हल्का होता है।
1: जी हाँ,
0: कहा गया है कि दिल की बात कह दीजिए, मन का बोझ अपने आप कम हो जाएगा। साथ ही श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि बुढ़ापे में अगर आप हर दिन ये सोचे कि मेरे पास क्या नहीं है तो दुख पड़ेगा, लेकिन अगर ये सोचे कि मेरे पास क्या क्या है तो मन अपने आप हल्का हो जाएगा।
1: जी जी।
0: हर दिन भगवान का धन्यवाद कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। शुक्रिया कहना सीख लेंगे तो जिंदगी को जीना भी सीख जाएंगे। कशिश और मनीषा,
1: बिल्कुल आपने सही कहा जागृति जी। अगर इसी के आगे युवाओं को बताएं तो रिश्तों को संभालना भी सीखे युवाओं, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ी ताकत हमारे रिश्ते ही होंगे।
0: जी
1: बिल्कुल। लेकिन अगर रिश्ते टूटे हुए हुए या फिर कमजोर हुए तो अकेलापन में घेर सकता है जागृति जी। ऐसे में युवाओं को कहने का मतलब यही है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है साथियों। दोस्तों से भी आप सच्चा रिश्ता रखें और अहंकार को रिश्तों के बीच में कभी ना आने दें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि रिश्तों में ही निवेश बुढ़ापे की सबसे बड़ी पूंजी है।
0: जी बिल्कुल।
1: इसी के साथ संतोष और स्वीकार्यता भी अपनाएं, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे जरूरी गुण हमारे पास होना चाहिए वो है संतोष। क्योंकि दोस्तों, अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि काश ऐसा होता तो बेहतर होता, तो मन कभी हल्का नहीं होगा।
2: जी हाँ।
1: इसलिए जो मिला है उसे स्वीकार करें, जीवन को धन्यवाद दें और तुलना करना छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों, स्वीकार्यता ही सच्ची शांति है।
2: जी बिल्कुल कशिश। इसी के साथ हमारे युवा साथियों को दूसरों की मदद करनी है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो भीतर से संतोष पैदा होता है। बुढ़ापे में श्रोता साथियों अनुभव बहुत होता है। बुजुर्ग अपने अनुभव से परिवार और समाज को दिशा दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी परेशान व्यक्ति को समझना, पड़ोसी की मदद करना, अच्छे शब्द बोलना या सेवा करना। सेवा से मन श्रोता साथियों हल्का होता है और इससे हमें शांति भी मिलती है।
0: बिल्कुल।
2: इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार बुजुर्ग यह चाहते हैं कि घर में सभी लोग उसकी इच्छा के अनुसार चले।
1: बिल्कुल।
2: जब ऐसा नहीं होता है तो मन दुखी हो जाता है। समय बदलता है श्रोता साथियों, सोच भी बदलती है। इसीलिए बच्चों से प्रेम रखें, मार्गदर्शन दें, लेकिन हर बात पर नियंत्रण की इच्छा छोड़ दें। इससे संबंध अच्छे रहेंगे श्रोता साथियों और आपका मन भी हल्का रहेगा।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि जिंदगी का हर पड़ाव अपने साथ एक संदेश लेकर आता है।
1: बिल्कुल।
0: और बुढ़ापा हमें ये सिखाता है श्रोताओं की अब दौड़ना नहीं, जीना है। कशिश
1: जी हाँ।
0: जो मिला उसका शुक्रिया करना, जो छूट गया उसे अलविदा कहना।
1: बिल्कुल।
0: और जो बचा है उसे मुस्कुराकर अपनाना ही असली समझदारी है। इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों, मन हल्का रहेगा तो हर दिन त्योहार लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: दिल खुश रहेगा तो बुढ़ापा भी उपहार लगेगा। कहा गया है कि ना गमों का बोझ दिल पर रखिए, ना बीती बातों को फिर से जगाओ, जितना बचा है उतना मुस्कुरा लीजिए, बुढ़ापे को फिर से खूबसूरत बना लीजिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। युवा साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वही आपके बुढ़ापे का आधार बनेगा। जी हाँ, इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आज का व्यवहार ही कल का अनुभव बनेगा साथियों।
0: बिल्कुल,
1: आज के रिश्ते ही कल का सहारा बनेंगे और आज की सोच ही कल का सुकून बन सकती है जागृति जी हमारे युवाओं के लिए।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि बुढ़ापा कोई अंत नहीं है साथियों, बल्कि जीवन का एक शांत और सुंदर अध्याय है।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यह तभी सुंदर बनेगा जब आपका मन हल्का हो।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए अपने जीवन में युवाओं माफ करना सीखें, रिश्तों को संजोना सीखें, अपेक्षाएं कम रखें और खुद से प्रेम ज्यादा करें।
0: जी हाँ,
1: और वर्तमान को अपनाएं दोस्तों, क्योंकि मन हल्का होगा तो बुढ़ापा भी हल्का होगा, सुकून भरा होगा और खुशहाल होगा।
2: जी हाँ कशिश, इसी के साथ कशिश और जागृति जी, हम हमारे युवा साथियों को कह सकते हैं कि बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं है बल्कि अनुभव का सुंदर मौसम है।
0: बिल्कुल,
2: वह समय है श्रोता साथियों जब व्यक्ति दौड़ भाग में थोड़ा मुक्त होकर शांति से जी सकता है। यदि श्रोता साथियों काम कम हो गया तो चिंता की कोई बात नहीं है, कम से कम इतना तो जरूर करें कि आपका मन हल्का रहे। सुबह उठें, थोड़ा चले, मुस्कुराएं, पुरानी बातों को छोड़ दें, अपनों से बात करें, पूजा करें, किसी काम में लगे रहें और छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों जिंदगी की किताब का आखिरी अध्याय भी उतना ही खूबसूरत हो सकता है जितना उसका पहला पन्ना।
1: बिल्कुल,
0: बस फर्क इतना है कि अब हमें साबित नहीं करना, बस महसूस करना है, जीना है और मुस्कुराना है। बुढ़ापा कोई बोझ नहीं, जैसा कि कशिश आपने कहा था, ये तो वो समय है जब इंसान खुद से सबसे ज्यादा करीब होता है।
1: बिल्कुल,
0: अगर मन हल्का है तो हर दिन एक नई सुबह जैसा लगेगा और अगर दिल शांत है तो हर रात एक सुकून भरी कहानी बन जाएगी।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए खुद से वादा कीजिए श्रोता साथियों कि ना किसी से शिकायत करेंगे, ना किसी से उम्मीदों का बोझ रखेंगे, बस हर दिन को हल्के मन से और खुले दिल से जिएंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं से हमारी ढेर सारी हो चुकी है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
2: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे युवाओं, लेकिन जाने से पहले आपको कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए अंतिम गीत सुनवाना चाहेंगे।
0: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम युवाओं की आवाज यही समाप्त होता है। अंत में साथियों आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी का असली सुकून इस बात में नहीं है कि आपने कितना पाया है जी, बल्कि इस बात में है कि आपने कितना छोड़ना सीखा।
1: बिल्कुल,
0: कड़वाहट, अहंकार और बेवजह की चिंताओं को। याद रखिए युवाओं, बुढ़ापा तब सुंदर बनेगा जब मन में शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा होंगे।
1: बिल्कुल,
0: जब यादें बोझ नहीं मुस्कान बन जाएंगी और जब दिल हल्का हो और हर दिन एक नई सुबह जैसा लगे। आज से ही युवाओं खुद से वादा कीजिए कि इतना जरूर करेंगे कि मन कभी भारी न हो, क्योंकि हल्का मन ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।
1: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश, बातें बहुत सारी हो चुकी है और अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
2: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दोस्त जागृति,
2: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा,
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को।
3: नमस्कार।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करूँ। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी नी दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि समाज को बदलने वाले लोग साधारण होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोता साथियों हम अक्सर ये मान लेते हैं कि समाज में बड़ा परिवर्तन केवल बड़े नेताओं, धनवान लोगों या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा ही लाया जा सकता है। हमें लगता है कि बदलाव लाने के लिए असाधारण शक्ति, अपार धन या ऊंचा पद होना आवश्यक है।
0: जी जी,
1: लेकिन इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के गवाह अंजलि कि समाज को बदलने वाले अधिकांश लोग साधारण ही होते हैं।
0: जी जी,
1: वे हमारे और आपके जैसे सामान्य लोग होते हैं श्रोताओं, जिनके पास केवल एक सच्चा विचार, दृढ़ संकल्प और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से इस विषय से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथी सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमारी बातें रही थी और हमने आपको कहा भी था कि आज का विषय है समाज को बदलने वाले लोग साधारण होते हैं। अंजलि, सच्चाई ये है कि समाज का निर्माण और परिवर्तन किसी एक बड़े व्यक्ति के हाथों नहीं होता, बल्कि लाखों साधारण लोगों के छोटे छोटे प्रयासों से होता है।
1: जी जी,
0: यही लोग समाज में नई सोच, नई चेतना और नए मूल्यों का संचार करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि साधारण इंसान की सोच महान होती है और यही बदलता है समाज की पहचान को।
1: जी हाँ जागृति जी, जब भी हम समाज में बड़े बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी बड़े नेता, प्रसिद्ध व्यक्ति, उद्योगपति या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की छवि उभरती है। हमें लगता है कि समाज को बदलने का काम केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास धन, शक्ति, पद और प्रसिद्धि हो।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जागृति जी, इतिहास और वर्तमान दोनों हमें एक अलग सच्चाई बताते हैं। सच्चाई यह है कि समाज को बदलने वाले अधिकांश लोग साधारण ही होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वे हमारे जैसे होते हैं, वे किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं लेते, उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, वह है समाज के प्रति जिम्मेदारी और बदलाव लाने का साहस।
0: जी हाँ,
1: आज कार्यक्रम में जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं तो श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती है। समाज में परिवर्तन अचानक नहीं आते, कोई क्रांति एक दिन में नहीं आती। हर बदलाव किसी एक व्यक्ति के मन में उठे छोटे से विचार से शुरू होता है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो समाज परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है, जैसा कि आपने बताया था। जब कोई व्यक्ति किसी समस्याओं को देखकर ये सोचता है कि ये काम कोई और क्यों करे, मैं क्यों नहीं, तभी बदलाव का बीज बोया जाता है। एक शिक्षक जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, एक किसान जो नई तकनीक अपनाकर दूसरों को प्रेरित करता है,
1: बिल्कुल,
0: एक महिला जो अपने गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, या एक युवा जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाता है, ये सारे साधारण लोग, लेकिन इनके कार्य असाधारण परिणाम देते हैं।
1: जी हाँ,
0: समाज में परिवर्तन लाने वाले लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है अंजलि कि वे परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे समस्याओं की शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जहाँ अधिकांश लोग कठिनाइयों को देख कर पीछे हट जाते हैं, वही परिवर्तनकारी लोग आगे बढ़कर जिम्मेदारी भी उठाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा, जो व्यक्ति समाज के बीच रहता है वही उसकी समस्याओं को सबसे अच्छी तरह समझता है। एक माँ बच्चों की शिक्षा की समस्या को समझती है, एक किसान पानी और खेती की चुनौतियों को समझता है,
0: बिल्कुल,
1: एक मजदूर रोजगार की कठिनाइयों को जानता है, और एक शिक्षक बच्चों के भविष्य की चिंता करता है। श्रोता साथियों, जब ये लोग समाधान खोजने का प्रयास करते हैं तब वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। यही कारण है जागृति जी कि समाज को बदलने की शक्ति अक्सर उन्हीं लोगों के पास होती है जो समाज के सबसे करीब होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कई बार लोग सोचते हैं कि अकेला व्यक्ति क्या ही कर सकता है, लेकिन श्रोता साथियों, सच्चाई यह है कि हर बड़ा आंदोलन किसी एक व्यक्ति के कदम से ही शुरू होता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि एक व्यक्ति अपने गांव को स्वच्छ रखने का संकल्प ले जागृति जी, तो दूसरे लोग उसे प्रेरित होते हैं।
0: जी हाँ,
1: यदि कोई बेटी शिक्षा प्राप्त कर सफलता हासिल करती है तो वह अनेक अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। यदि कोई युवा नशे से दूर रहकर समाज सेवा का मार्ग चुनता है तो वह कई युवाओं के लिए जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: जी हाँ,
1: एक दीपक पूरे कमरे का अंधेरा नहीं हटाता, लेकिन वह प्रकाश की शुरुआत अवश्य करता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो कहा भी यह है कि जो समस्या से नहीं घबराता वही समाज में बदलाव लाता है। तो श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि यदि हम इतिहास पर दृष्टि डाल पाए तो अनेक महान व्यक्तियों ने बहुत साधारण परिस्थितियों से अपनी यात्रा शुरू की थी।
1: जी जी,
0: उनके पास न कोई विशेष संसाधन थे और न ही कोई विशेष व्यक्ति, लेकिन उनके भीतर समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जुनून था और यही जुनून उन्हें सामान्य से असामान्य बनाता है। वास्तव में महानता जन्म से नहीं आती श्रोताओं, बल्कि कर्मों से आती है, और जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में सोचता है वही सच्चा परिवर्तनकारी बनता है। समाज को बदलने के लिए बड़े मंच की नहीं श्रोताओं, बल्कि बड़े हृदय की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, वहीं बात करें जागृति जी सच्चा स्वराज और साधारण नागरिक की, तो श्रोता साथियों, सच्चा स्वराज हमें सिखाता है कि समाज का निर्माण केवल सरकारों से नहीं होता, समाज का निर्माण नागरिकों के व्यवहार, विचार और जिम्मेदारियों से होता है। यदि हम केवल शिकायत करते रहते हैं श्रोता साथियों और स्वयं कुछ नहीं करें तो बदलाव की उम्मीद करना कठिन है, लेकिन यदि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लगे तो परिवर्तन निश्चित है। स्वराज का अर्थ केवल जागृति जी अधिकार प्राप्त करना नहीं है, स्वराज का अर्थ है अपने कर्तव्यों को समझना और समाज के प्रति उत्तरदायी बनना।
1: जी हाँ,
0: बहुत से लोग बड़े काम करने के अवसर का इंतजार करते हैं, लेकिन वास्तव में श्रोता साथियों, समाज छोटे छोटे कार्यों से बदलता है। किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, साफ सफाई रखना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, अफवाहों से बचाव, सत्य ईमानदारी का पालन करना।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, ये सभी छोटे कार्य दिखाई भले साधारण देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है।
1: बिल्कुल,
0: समाज की मजबूती इन्हीं छोटी छोटी अच्छाइयों पर टिकी होती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि समाज को बदलने वाले लोग किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करते, वे स्वयं परिवर्तन का माध्यम बन जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे ये नहीं सोचते कि कोई आएगा और बदलाव करेगा, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं ही बदलाव की शुरुआत करूंगा।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि उनका छोटा सा प्रयास क्या फर्क ला सकता है, लेकिन श्रोता साथियों, इतिहास बताता है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं।
0: जी जी,
1: एक पौधा लगाने से हरियाली बढ़ती है, एक बच्चे को पढ़ाने से भविष्य बदलता है, और एक सही विचार से पूरी पीढ़ी प्रभावित हो सकती है। और कहा भी गया है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव का रूप लेते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, किसी भी अच्छे कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। समाज को बदलने वाले लोग इसी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। आज आवश्यकता ऐसे लोगों की है जो ईमानदारी, करुणा, सहयोग और जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाएं। समाज की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं श्रोताओं, बल्कि अच्छे चरित्र और मजबूत मानवीय मूल्यों से होती है। जब साधारण लोग अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाते हैं, तब समाज स्वतः ही बदलने लगता है अंजलि। और हमें ये समझना होगा श्रोताओं, समाज कोई अलग इकाई नहीं है, समाज हम सब मिलकर बनाते हैं। यदि हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो समाज भी सकारात्मक बनेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी प्रसिद्धि की इच्छा की सेवा करते रहते हैं, वे किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, वे केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। कभी कोई व्यक्ति रक्तदान करता है, कोई शिक्षा के लिए सहयोग करता है, कोई जरूरतमंद परिवार की मदद करता है, कोई गांव में स्वच्छता अभियान चलाता है। ये सभी लोग समाज के अनदेखे नायक होते हैं, और यही लोग समाज की असली ताकत हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने आसपास की समस्याओं को पहचानना है, शिकायत करने की बजाय समाधान का हिस्सा हमें बनना है, समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करें, बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करें, सहयोग और सेवा की भावना बढ़ाएं, सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने छोटे छोटे कार्यों की शक्ति को समझें। याद रखिए श्रोता साथियों कि हर बड़ा बदलाव किसी साधारण व्यक्ति से ही शुरू होता है।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं जागृति जी श्रोता साथियों से कि समाज को बदलने वाले लोग किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वे हमारे बीच ही रहते हैं। वे वही लोग होते हैं जो परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय पहल करना चुनते हैं। वे वही लोग होते हैं श्रोता साथियों जो ये नहीं पूछते कि कोई और क्यों नहीं कर रहा, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: दुनिया में जितने भी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, उनके पीछे ऐसे ही साधारण लोगों की असाधारण सोच और निरंतर प्रयास छुपे हुए हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं का बहाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने संसाधनों की कमी से ज्यादा अपने इरादों की मजबूती पर भरोसा किया।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे अंजलि कि श्रोताओं, समाज को बदलने वाले लोग किसी विशेष ग्रह से नहीं आते, वे हमारे बीच ही रहते हैं, वे साधारण परिवारों से आते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण संकल्प होता है अंजलि।
0: बिल्कुल,
1: और यही संकल्प उन्हें समाज परिवर्तन का वाहक बनाता है। आज यदि हम सच्चे स्वराज का सपना साकार करना चाहते हैं, तो हमें किसी नायक की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं जिम्मेदारी उठानी होगी।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में ईमानदारी, सेवा और जागरूकता का दीप जलाएगा। जब करोड़ों साधारण लोग जागेंगे, तब समाज में असाधारण परिवर्तन अवश्य आएगा। इसलिए याद रखिए इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो केवल परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो साधारण होते हुए भी असाधारण साहस दिखाते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। तो श्रोता साथियों, यदि अगर आप सोचते हैं कि आप छोटे हैं और कुछ नहीं बदल सकते, तो याद रखिए एक छोटी सी चिंगारी पूरे अंधकार को चुनौती दे सकती है। अंजलि,
0: बिल्कुल।
1: तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि समाज बदलने का अपने भीतर अरमान रखिए। सच्चा स्वराज तभी आएगा इस संसार में जब हर नागरिक बदलाव की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छे तरीके से ढेर सारी बातों को जान पाए। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, मगर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
1: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क।

0: है हो पे एनी मियाते की बच्चा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
1: हो वे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ थाय
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदी है ई हुकी जाएंगा खेतर बंजर थी जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटले मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बावारी पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाघ रेडियो वाघधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: भाई बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटले गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा।
0: सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर
2: और आपके अपनी साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
2: श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है बिगड़ती जीवन शैली से स्वास्थ्य पर नुकसान और सही जीवन शैली हम कैसे अपनाएं।
0: जी हाँ,
2: क्योंकि हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सुविधाएं तो बहुत सारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी सेहत से दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
2: देर रात तक जागना, घंटों मोबाइल चलाना, जंक फूड खाना, शारीरिक श्रम से बचना और तनाव में रहना, ये सब हमारी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बनता जा रहा है।
0: जी हाँ,
2: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटी छोटी आदतों का हमारे शरीर मन पर कितना बड़ा असर पड़ता है? तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि बिगड़ती जीवन शैली से क्या स्वास्थ्य नुकसान हो रहे हैं और सही जीवन शैली हम कैसे अपनाएं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी, लेकिन शुरुआत में जैसा कि गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है,
2: बिल्कुल,
1: तो इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम सुनवाते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत।
2: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बिगड़ती जीवन शैली से होने वाले स्वास्थ्य पर नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली को हम कैसे अपनाएं इस विषय पर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम सभी देख रहे हैं दोस्तों कि आज के समय में विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक तो बना ही दिया है।
1: जी जी,
0: मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं, अंजलि जी, फास्ट फूड और आधुनिक साधनों ने हमारी दैनिक दिनचर्या को काफी आसान बनाया है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन इसके साथ ही हमारी जीवन शैली पर कई ऐसे बदलाव भी हुए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं साथियों जहाँ हमारे पास समय की कमी है, तनाव है, अनियमित खानपान बढ़ता जा रहा है, शारीरिक गतिविधियों की कमी है और डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता है। इन सभी के कारण हमारे जीवन को कई ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जीवन शैली का अर्थ है हमारे रोजमर्रा का रहन सहन, खान पान, सोने जागने का समय, काम करने का तरीका और हमारी आदतें। श्रोता साथी, जब हमारी दिनचर्या असंतुलित होती है तो खान पान पौष्टिक न होने के कारण हम देखते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब होने लगता है।
1: जी हाँ,
2: शारीरिक गतिविधियाँ कम हो जाती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तब इसे बिगड़ती जीवन शैली कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
2: आज तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है लेकिन इसके साथ साथ शारीरिक सक्रियता भी कम करती है।
1: बिल्कुल,
2: लोग पैदल चलने की बजाय वाहन का उपयोग करते हैं, घर का खाना छोड़कर बाहर का भोजन पसंद करते हैं।
1: जी हाँ,
2: मनोरंजन के लिए खेलकूद की जगह मोबाइल और टीवी पर निर्भर हो जाते हैं।
1: जी हाँ,
2: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिगड़ती जीवन शैली इस तरीके से हमारी बिगड़ रही है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आजकल लोग पौष्टिक भोजन के बजाय जंक फूड, फास्ट फूड और तले भुने पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं। ये खाद्य पदार्थ शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों को कम कर देते हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि बीमारियां बढ़ने लगती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि तकनीकी सुविधाओं के कारण लोगों की शारीरिक मेहनत है वो भी कम हो गई है।
2: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि अधिकांश लोग घंटों तक मोबाइल, कंप्यूटर या टीवी के सामने बैठे रहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इससे शरीर की निष्क्रियता भी कम हो जाती है। श्रोता
0: हाँ।
1: साथियों, देर रात तक मोबाइल चलाना, सोशल मीडिया पर समय बिताना और अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। अंजलि जी, नींद की कमी से हमारा शरीर और मस्तिष्क दोनों प्रभावित होते हैं। कशिश
0: जी, बिल्कुल मनीषा, इसी के साथ अगर हम देखें तो स्वास्थ्य केवल बीमारी का न होना नहीं होता, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ होना ही वास्तविक स्वास्थ्य कहलाता है।
1: जी हाँ।
0: साथियों, जब हमारी जीवन शैली असंतुलित हो जाती है तब उसका सीधा प्रभाव हमारे शरीर और मन पर पड़ता है। इसलिए समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि बिगड़ती जीवन शैली किस प्रकार से हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर रही है और हम किस प्रकार एक स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
2: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने बताया है कि वर्तमान में अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों की जीवन शैली बिगड़ रही है। लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह देर से उठते हैं जिसके कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती है और उनके शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इन सभी चीजों से थकान, चिड़चिड़ापन और कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती है।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही हम देखते हैं कि स्वास्थ्य पर कई सारे नुकसान पड़ते हैं, जैसे कि मोटापे की समस्या बढ़ जाती है, मधुमेह का खतरा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य पर असर और नींद की समस्या और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
1: बिल्कुल,
2: तो इस तरीके से कशिश और मनीषा हम कह सकते हैं श्रोता साथियों से कि बिगड़ती जीवन शैली के कारण हमारे स्वास्थ्य पर कई सारे नुकसान होते हैं।
1: जी जी।
2: आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि स्वस्थ जीवन शैली क्यों जरूरी है और हम इसे कैसे अपना सकते हैं। लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
1: जी बिल्कुल, बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि बिगड़ती जीवन शैली क्या है और इसका स्वास्थ्य पर क्या असर होता है।
1: जी हाँ,
0: यही बात करते हैं सही जीवन शैली क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, सही जीवन शैली केवल बीमारी से बचने का माध्यम नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन जीने का आधार है।
1: जी हाँ,
0: एक स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाती है। इससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है और व्यक्ति अधिक खुश और ऊर्जावान महसूस करता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया कि सही जीवन शैली क्यों अपनाना जरूरी है। यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि सही जीवन शैली वे कैसे अपनाएं,
2: बिल्कुल,
1: तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें संतुलित आहार लेना है। भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें, अनाज, दूध और सूखे मेवे शामिल करें साथियों। अधिक तेल, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि प्रतिदिन कम से कम 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करें।

0: योग, पैदल चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सब हम कह सकते हैं कि अंजलि जी और कशिश हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। साथ ही श्रोता साथियों, आपको पर्याप्त नींद लेनी है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। समय पर सोने और जागने की आदत विकसित करें। और श्रोता साथियों, आपको पर्याप्त पानी भी पीना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। अब यहीं अगर बात करें कि स्वस्थ जीवन शैली में योग का क्या महत्व है, तो देखते हैं कि भारत की प्राचीन योग परंपरा आज पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है।
0: जी हाँ,
1: क्योंकि योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। देखा जाता है श्रोता साथियों कि जब हम अपने जीवन शैली में योग को शामिल करते हैं तो इसके ढेर सारे लाभ होते हैं। जैसे कि तनाव कम होता है, शरीर को लचीला यह बनाता है, मानसिक शांति देता है, रक्त संचार को बेहतर करता है और इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है साथियों।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में आपको प्रतिदिन कुछ मिनट योग और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें। तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थ जो होते हैं वो स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे दूरी बनाकर रखना स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से बीमारियों का पता चलता है और प्रारंभिक अवस्था में ही उसका इलाज किया जा सकता है।
0: जी हाँ,
2: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन शैली केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। परिवार यदि पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा दे तो बच्चों में भी अच्छी आदतें विकसित होती हैं।
0: बिल्कुल,
2: स्कूल, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामुदायिक संगठन भी स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके।
0: हाँ।
2: यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से बनता है और उन्हीं आदतों से बिगड़ता भी है। आधुनिक जीवन की सुविधाएं हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जब सुविधाएं हमारी सक्रियता छीनने लगे, स्वास्थ्य पोषण पर भारी पड़ने लगे और स्क्रीन हमारे परिवार, प्रकृति और स्वयं से हमारा रिश्ता कमजोर करने लगे, तब हमें रुककर अपनी जीवन शैली पर विचार करना चाहिए।
0: बिल्कुल,
2: याद रखिए श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं है, इसका अर्थ है ऊर्जा से भरपूर शरीर, शांत मन, सकारात्मक सोच और जीवन के प्रति उत्साह।
0: बिल्कुल,
2: अच्छी सेहत किसी एक दिन के प्रयास से नहीं बनती बल्कि छोटे छोटे अच्छे निर्णयों से बनती है। समय पर सोना, संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, तनाव को नियंत्रित रखना और अपने शरीर की जरूरतों को समझना, इसी के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को सही रख पाते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिताती है।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए युवाओं को विशेष रूप से अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
1: बिल्कुल,
0: यदि श्रोता साथियों युवा वर्ग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाए तो वह न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि पूरे समाज को भी प्रेरणा देंगे। साथ ही हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में परिवार और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
1: बिल्कुल,
0: माता पिता बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा दें और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
1: बिल्कुल, बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साथियों के बिगड़ती जीवन शैली आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। अनियमित दिनचर्या, असंतुलित भोजन, तनाव, डिजिटल उपकरणों पर ज्यादा निर्भरता, ये हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे लेकिन नुकसान तो पहुंचा रही है। श्रोता साथियों, यदि समय रहते हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसे में स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। छोटी छोटी आदतें जैसे कि संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच और नशे से दूरी साथियों हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ, बिल्कुल जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की। आपके अपने साथी मनीषा पटेल,
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर,
2: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को
3: नमस्कार।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहां हम बात करते हैं दोस्तों उन ख्वाबों की जो आंखों से निकलकर हकीकत बनना चाहते हैं, और उन हौसलों की भी जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से आज एक नए विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। साथियों, आज का हमारा विषय है खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है। तो बातें ढेर सारी होंगे इस विषय को लेकर, जानेंगे कि खुद पर विश्वास का क्या मतलब है और ऐसा होना क्यों जरूरी है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों पहले मनोरंजन इस गीत के साथ हम करें। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है। दोस्तों जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने ही कदमों पर शक करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन साथियों सच क्या है? सच तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा खुद पर विश्वास ही है। खुद पर विश्वास का मतलब है दोस्तों अपने फैसलों पर भरोसा रखना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखना। क्योंकि दोस्तों जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वो मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी पार कर पाता है। अगर इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, तो दोस्तों एक बार की बात है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था आरव। उसे गाना बहुत पसंद था लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी। जब भी वो गाता लोग उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और उसने गाना छोड़ दिया। लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा आरव, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। यह सुनकर आरव को थोड़ा अच्छा लगा। उसने फिर से कोशिश की, हर दिन प्रैक्टिस की, गलतियां भी की और उन गलतियों से सीखा भी और आगे बढ़ता गया साथियों। और एक दिन क्या हुआ, आरव यानी कि वही लड़का जो स्टेज पर खड़ा था और लोग उसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उसने खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि आरव की थी। जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में ही जाना कि जब लोग आरव का मजाक उड़ाते थे तो उसकी वजह से आरव का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा गया था। लेकिन उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसकी माँ उसका सहारा बनी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ पर आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ की बात की गहराई को समझा और फिर से कोशिश करना शुरू किया साथियों। और अंत में आरव सफल हो ही गया। क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि खुद पर विश्वास करना एक कह सकते हैं कि एक अदृश्य ताकत होती है जिसे हम सभी देख नहीं पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खुद पर विश्वास करना इतना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगी कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप दूसरों की बातों से जल्दी नहीं टूटते, आपके फैसले बेहतर होते हैं, यानी कि आपको किसी भी निर्णय लेने में कंफ्यूजन कम होता है और आप स्पष्ट तरीके से सोच पाते हैं साथियों। आप डर से बाहर निकलते हैं क्योंकि डर तो हमेशा रहेगा लेकिन विश्वास आपको उससे लड़ना सिखाएगा साथियों। और हम जैसा कि जानते हैं कि बिना विश्वास की कोई भी सपना कभी पूरा नहीं होता बल्कि अधूरा रह जाता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे, हम फैसले भी अच्छी तरीके से ले पाएंगे और हमारी सोचने की क्षमता भी दोस्तों स्पष्ट होगी जिससे हम कभी असफल नहीं होंगे। और जो लक्ष्य हमने तय किया है उस पर हम बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे और सफलता के मुकाम पर जरूर पहुँचेंगे साथियों। तो जैसा कि बातें मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से करी रही हूं और विषय हमारा चल रहा है बातचीत का कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है और ऐसा हम कर भी कैसे सकते हैं, तो ये बातें आगे भी होंगी लेकिन अभी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में विषय हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, और जैसा कि हम गीत से पहले जान पाए थे कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, अब यहीं अगर दोस्तों आपको बताएं तो जब हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, खुद पर विश्वास की कमी हर काम को बिगाड़ सकती है। आप हर काम में डर महसूस करेंगे, दूसरों से तुलना आप अपनी करते रहेंगे, और मौके आपके सामने आएंगे लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप अपने ही सपनों से दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होता है। अब यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो आपको हर दिन कुछ अच्छा करना चाहिए। जैसे कि आप खुद की तारीफ कर सकते हैं, आप खुद को नई नई चीजों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि जो लोग आपको नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, गलती करना गलत नहीं है लेकिन उन्हें दोहराना गलत है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी है, ना कि उन गलतियों को दोहराना है। साथ ही दोस्तों, खुद से आप पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब हमारे अंदर नकारात्मकता रखते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे कई काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद से ये कह सकते हैं कि मैं हर काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं बेहतर बन रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, ऐसे पॉजिटिव बातें खुद से करने से होगा ये कि आपके अंदर सकारात्मक चीजें आएंगी, और सकारात्मक होने से आपके सारे काम दोस्तों अच्छे से हो पाएंगे। साथ ही अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट रूप से तय करें, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होगा तो विश्वास अपने आप ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप आज ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो एक बार रुकिए और खुद से ये पूछिए कि क्या आपने कोशिश की, क्या आपने खुद पर भरोसा किया। अगर जवाब नहीं आता है दोस्तों, तो आज से ही आपको शुरुआत करनी है खुद पर विश्वास करने की। क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, प्रयास करना न छोड़ें, क्योंकि जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं तो हम चाहकर भी उस काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि दुनिया में हर सफल इंसान की कहानी एक जैसी होती है। उन्होंने खुद पर विश्वास किया, जब कोई और उनके साथ नहीं था तब भी उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। जब रास्ते मुश्किल थे, जब हालात उनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी हार नहीं मानी, और आज वही लोग हमारी प्रेरणा बन चुके हैं। साथियों, हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई अच्छी आदत छिपी हुई होती है, और उसी अच्छी आदत को हमें पहचानना है। क्योंकि दोस्तों, सफल तो हम सभी होना चाहते हैं, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है, लेकिन बस कमी ये रह जाती है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज से खुद पर विश्वास करें, खुद से ये कहें कि जो काम दूसरे कर सकते हैं वो काम मैं भी कर सकता हूँ, जिस काम में मैं असफल हुआ हूँ उसमें सफलता प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। अगर ऐसी सकारात्मक बातें आप खुद से करेंगे दोस्तों, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमने जाना कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, तो ऐसे में याद रखें दोस्तों कि आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। इसलिए अपने सपनों को पंख दीजिए और एक लंबी उड़ान भरिए श्रोताओं, क्योंकि आसमान उन्हीं का होता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ अब जैसा कि बातें मेरी आपसे कार्यक्रम में ढेर सारी हो चुकी है, और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान। अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी की इस दौड़ में सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है दोस्तों, तो वो है आपका खुद पर विश्वास। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, रास्ते कितने भी उलझे हुए क्यों न हो दोस्तों, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कभी भी खुद को कम मत आंकिए, क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है साथियों जो आपको आपकी हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो आज से ही एक वादा कीजिए खुद से, अपने सपनों से और अपनी मेहनत से कि चाहे जो भी हो जाए आप खुद पर विश्वास कभी नहीं खोएंगे। क्योंकि दोस्तों उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है और हौसलों की शुरुआत होती है खुद पर विश्वास से। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नई उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ दोस्तों नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग अपना ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवो, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
4: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
3: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
4: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
6: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
5: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ई हुके जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
6: ओ अंजलि बुन, इटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
5: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
6: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो,

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
1: मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है कि बुजुर्गों का क्या महत्व है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं कि हमारे जीवन में अगर हम परिवार और समाज की बात देखें तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है अनुभव, और अनुभव का सबसे महत्वपूर्ण खजाना हमारे पास है हमारे बड़े बुजुर्ग।
0: हाँ।
1: क्योंकि बुजुर्गों ने अपने जीवन में कई सारे उतार चढ़ाव देखे होते हैं, मुश्किलें देखी होती हैं और उन मुश्किलों का जो समाधान है उन्होंने किया हुआ होता है। ऐसे में उनका जो अनुभव है अगर वो हम देखें समझें उन्हें सुने तो जान पाएंगे कि किस तरीके से जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती जाती रहती है।
0: जी हाँ।
1: और उनका समाधान हमें कैसे करना होता है, आज कार्यक्रम में हम यही जानेंगे कि बड़े बुजुर्गों का क्या महत्व है और किस तरीके से उनकी जब उपेक्षा होती है तो समस्याएं बढ़ती जाती हैं और उन समस्याओं का समाधान क्या हो सकता है।
0: जी हाँ,
1: बातें ढेर सारी रहेंगी लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे साथियों को सुनवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बुजुर्गों के महत्व पर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि बोन, हम देखते हैं कि आज के आधुनिक युग में विज्ञान और तकनीकी ने जीवन को आसान बना दिया है, लेकिन इसके साथ ही संयुक्त परिवारों की संख्या कम होती जा रही है। ऐसे समय में बुजुर्गों के महत्व को समझना और उन्हें सम्मान देना हमारे लिए पहले से भी अधिक आवश्यक हो जाता है। बुजुर्ग हमारे अतीत और वर्तमान के बीच की मजबूत कड़ी है साथियों। इनके अनुभव मार्गदर्शन से ही समाज को एक नई दिशा मिलती है।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जिस तरीके से एक विशाल पेड़ की मजबूत जो नींव है वो उसकी जड़ें होती हैं, उसी तरीके से परिवार की जो मजबूत नींव है वो हमारे बड़े बुजुर्ग है। बच्चे जो है वो माता पिता से बहुत सारी चीजें सीखते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो संस्कार और बहुत सारी चीजें अलग अलग परंपरागत तरीके की होती हैं वो अपने दादा दादी नाना नानी से ही सीखते हैं।
0: तो
1: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बुजुर्ग हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अभी के समय में बुजुर्गों की अनदेखी की जाती है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हर कोई अपने जीवन में व्यस्त होता गया है। अभी के समय में हम देख रहे हैं कि हर व्यक्ति जो है वो कमाई को लेकर इधर उधर भागना, ये करना वो करना, उसमें व्यस्त है। और घर के जो बुजुर्ग हैं वो उन्हें इस तरीके से देखकर परेशान है कि आज ऐसा दिन आ गया है कि हमारे बच्चों के पास हमारे लिए 5 मिनट बैठकर बात करने का ही समय नहीं है। अगर समय होता भी है तो उनके पास फोन होता है और फोन पर कहीं ना कहीं इधर उधर से फोन आते रहते हैं, रिश्तेदारों के, दोस्तों के, वीडियो कॉल्स चलते रहते हैं। ऐसे में जो बुजुर्ग है वो अकेलापन महसूस कर रहे हैं और उनके अकेलेपन महसूस करने के पीछे कई कारण हैं जो हम ही हैं। और इसका समाधान हमें खोजने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके पास बैठकर हम बातचीत नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा कि जीवन अथाह है और उस अथाह जीवन में कितनी सारी चुनौतियां हमारे सामने आती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, श्रोता साथियों, बुजुर्ग वे लोग होते हैं जिन्होंने जीवन का लंबा सफर तय किया होता है।
1: बिल्कुल
0: अपने अनुभवों, अपने संघर्ष तथा अपने उपलब्धियों से समाज और परिवार को बहुत कुछ दिया होता है। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और समाज के सभी वरिष्ठ नागरिक हमारे लिए बुजुर्ग की श्रेणी में आते हैं।
1: बिल्कुल
0: बढ़ती उम्र के साथ भले ही उनका शरीर कमजोर हो जाए अंजलि जी, लेकिन उनका अनुभव और समझ जीवन के हर क्षेत्र में हमारे लिए उपयोगी रहती है। वे जीवन के उतार चढ़ाव को देख कर परिपक्व बन चुके होते हैं और कठिन परिस्थितियों में भी सही निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं।
1: बिल्कुल
0: साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बुजुर्ग परिवार की सबसे मजबूत नींव होते हैं। जिस प्रकार किसी भवन की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है अंजलि जी, उसी प्रकार परिवार की मजबूती बुजुर्गों के अनुभव और मार्गदर्शन पर निर्भर करती है।
1: बिल्कुल
0: वे परिवार के सदस्यों को एक सूत्र में बांध कर रखते हैं। जब परिवार में कोई समस्या आती है साथियों, तब बुजुर्ग अपने अनुभवों के आधार पर समाधान बनाते हैं। उनके सुझाव अक्सर परिवार को टूटने से बचा लेते हैं साथियों। बुजुर्ग हमारे परिवार के बच्चों को संस्कार, नीतिक, सामाजिक और जिम्मेदारियों का पाठ पढ़ाते हैं। जैसा कि अंजलि जी आपने बताया था, वे बच्चों को सच्चे और अच्छे बुरे का अंतर सिखाते हैं और उन्हें सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, बुजुर्ग परिवार को जोड़कर रखने वाली वह डोर है जो रिश्तों में प्रेम और अपनापन बनाए रखती है।
0: जी हाँ,
1: उनकी उपस्थिति घर में सुरक्षा, विश्वास और भावनात्मक सहारा प्रदान करती है। जब परिवार किसी कठिन परिस्थिति में होता है तब बुजुर्गों का अनुभव सही दिशा दिखाने में मदद करता है।
0: जी हाँ,
1: आज समाज तेजी में बदल रहा है। तकनीक, व्यस्त जीवन शैली और बढ़ती प्रतिस्पर्धा ने लोगों को इतना व्यस्त बना दिया है श्रोता साथियों कि परिवार के बुजुर्गों के लिए समय निकालना कठिन होता जा रहा है। कई बार युवा पीढ़ी यह मानने लगती है कि पुराने विचार अब उपयोगी नहीं है।
0: जी हाँ,
1: आधुनिक ज्ञान को ही पर्याप्त समझते हैं और अनुभव के महत्व को कम मांगते हैं। इस सोच के कारण हम देखते हैं कि बुजुर्ग स्वयं को परिवार से अलग महसूस करने लगते हैं।
0: जी हाँ,
1: उन्हें लगता है कि उनकी बातों का कोई महत्व नहीं रह गया। बुजुर्गों के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है अकेलापन। बच्चे नौकरी या पढ़ाई के कारण दूर चले जाते हैं। कई परिवार सभी सदस्य अपने अपने कामों में रहते हैं, ऐसे में बुजुर्ग पूरे दिन किसी से बात करने के लिए तरस जाते हैं। अकेलापन केवल भावनात्मक समस्या नहीं होता मनीषा, बल्कि मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य की भी नकारात्मक प्रभाव डालता है।
0: जी हाँ,
1: इससे तनाव, चिंता और अवसाद जैसी समस्या बढ़ जाती है।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जीवन में अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता साथियों। बुजुर्गों ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना किया होता है।
1: बिल्कुल
0: उन्होंने सफलता और असफलता दोनों को करीब से देखा होता है साथियों, युवाओं के पास साथियों ऊर्जा होती है, लेकिन बुजुर्गों के पास अनुभव होता है। जब ऊर्जा और अनुभव का मेल होता है अंजलि जी, तब सफलता के नए रास्ते खुलते हैं। इसलिए बुजुर्गों के अनुभवों को सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए। उनकी एक सलाह कई बार हमें वर्षों की गलतियों से बचा सकती है। यही कारण है श्रोता साथियों कि बुजुर्गों को परिवार का मार्गदर्शक कहा जाता है। बुजुर्ग हमारी संस्कृति और परंपराओं के संरक्षक होते हैं। वे त्योहारों, रीति रिवाजों और सामाजिक महोत्सवों का महत्व हमें बताते हैं। दादा दादी और नाना नानी द्वारा सुनाई गई कहानियां केवल मनोरंजन का साधन नहीं है साथियों, बल्कि उसमें जीवन के महत्वपूर्ण संदेश छिपे होते हैं। इन कहानियों के माध्यम से बच्चों में ईमानदारी, परिश्रम, दया, करुणा, सत्यनिष्ठा जैसे गुण विकसित होते हैं। आज जब बच्चे का अधिकांश समय श्रोता साथियों मोबाइल और इंटरनेट पर बीतता है, जब बुजुर्गों का साथ उन्हें वास्तविक जीवन के मूल्यों से जोड़ता है।
1: जी जी मनीषा, आपने सही कहा। और बुजुर्ग अपने साथ साथ जीवन भर का अनुभव लेकर चलता है। खेती, व्यापार, पारिवारिक संबंध, सामाजिक जीवन और कठिन परिस्थितियों से निपटने की उसकी समझ अमूल्य होती है। लेकिन जब उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता, तब यह अनुभव समाज के लिए उपयोगी नहीं बन पाता।
0: जी हाँ,
1: ये केवल बुजुर्गों की हानि नहीं है बल्कि पूरी नई पीढ़ी का नुकसान है, क्योंकि वह जीवन की महत्वपूर्ण सीखों से वंचित रह सकते हैं।
0: जी हाँ,
1: तो श्रोता साथी इस तरीके से हम कह सकते हैं ये बड़े बुजुर्ग जो हैं वो अनुभव की खजाना है। हम उनसे जितना ले सकते हैं अनुभव, उतना हमें अपने जीवन में लेना चाहिए। अगर हम उनके अनुभवों का सम्मान करते हैं, उनकी छत्रछाया में रहते हैं, तो हम हमारे जीवन को सरल बना सकते हैं।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बुजुर्गों के महत्व पर बातें चली रही हैं, और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छे तरीके से ये जाना कि बड़े बुजुर्गों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस तरीके से अभी के समय में ये समस्या बढ़ रही है।
1: जी हाँ।
0: श्रोता साथियों, बुजुर्ग जीवन के शिक्षक होते हैं। उन्होंने जीवन परिस्थितियों का सामना किया है, उसे मिली सीख जो है वो युवा पीढ़ी के कई गलतियों से उन्हें बचा सकती है। परिवार के संस्कार, परंपराएं और सांस्कृतिक मूल्य अक्सर बुजुर्गों के माध्यम से ही आगे बढ़ते हैं हमेशा।
1: जी हाँ।
0: जब परिवार का कोई सदस्य परेशानी में होता है तब बुजुर्ग उसे धैर्य साहस का जो कार्य है वो देते हैं। इसी के साथ श्रोता साथियों, बुजुर्ग परिवार के अलग अलग सदस्यों के बीच प्रेम और सामंजस्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
1: जी हाँ।
0: दादा दादी और नाना नानी बच्चों को कहानियों, अनुभवों और जीवन मूल्यों के माध्यम से शिक्षा देते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि बुजुर्ग परिवार के सदस्यों के लिए भावनात्मक सहारा भी होते हैं। वे परिवार में प्रेम, अपनापन और विश्वास का वातावरण बनाते हैं।
0: बिल्कुल।
1: जब कोई व्यक्ति तनाव, चिंता या निराशा का सामना करता है साथियों, तब बुजुर्ग उसे धैर्य और साहस से काम लेने की सलाह देते हैं। उनकी बातें मन को शांति देती हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। बच्चों और युवाओं को भी बुजुर्गों का साथ मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। उनके स्नेह और आशीर्वाद से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बच्चों के व्यक्तित्व निर्माण में बुजुर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वे बच्चों को अनुशासन, शिष्टाचार और नैतिक मूल्यों की शिक्षा देते हैं। अंजलि
0: जी,
1: बुजुर्ग बच्चों के साथ समय बिताते हैं, उन्हें कहानियां सुनाते हैं, खेलते हैं और जीवन के छोटे छोटे पाठ सिखाते हैं। इससे श्रोता साथियों, बच्चों का मानसिक और सामाजिक विकास बेहतर होता है। हम देखते हैं साथियों कि आज कहीं माता पिता नौकरी के कारण व्यस्त रहते हैं, ऐसे में दादा दादी, नाना नानी बच्चों की देखभाल करते हैं और उसमें भी वे अपनी भूमिका निभाते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा, परिवार के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य है कि वह बुजुर्गों को सम्मान दे।
1: जी हाँ।
0: सम्मान केवल शब्दों से नहीं बल्कि व्यवहार से दिखाई देते हैं।
1: जी हाँ।
0: उनकी बात को हमें ध्यान से सुनना है, उनकी भावनाओं को समझना है, निर्णयों में उनकी राय लेना और सम्मान का वास्तविक रूप है।
1: जी हाँ।
0: बुजुर्गों को सबसे अधिक आवश्यकता प्रेम और समय की होती है। श्रोता साथियों, यदि परिवार के सदस्य प्रतिदिन कुछ समय उनके साथ बैठकर बातचीत करें, उनकी बातें सुनें, उनके अनुभव जानें, तो वे स्वयं को परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा महसूस करेंगे। परिवार से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों में बुजुर्गों की राय अवश्य लेनी चाहिए। इससे न केवल बेहतर निर्णय लेने में सहायता मिलती है बल्कि बुजुर्गों का आत्मविश्वास भी बना रहता है। इसके साथ कहना चाहेंगे कि नई और पुरानी पीढ़ी के बीच संवाद बहुत जरूरी है।
1: जी हाँ।
0: युवा नई तकनीक और नए विचारों को समझते हैं जबकि बुजुर्ग अनुभव और जीवन मूल्यों को जानते हैं। जब दोनों एक दूसरे से सीखते हैं तब परिवार और समाज मजबूत बनता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि संयुक्त परिवारों के टूटने से भी अनेक बुजुर्ग हैं वे अकेले रह जाते हैं। इससे वे मानसिक तनाव और अवसाद का शिकार हो सकते हैं। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बढ़ती उम्र के साथ स्वास्थ्य संबंधी समस्या भी बढ़ जाती हैं। उन्हें नियमित देखभाल, चिकित्सा सुविधाओं की आवश्यकता होती है। कुछ परिवारों में बुजुर्गों की अपेक्षाएं की जाती हैं, उनकी बातों को महत्व नहीं दिया जाता है, जिससे हम देखते हैं कि वे दुख और निराशा महसूस करते हैं। कई बुजुर्ग आर्थिक रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं अंजलि जी, जिससे उन्हें अनेक परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है।
0: बिल्कुल मनीषा, गाँव और मोहल्लों में ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं जहाँ बुजुर्ग अपने अनुभव साझा करें। स्कूलों, सामाजिक संस्थानों, पंचायतों को ऐसे मंच तैयार करने चाहिए जहां बुजुर्गों के ज्ञान और अनुभव का लाभ समाज को मिल सके। याद रखिए श्रोता साथियों, आज जो युवा हैं वे कल बुजुर्ग बनेंगे। जिस सम्मान और प्रेम की अपेक्षा हम अपने भविष्य में करते हैं, वही सम्मान हमें आज अपने बुजुर्गों को देना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: बुजुर्ग बोझ नहीं बल्कि परिवार के अमूल्य धरोहर है। उनका अनुभव व प्रकाश है जो जीवन की कठिन राहों को आसान बनाता है।
1: जी हाँ।
0: कहना चाहेंगे मनीषा कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों को कि किसी भी समाज की पहचान केवल उसकी आधुनिकता से नहीं होती बल्कि इस बात से होती है कि वो अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करता है।
1: बिल्कुल।
0: बड़े बुजुर्ग हमारे अतीत की स्मृतियां, वर्तमान की समझ और भविष्य की दिशा होते हैं। वे उस दीपक की तरह होते हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को रास्ता दिखाते हैं। यदि हम अपने बुजुर्गों को सम्मान, प्रेम और अपनापन देंगे तो हम केवल एक व्यक्ति का सम्मान नहीं करेंगे बल्कि उन मूल्यों का सम्मान करेंगे जिन पर परिवार और समाज की नींव टिकी हुई है।
1: जी हाँ।
0: उनके अनुभवों को सुनना, उनकी भावनाओं को समझना और अपने प्रेम और अपने जीवन का सक्रिय हिस्सा बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए हम सभी को संकल्प लेना है कि हम अपने घर और समाज में बुजुर्गों को वह स्थान देंगे जिसके वे वास्तव में हकदार हैं। क्योंकि जिस घर में बुजुर्गों का आशीर्वाद, अनुभव, स्नेह होता है मनीषा, वह घर केवल ईंटों और पत्थरों का मकान नहीं बल्कि खुशियों, संस्कारों और अपनत्व से भरा एक सच्चा परिवार बन जाता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। यही अगर बात करें कि बुजुर्गों का सम्मान क्यों जरूरी है, तो हम देखते हैं कि बुजुर्गों का सम्मान करना हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनका सम्मान करना केवल हमारा कर्तव्य नहीं है साथियों, बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल।
1: जो लोग अपने बुजुर्गों का सम्मान करते हैं उनको उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। बुजुर्गों का सम्मान करने से परिवार में प्रेम सौहार्द्य बना रहता है साथियों। इसके अलावा बच्चों पर भी उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जब बच्चे अपने माता पिता को बुजुर्गों का सम्मान करते हुए देखते हैं तो वे भी उनसे वही सीखते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, समय बदलता है, जीवन शैली बदलती है, तकनीक बदलती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसका महत्व तो कभी कम नहीं होता।
1: जी हाँ,
0: बड़े बुजुर्ग उन्हें अनमोल धरोहरों में से एक है। वे केवल परिवार के सबसे उम्र दराज सदस्य नहीं होते, बल्कि संघर्ष, धैर्य, त्याग और अनुभव की जीवित मिसाल होते हैं। उन्होंने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के लिए समर्पित किया होता है।
1: जी हाँ अंजलि जी,
0: उनका सम्मान करना केवल एक सामाजिक कर्तव्य नहीं बल्कि हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आज जब दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है, तब हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि प्रगति का वास्तविक अर्थ अपनी जड़ों से जुड़कर आगे बढ़ना है। जिस समाज में बुजुर्गों की बातें सुनी जाती हैं, वहां उनके अनुभवों को महत्व दिया जाता है। जहां उन्हें सम्मान पूर्वक जीवन जीने का अवसर मिलता है, वह समाज अधिक संवेदनशील, मजबूत और संतुलित बनता है।
1: जी हाँ,
0: वही जिस समाज में बुजुर्ग उपेक्षित हो जाते हैं, वहां धीरे धीरे रिश्तों की गर्माहट और मानवीय मूल्यों का क्षय होने लगता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को विशेष सम्मान दिया जाता है। हमारे शास्त्रों में माता पिता को गुरु के समान देवता माना जाता है। प्राचीन काल से ही भारत में संयुक्त परिवार की परंपरा रही है साथियों, जहाँ बुजुर्ग परिवार के मुखिया होते थे। उनकी सलाह और अनुभव परिवार के लिए बहुत महत्व रहते थे। आज भी यही परंपरा हमारे समाज की सबसे बड़ी ताकत है। साथ ही अंजलि जी, हम देखते हैं कि युवाओं को चाहिए कि वे बुजुर्गों के अनुभवों का सम्मान करें और उनसे का प्रयास करी, बुजुर्गों को बोझ न समझे, श्रोता साथियों उन्हें परिवार का अमूल्य धरोहर माने। युवाओं को उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी जरूरतों को समझना चाहिए और उन्हें यह महसूस कराना चाहिए कि वे परिवार के महत्वपूर्ण सदस्य हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये जान पा रहे हैं कि बुजुर्गों का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस तरीके से हमें बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। ये बातें निरंतर आगे भी कार्यक्रम के माध्यम से यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन भी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि श्रोता साथियों, हम बातें कर रहे थे बुजुर्गों के महत्व पर। साथी अंजलि जी, हम देखते हैं कि बुजुर्गों का जीवन संघर्ष, मेहनत और धैर्य की मिसाल होता है।
1: बिल्कुल,
0: उन्होंने अनेक कठिनाइयों का सामना करके अपने परिवार और समाज को आगे बढ़ाया होता है। उनका जीवन हमें सिखाता है साथियों कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, धैर्य और मेहनत से काम लिया जाए तो सफलता अवश्य मिलती है। उनकी जीवन की यात्रा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। साथ ही श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि बुजुर्ग हमारे समाज और परिवार के अमूल्य धरोहर हैं। वे अनुभव, ज्ञान, प्रेम के स्रोत हैं साथियों। उनका सम्मान करना और उनकी देखभाल करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है।
1: बिल्कुल मनीषा, हम देखते हैं गांव में रवि नाम का एक युवक रहता था।
0: जी हाँ,
1: वह पढ़ा लिखा था और शहर जाकर नौकरी करने का सपना देखता था। उसके घर में श्रोता साथियों, उसके माता पिता और दादाजी रहते थे। दादाजी बहुत अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे। गाँव के लोग अक्सर उनसे सलाह लेने आते थे।
0: जी हाँ।
1: लेकिन रवि को लगता था श्रोता साथियों कि दादाजी की बातें पुराने जमाने की है। वह अक्सर उनकी सलाह को नजरअंदाज कर देता। जब भी दादाजी कोई बात समझाने की कोशिश करते, रवि कहता, दादाजी अब समय बदल गया है।
0: हाँ।
1: आपकी बातें आज के दौर में काम नहीं आती। दादाजी मुस्कुरा देते और कुछ नहीं कहते। एक दिन रवि को शहर में नौकरी मिल गई। वह बहुत खुश हुआ और शहर चला गया। शुरू शुरू में सब अच्छा चला, लेकिन कुछ महीनों बाद उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कभी सहकर्मियों से विवाद हो जाता, कभी गलत निर्णयों के कारण आर्थिक नुकसान हो जाता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा। एक दिन छुट्टी लेकर वह गांव आया। घर पहुंचते ही उसने देखा कि दादाजी बरामदे में बैठे अपनी पुरानी घड़ी को साफ कर रहे हैं।
0: जी हाँ।
1: रवि ने हंसते हुए कहा, दादाजी ये घड़ी तो बहुत पुरानी हो गई है, अब कौन इसका इस्तेमाल करता है। दादाजी ने मुस्कुराकर पूछा, बेटा क्या यह घड़ी समय बताना बंद कर चुकी है। रवि बोला, नहीं, समय तो सही बता रही है। दादाजी ने कहा, बस यही बात समझ लो, पुरानी होने से किसी चीज का महत्व खत्म नहीं हो जाता।
0: जी हाँ।
1: यदि वह आज भी सही रास्ता दिखा रही है तो उसकी कीमत बनी रहती है।
0: बिल्कुल।
1: रवि चुप हो गया। दादाजी ने आगे कहा, बेटा अनुभव भी इसी घड़ी की तरह होता है। समय भले ही बदल जाए, लेकिन सही अनुभव हमेशा काम आता है। जो गलतियां हमने जीवन में करके सीखी है, उनसे तुम बच सकते हो। उस रात रवि देर तक दादाजी की बातें सोचता रहा। उसे एहसास हुआ कि वह आधुनिक ज्ञान के घमंड में

0: वो की ताकत को भूल गया है। इसके बाद उसने दादाजी के साथ समय बिताना शुरू किया। दादाजी ने उसे धैर्य, लोगों से व्यवहार और सही निर्णय लेने की कई बातें सिखाई। रवि ने उन सीखों को अपने जीवन में अपनाया। कुछ समय बाद वह फिर शहर गया। इस बार उसने हर समस्या का समाधान समझदारी और धैर्य से किया। धीरे धीरे वह अपने काम में सफल होने लगा। उसके अधिकारी भी उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन रवि ने फोन कर दादाजी से कहा, दादाजी आपकी पुरानी घड़ी ने मुझे बहुत बड़ी सीख दी है। अब समझ आया कि अनुभव कभी पुराना नहीं होता।
1: जी हाँ।
0: दादाजी हंस पड़े और बोले, बेटा नई राय बनने के लिए पुराने अनुभवों का सहारा लेना ही पड़ता है। उस दिन के बाद रवि ने कभी भी अपने दादाजी की बातों को हल्के में नहीं लिया।
1: जी हाँ।
0: इसलिए श्रोता साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि बड़े बुजुर्ग परिवार की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। उनका अनुभव और मार्गदर्शन जीवन की कठिन राहों को आसान बना सकते हैं।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि जिस परिवार में बुजुर्गों का सम्मान होता है वह खुशियाँ, समृद्धि और संस्कार का वातावरण बना रहता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, हमें समझना होगा कि आज जो बुजुर्ग हैं कल उसी स्थान पर हम होंगे, इसलिए हमें उनके प्रति संवेदनशीलता, सम्मानपूर्ण और जिम्मेदारी का व्यवहार करना चाहिए। तो श्रोता साथियों, आइए आज ये संकल्प ले हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी भावनाओं को समझेंगे और उन्हें प्रेम, सुरक्षा, सम्मान से भरा जीवन देने का प्रयास करेंगे। क्योंकि श्रोता साथियों, बुजुर्ग केवल हमारे परिवार का हिस्सा नहीं होते हैं, वे हमारी पहचान, हमारी संस्कृति और हमारे भविष्य की मजबूत नींव होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि बुजुर्गों का जीवन स्वयं एक खुली किताब की तरह होता है। उनके जीवन में संघर्ष, त्याग, मेहनत और धैर्य के अनेक अध्याय होते हैं। उन्होंने अपने समय में सीमित संसाधनों के बावजूद परिवार और समाज को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास किए होते हैं। आज जब युवा पीढ़ी छोटी छोटी समस्याओं को लेकर घबरा जाती है अंजलि जी, तब बुजुर्गों का जीवन हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी हिम्मत हम बनाकर कैसे रख सकते हैं।
0: बिल्कुल मनीषा, बुजुर्ग हमें सिखाते हैं कि कठिनाइयों में धैर्य कैसे रखा जाए, रिश्तों को कैसे निभाया जाए, असफलताओं से कैसे सीखा जाए और जीवन केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए कैसे जिया जाए। उनके अनुभव किताबों में नहीं मिलते बल्कि जीवन की लंबी यात्रा से प्राप्त होते हैं।
1: जी हाँ।
0: यही कारण है कि उनका मार्गदर्शन आज भी प्रासंगिक है जितना पहले था। हम अपने घरों और समुदायों में ऐसा वातावरण बनाएं जहां बुजुर्ग स्वयं को अकेला या अनुपयोगी महसूस न करें बल्कि यह महसूस करें कि वे आज भी परिवार और समाज की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनके साथ बिताया गया समय, उनके प्रति दिखाई गई संवेदनशीलता और उनका सम्मान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण बने। बस इतना ही, किसी भी परिवार की असली समृद्धि और उसकी संपत्ति से नहीं बल्कि उसके बुजुर्गों के आशीर्वाद, अनुभव, संस्कार से मापी जाती है। इसलिए आइए श्रोता साथियों, हम अपने बड़े बुजुर्गों को केवल सम्मान नहीं दें बल्कि उन्हें अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाकर एक ऐसे समाज का निर्माण करें जहाँ हर उम्र का व्यक्ति सम्मान, प्रेम और गरिमा के साथ जीवन जी सके। यही एक सशक्त परिवार, संवेदनशील समाज और बेहतर भविष्य की सबसे मजबूत नींव है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर बातें चली रही हैं और ये बातें हम आगे भी ऐसे ही जारी रखेंगे।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन क्यों ना श्रोता साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दी।
0: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हर बुजुर्ग अपने जीवन में अनगिनत संघर्षों, चुनौतियों और परिस्थितियों से गुजर कर वहाँ तक पहुँचा होता है जहाँ वह आज खड़ा है। उसने कठिन समय में धैर्य रखना सीखा है, सीमित संसाधनों में परिवार चलाना सीखा है, रिश्तों को संभालना सीखा है और जीवन की हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का साहस जुटाया है। यही कारण है मनीषा कि उनकी बातें केवल सलाह नहीं होती बल्कि जीवन के लंबे अनुभवों से निकले हुए वे अनमोल सूत्र होते हैं जो आने वाली पीढ़ियों को कई ठोकरों से बचा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: दुर्भाग्य से आज के दौर में भौतिक प्रगति की दौड़ ने लोगों को इतना व्यस्त कर दिया है कि परिवार के सबसे अनुभवी सदस्यों के लिए समय निकालना भी कठिन लगने लगा है। कई घरों में बुजुर्गों की उपस्थिति होती तो है लेकिन उनकी सहभागिता कम हो जाती है। जब किसी व्यक्ति को यह महसूस होने लगे कि उसकी बातों का कोई महत्व नहीं है तो यह केवल उसकी नहीं बल्कि पूरे परिवार की क्षति होती है, क्योंकि जहाँ अनुभव की आवाज को अनसुना किया जाता है वहाँ गलतियों से सीखने की कीमत अधिक चुकानी पड़ती है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों के आशीर्वाद को महत्व दिया गया है कि माता पिता और बुजुर्गों के सच्चे मन से दिया गया आशीर्वाद व्यक्ति के जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि लेकर आता है।
0: बिल्कुल,
1: जब हम उनका सम्मान करते हैं और उनकी सेवा करते हैं तो हम केवल उनका आशीर्वाद ही नहीं मिलता है श्रोता साथियों बल्कि आत्मिक संतोष भी प्राप्त होता है। यही संतोष किसी भी भौतिक वस्तुओं से कहीं मूल्यवान होता है।
0: जी हाँ मनीषा, कह सकते हैं कि एक स्वस्थ और सशक्त समाज वही है श्रोता साथियों जहाँ नई पीढ़ी की ऊर्जा और पुरानी पीढ़ी का अनुभव साथ साथ चले। युवा परिवर्तन की ताकत होते हैं और बुजुर्ग उस परिवर्तन को सही दिशा देने वाली बुद्धिमत्ता। जब दोनों पीढ़ियां एक दूसरे को समझती हैं, सम्मान देती हैं और साथ लेकर चलती हैं तब परिवारों की स्थिरता आती है।
1: जी हाँ,
0: समाज में सामंजस्य बढ़ता है और संस्कारों की निरंतरता बनी रहती है। हम सभी को यह संकल्प लेना होगा कि हम अपने घर के बुजुर्गों को केवल परिवार का सदस्य नहीं बल्कि परिवार का मार्गदर्शक मानेंगे।
1: जी हाँ,
0: उनकी बातों को धैर्य पूर्वक सुनेंगे, उनके अनुभवों से सीखेंगे, उन्हें एक एहसास दिलाएंगे कि वे आज भी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उनकी चेहरे की मुस्कान, उनका आत्मसम्मान और उनका आशीर्वाद किसी भी संपत्ति से अधिक मूल्यवान है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारी श्रोता साथियों से इस विषय को लेकर ढेर सारी बातें हो चुकी हैं और समय भी हो चला है हमारा कार्यक्रम से विदा लेने का।
0: जी हाँ,
1: विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पता हम बता दें।
0: बिल्कुल, तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3270001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
1: इसी के साथ दोस्तों आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेषर
1: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार
1: साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश को हम लेकर हाजिर होते हैं प्रातः 11 से 1 बजे के बीच में, और इस कार्यक्रम के माध्यम से आप अपने फरमाइश गीतों को सुन सकते हैं। श्रोता साथियों, अगर आपको अपने फरमाइश गीतों को वागर रेडियो 90.8 FM पर सुनना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं प्रातः 11 से 12 बजे के बीच में। हमारा नंबर है 9460051234। एक बार पुनः आप इस नंबर को लिख लीजिए, हमारा नंबर है 9460051234, और इस नंबर के जरिए आप अपनी फरमाइश गीतों को भेज सकते हैं हमें व्हाट्सएप पर और सुन सकते हैं वागर रेडियो 90.8 FM पर। तो श्रोता साथियों, 11 बज चुकी है, कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है लगान, गीत के बोल हैं सुनमितवा। सुना जा रहे इस गीत को सुनीता शिंदे, यशराज शिंदे, प्रशांत शिंदे, ऋषि शिंदे, कृष्णा घुड़के, रोहिता चौक, पंडरपुर शहर से हैं ये। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं अजित कसाना, माया देवी ऋतिक और आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से हैं ये। फरमाइश करता है दोस्तों इस गीत के रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से, प्रशांत सिंधे, सुनीता शिंदे, यशराज सिंधे, ऋषि सिंधे, कृष्णा घुड़के, मोहाली पंजाब से हैं बब्बल मल्होत्रा, ओम प्रकाश मल्होत्रा। तो आइए साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

श्रोताओं, बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। फिल्म का नाम था लगान, गीत के बोल थे ओ मितवा। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है रुदाली, गीत के बोल है दिल हुम हुम करे। आवाज़ दे इस गीत को लता मंगेशकर जी ने, सुना चाह रहे हैं इस गीत को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से चन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा श्रीवास, अंजू योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव, धर्मदास वाधवानी और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। कस्बा अग्रवाल मंडी टटीरी बागपत से आसिफ अली खान, मोमिन अनाज, मुस्कान आसिफ, सादिक अली खान, सारिक अली खान। गांव लाहौडडा जिला बागपत से हैं जगमोहन सिंह प्रजापत, श्रीमती मुनेश देवी, अर्जुन भारती, बिटिया अंजलि, नितिन जगमोहन, सुधीर नूतन, प्यारी पोती भुवनेश्वरी देवी। करावल नगर दहली से हैं रामनाथ प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी। जिला खरगोन मध्य प्रदेश से डॉक्टर तिलोकचंद वर्मा, श्रीमती भागवत वर्मा, अभिषेक वर्मा, सीमा वर्मा, डॉक्टर अमित वर्मा, सचिन मास्टर, समर राज आर्यन, बीवी आरोही ईशिका, अंजलि श्वेता वर्मा। पद्मा टोकिश नेपानगर मध्य प्रदेश से हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र जी शाह। तो आइए श्रोता साथ ही सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं दिल हुम हुम करे।

श्रोताओं, अभी हमने सुना रुदाली फिल्म का दिल हुम हुम कर गीत। यहीं अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है दिल तो पागल है और गीत के बोल भी हैं दिल तो पागल है। आवाज़ है इस गीत को उदित नारायण साहब और लता मंगेशकर जी ने। सुना चाह रहे इस गीत को शाहजी नगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना सुकन्या और सविता भाकरे इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश

शिखा और प्रीतेश संधू, ये हैं हरगोविंद नगर नवनेश्वर से, कोहका भिलाई से हैं उत्तम सिंह जंगिल, मॉरस जंगिल, अनिल कुमार जंगिल, अजीत कुमार जंगिल, आयुष जंगिल और नंदनी जंगिल। धंधा ग्राम सुकरी कला से हैं अमित जंगिल, शकुनी जंगिल, आरुषि ओशिका, आदित्य जंगिल और अंजलि जंगिल। फरमाइश करता है इस गीत के जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कामरे, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कामरे। गांव व डाकघर निमनाबाद, जिला जींद हरियाणा से जसप्रीत सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर। मुगलपुरा बागपत से हैं अब्दुल सत्तार अब्बासी, सालार पहलगांव कश्मीर से हैं मिर्जाउद्दीन। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत की बोल हैं दिल तो पागल है।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है आंधी, गीत के फूल हैं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकायत नहीं। सुनाचार इस गीत को ग्राम पंचायत बठीना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति प्रहलाद वर्मा, मुरली अमित वर्मा अनुरोध करता है। इस गीत के मलियाना सरदना मैरिट से अनिल जैन, जैन साहब संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीवीएम जैन, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेश्वरी ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा तुलसी और देशा गोस्वामी नरगुड़ा छत्तीसगढ़ से हैं। ये अनुरोध करता है इस गीत की मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से जगदीश ठाकर नायमा, श्रीमती रंजूबाई ठाकर, युवराज सिंह ठाकर, शिवांगी ठाकर, बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मुनत, नेहा जैन, दीपक मयंक मुनत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पवार, दीक्षा कुश मुनत, गाजियाबाद से हैं शिशुपाल अकेला जी। तो सुनना चाह तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं तेरे बिना जिंदगी से।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है अपनापन। गीत की बोल है, आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है। सुनना चाह रहे इस गीत को भोपाल का राजस्थान से धर्मेंद्र चिंपा, कपिल चिंपा, ईशान चिंपा, पूजा परिहार। इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब। ये हैं ग्राम कुम्हार हिरा सरहानपुर से। और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, नितेश कुमार देवानगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, तनुजा देवानगन, ईशान देवानगन। ये हैं पलारी छत्तीसगढ़ से। हदगांव महाराष्ट्र से शंकर गिरबिड़े, दिलीप गिरबिड़े, कविता गिरबिड़े। गांव जाखुत राजस्थान से शंभूदयाल खट्टक, विमला देवी, अमरजीत खट्टक, सुंदरलाल खट्टक, योगेश कुमार खट्टक, दीपक कुमार खट्टक, कुमारी पूजा खट्टक। दादरी गेट भिवानी से कृष्णा मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा। छप्पर वाली मस्जिद कासगंज से है मोहम्मद जाहिद, जाहिद अली सैफी, आबाद खान, मोहम्मद जोहान सैफी, लीबा मलिक। गांव हांडी खेड़ा सिरसा से राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, आदमी मुसाफिर है।

निचंदन, प्रतीक्षा चंदन, अभिषेक चंदन, सार्थक चंदन, प्रथमेश चंदन, संतोष चंदन, पांडुरंग कुमार और भी दोस्त हैं। दोस्तों जो इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं, पटेल नगर मालोद से डॉक्टर रमेश कुमार जजोरिया, गीता रानी जजोरिया, गगनदीप जजोरिया, आरजू जजोरिया और गुड्डू, ग्राम नगर कोला कौरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देव साहू, प्रेम पूजा दुष्यंत प्रांजल, समीक्षा बीबी, आराध्य देवी साहू। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, मैंने जिसको दिल ये दिया है।

अभी हमने सुना, फिल्म का नाम था मुस्कान, गीत के बोल थे मैंने जिसको दिल ये दिया है। अगली फरमाइश हमारे पास आई है, फिल्म का नाम है खानदान, गीत के बोल हैं, ये मुलाकात एक बहाना है। सुना जा रहा है इस गीत को खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, लाडू कोयल मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से हैं पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविका सिक्का इसी गीत के साथ शामिल हो रहे हैं। कलानूर से हैं नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। फरमाइश करता है इस गीत की ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहिब, मेहरा जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं। कोयते बस्ती पुनावले से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, शाइसा सोनवने। आरश्रीरामपुर से हैं डी अशोक कुम्भार, अविका जीविका, सानू कुम्भार, अर्चना कुम्भार। दिल्ली बिहारी कॉलोनी से हैं वीणा मस्किन, तुलसी मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना। अनुरोध करते हैं दोस्तों इस गीत के सप्तरंग श्रोता परिवार, कुंभार कले, श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका दले, सानिका दले, पुनावले पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा सोनवने, अविका सोनवने, विशाखा सोनवने। तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को, गीत के बोल हैं, ये मुलाकात एक बहाना है।

साथियों, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है आराधना, गीत की बोल है, कोरा कागज था ये मन मेरा। सुना जा रहा है इस गीत को सदर बाजार मारवाड़ पिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जय नारायण चौहान, तरुण चौहान, प्रतीक चौहान। बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून अंसारी और सुरित रमेश शाह साहू। डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्ल्यू अंसारी, डॉक्टर सोना मदीपा, डॉक्टर दानिश अंसारी। गुला बाजार बक्सर से हैं श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद आर्य और परमानंद आर्य। सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और असमा खातून अंसारी। तुलसी मस्किन, वीणा मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। बिहारी कॉलोनी दिल्ली से चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशुरिधान खुराना। उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं, कोरा कागज था ये मन मेरा।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे पास आई है। फिल्म का नाम है मोहरा, गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी। सुना जा रहा है इस गीत को मयूरेश कंप्यूटर हथगांव जिला नांदेड़ से प्रशांत जाधव, ऐश्वर्या जाधव इसी गीत के साथ जुड़ रहे हैं। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नवानकर, निर्मल नवानकर, विशाल नवानकर, सोपान ताइड़ी, नारायण इंगली। ग्राम पंचायत कालीगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर जी राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, कुमार संचित वायल, कुमार प्रथमेश देशमुख, कुमार सर्वत देशमुख, कुमारी प्रणाली देशमुख, कुमारी जानवी देशमुख, कुमारी कल्पना देशमुख। कुड़ी सेक्टर 5 सूर्यनगर जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहन चौहान, कल्पित चौहान, बीबी करवी, बीबी बोय हिमाक्ष। ऊपरकोट मोहला चौकोनिटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निकत परवीन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, सरफराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अबान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सारे सदस्य। तो आइए दोस्तों सुन लेते हैं इस गीत को। गीत के बोल हैं टिप टिप बरसा पानी, फिल्म का नाम है मोहरा।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। जैसा कि श्रोता साथियों, कार्यक्रम का सिलसिला बना हुआ था सुबह 11 बजे से, जिसे आप सुन पा रहे थे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में। अब आप इसे सुन पाएंगे मेरे साथ में, यानी कि आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में। साथियों, इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। फिल्म का नाम है दाग। गीत के बोल हैं मेरे दिल में आज क्या है। इस गीत को आवाज दी है किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव, विनाद पुरी जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं कंस्टुडवारा से शमशुल कमर राही, साइन फातिमा, अजनान खान, फिजाद खान, अनु खान, उस्माद अंसारी, कलीम जी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं सिंधी बुजुर्ग महाराष्ट्र से किशोर वड़तकर, शुभम वड़तकर, पन्नू वड़तकर जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं मॉडल ट्यून कर्नल से सुधीर न्यूटन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापत, प्रतिभा शर्मा, स्प्रिश शर्मा, हरिपाल कुंवर, किरण ठाकुर और लग्गी जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल ही मेरे दिल में आज है क्या। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में।

दोस्तों अभी हमने दाग फिल्म का बहुत ही प्यारा गीत सुना। गीत के बोल थे मेरे दिल में आज क्या है आओ तुम्हें बता दूं। इस गीत को आवाज दी थी किशोर कुमार जी ने। इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। फिल्म का नाम है सनम बेवफा। गीत के बोल ही चूड़ी मजा न देगी। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है गुणवत श्रीवास, श्रीमती करुणा श्रीवास, आरुषि श्रीवास, विवेक जी श्रीवास, बीबी आरुषि जी। छत्तीसगढ़ से जुड़ना चाह रही है मोहन सिंह राज, अनिता राज, सुमी, सुमित, मोनो, मानस जी राज। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रही हैं दुरापुर उत्तर प्रदेश से। मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाच पंकज, काजल सीमा, मानवी तन्वी, लक्ष्य सोनी, मोहिनी ऋतिक, बलवीर सिंह जी। इसी बीच जुड़ना चाह रही हैं अस्तुपुरा जिला महू से मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक जी अंसारी। गाजीपुर से जुड़ना चाह रहे हैं आज़ाद अली अनवर, रजवाना परवीन, अब्दुल्ला जी आज़ाद। इसी बीच जुड़ना चाह रहे भाटापारा छत्तीसगढ़ से हिमकेश्वर शाहू, करण राहुल शाहू, चंपाजी शाहू। पटियाकला दुर्ग से जुड़ रहे हैं संजय शाहू, शशांक शाहू, सीमा शाहू, सुजिता जी शाहू। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चूड़ी मजाना देगी, कंगन मजाना देगा। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है कोरावली से। फिल्म का नाम है रंग, गीत के बोल हैं, तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। इस गीत को आवाज़ दी है सोनू कुमार और अलका जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है साहिद हुसैन अंसारी, नरसी अंसारी, नूरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद फेक जी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं नवाशहर पंजाब से गंगदीप थांदी, दीप्ता कुमारी थांदी, डॉक्टर प्रियंका थांदी, डॉक्टर प्रशांत थांदी, डॉक्टर प्रियम थांदी, बीबी वामिका वानी जी थांदी। इस गीत के अनुरोध करता है बरका काना से अफ्ताब ताज, साहिन सुल्तान, सोनू तस्नीम, कमल कुमार, अफ्ताब मलिक जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इजरार, नरगिस जी खातून। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से अब्बास आलम, मजद अली, नाडली, निशा और सभी मित्र जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं तुझे ना देखो तो चैन मुझे आता नहीं है। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए श्रोता साथियों, इस गीत की बात बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है धनुरी तेले वाला उत्तराखंड से। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल, गीत के बोल हैं परदेसी ये सच है पिया। इस गीत को आवाज दी है लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार जी ने। इस गीत के अनुरोध करता है निसार सलमानी, नौसाद सलमानी, बेबी आलिया, आयन बाबू। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पुणे से पंकज वाड़ोदी, आर्या प्रियंका, बेटी वाड़ोदी जी। इस गीत के अनुरोध करता है भेड़चर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयशी मिलेत्री, अंजलि करवा, बाल प्रसाद करवा, रामनिवास अग्रधवाल, धनजय बिट्टू, बीबी कुतलेश जी। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं लोरमी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से कमलकांत मरावी, प्रमिला मरावी, नेवा मरावी, पुष्पराज मरावी, ऋषभ जी मरावी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्रपति संभाजीनगर से राजेश सांबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल जी राजेश। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं परदेसी ये सच है पिया। इस गीत को आवाज दी है लता जी ने और किशोर कुमार जी ने। फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा साथियों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

आइए दोस्तों इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है चूरी छत्तीसगढ़ जिला कोरबा से। फिल्म का नाम है सौदागर, गीत की बोल ही इमली का भूटा भेरी का पेड़। इस गीत की फरमाइश करता है लक्ष्मण सिंह ठाकुर, सावित्री देवी ठाकुर, माला ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, ईश्वर सिंह ठाकुर, मानुषानु, बब्बन मीनू, काना हरिप्रिया जी ठाकुर। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल, गुरशब्द सिंह राहुल। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति वर्मा, शिवांशी वर्मा। इस गीत के अनुरोध करता है जनकपुरी सहारनपुर से जोन डिकिस्ट्रो, रुजी डिकिस्ट्रो, पॉल डिकिस्ट्रो, विलेज डिकिस्ट्रो। कंस्टडवारा से जुड़ना चाह रहे हैं मोहम्मद करीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद यान अंसारी, मोहम्मद उस्मान जी अंसारी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं अमरावती से हीरामन शेंडी, शीला देवी शेंडी, सिद्धार्थ गुड़ानी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं बाबा गुटरी रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, आशिक संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान, उत्कर्ष जी चौहान और डुग्गू जी। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल ही इमली का भुट्टा। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है जरूर वरूर से। फिल्म का नाम है राजा हिंदुस्तानी, गीत के बोल हैं परदेसी परदेसी। इस गीत को आवाज़ दी है बाबा साहेब वाडोदी, मीनाक्षी चर्बे, रजनी कानेरी जी ने। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, वासी महाराष्ट्र से मास्टर विठल सुरेशी, सुषमा सुरेशी, परिधि सुरेशी, मायराजी सुरेशी। इस गीत के अनुरोध करता है झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत जी और साधिया जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे महाराष्ट्र से रुपेश संगई, महेश संगई, ब्रजेश संगई, प्रीतेश संगई और संगई परिवार के सदस्यगण जुड़ना चाह रहे हैं। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में, आपके अपने साथी मनीषा पटेल के साथ में।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है झारखंड से। फिल्म का नाम है राम लखन। गीत के बोल हैं, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। इस गीत की फरमाइश करता है मोहम्मद यासीन अनजान, साइना नवाज, हसन नवाज, बाबू अहमद, मिफरा नवाज, बेबी चाहत और सादिया जी। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं। करेली से मोहम्मद यासीर अंसारी, नूरीन अंसारी, शमा अंसारी, शशिला अंसारी, माहिनूर जी अंसारी इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। उत्तराखंड पौड़ी गढ़वाल से उमा सिंह, श्रीमती महेश्वरी देवी, सोनू मोनू, राहुल रश्मि, प्रियंका सृष्टि बन्ने, आरुषि शोरिया, दिनेश जी। दिल्ली से जुड़ना चाह रही हैं तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से जुड़ रहे हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशव खुराना, रिधांजी खुराना इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं। खड़वा से राजेश सेन, सिरिखा सेन, शुभमजी सेन और अक्षय जी सेन। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, तेरा नाम लिया तुझे याद किया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है मुजफ्फरपुर बिहार से। फिल्म का नाम है विश्वात्मा, गीत के बोल हैं दिल ले गई तेरी बिंदिया। इस गीत की फरमाइश करता है आर्यन राज, रोहित राज, पीयूष कुमार जी और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ मदनपुर से श्रवण कुमार शाहू, योगेश शाहू, राहुल जी शाहू। इसी बीच जुड़ना चाह रहे यूपी से सूर्य चौरासिया, श्रीमती सरोज चौरासिया, सबोध चौरासिया, सलोनी चौरासिया, संजू लल्ला चौरासिया, बाबू शिवा चौरासिया, संजू चौरासिया, शिवानी चौरासिया, पवन घोड़े जी, योगेंद्र नायक जी। कानपुर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती सुजाता चौरासिया, पंकज चौरासिया, पीहू और दियाजी चौरासिया। आगरा से जुड़ रही हैं श्रीमती सरिता चौरासिया, सुमित चौरासिया और अभीर जी चौरासिया। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गुड़ाने, अर्जनाताई गुड़ाने, हीरामन शेंडी, प्रणय प्रसिद्धि, प्रतिभाजी गुड़ाने। इस गीत के अनुरोध करता है भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, श्रीमती अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, श्रीमती बानी चावला, लोकेश जोशी, श्रीमती पायल जोशी, बेबी वेदही जोशी, बेबी हंसिका जी जोशी, कुमारी अंकिता जोशी। खड़वा मध्य प्रदेश से जुड़ रही हैं अब्दुल गफ्फा डावर जी। मध्य प्रदेश से जुड़ना चाह रहे हैं श्रीमती जयवंती जी केवट। और भी साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं झारखंड से हमजद अली लाडली जी और बेबी निशा। आइए दोस्तों सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल ले गई तेरी बिंदिया। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

आइए दोस्तों, इस गीत के बाद बढ़ते हैं अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आ चुकी है बिहार से। फिल्म का नाम है जिगर, गीत के बोल हैं प्यार के कागज पे। इस गीत की फरमाइश करता है सुधा शर्मा, काजल शर्मा, मीरा शर्मा, अनामिका जी शर्मा। और भी श्रोता साथी हमारे साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पलेरा टिकमगढ़ मध्य प्रदेश से बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा, आशीष जी विश्वकर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रियंका वर्मा, निखिल वर्मा, यजस्वी वर्मा। इसे भी जुड़ना चाह रहे हैं राजगढ़ बिहार से उमा राज, पवन राज, संजीव उमा, दीपक उमा, कमल उमा। खड़वा से जुड़ रही हैं राधिका, अनीता, सपना और राकेश ताई। रायगढ़ से जुड़ना चाह रही हैं निशा डोमेन, ओशा डोमेन, जानवी डोमेन जी। सहारनपुर से जुड़ रहे हैं देवशंकर यादव, प्रभा रानी यादव, सुरेश यादव, नरेंद्र जी यादव। आइए दोस्तों, सुनते हैं फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं प्यार के कागज पे। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में वाकड़ रेडियो 90.8 FM पर आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल के साथ में। और साथियों, यह गीत आज के कार्यक्रम आपकी फरमाइश का अंतिम गीत है। हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में। तब तक के लिए नमस्कार।

तो भाइयों बनो, आ तो हती हमारी आज की सभा। मैं आशा करा कि आज की सभा में प्रसारित थावा वाला कार्यक्रम गीत संगीत आपने पसंद आई हुआ होगा। आपने हमारा आज ना कार्यक्रम केवा लाग्या इने बल्ले आप हमने राय सुझाव आली शको हमारे अणा पता माते। हमारो पतु है वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कोपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 3270001। अजी वधारे जानकारी बल्ले आप हमने फोन करी शको हमारे अणा फोन नंबर माते। हमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाइयों बोनो, आ तो हती हमारी आज नी सभा। बीजी सभा में फेरी मुलाकात थागा तारुदी आपनी साथी अंजलि नु राम राम।

समय के आरंभ से ही मनुष्य को एक प्रश्न सदा पीड़ा देता है कि वो अपने संबंधों में अधिकतम सुख और कम से कम दुख किस प्रकार प्राप्त कर सकता है। क्या आपके सारे संबंधों ने आपको संपूर्ण संतोष दिया है? विचार कीजिए। हमारा जीवन संबंधों पर आधारित है, हमारी सुरक्षा संबंधों पर आधारित है, इसी कारण हमारे जीवन के सारे सुखों का आधार भी संबंध है। किंतु फिर भी हमें संबंधों में ही अधिकतर दुख क्यों प्राप्त होते हैं? सदा ही संघर्ष भी संबंधों से ही उत्पन्न क्यों हो जाते हैं? कभी विचार किया है? जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के विचार अथवा कार्य को स्वीकार नहीं करता, उसमें परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो संघर्ष जन्म लेता है। अर्थात जितना अधिक अस्वीकार उतना ही अधिक संघर्ष, और जितना अधिक स्वीकार उतना ही अधिक सुख। क्या ये वास्तविकता नहीं? यदि मनुष्य स्वयं अपनी अपेक्षाओं पर अंकुश रखे, अपने विचारों को परखे, किसी अन्य व्यक्ति में परिवर्तन करने का प्रयत्न ना कर स्वयं अपने भीतर परिवर्तन करने का प्रयास करे, तो क्या संबंधों में संतोष प्राप्त करना इतना कठिन? अर्थात क्या स्वीकार ही संबंध का वास्तविक अर्थ नहीं? स्वयं विचार कीजिए।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाई बोनु, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मे जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होपे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करवो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: पप्पा पप्पा, मारे भी भणवा जावू है, सोपड़ा थकी दोस्ती करवी है।
0: बस यही तो शुरुआत है बदलाव की। जब हर बेटी बेटा पढ़ेगा तभी तो गांव गांव आगे बढ़ेगा।
1: होवे न कोई गरीबी रोके, न कोई हालात रोके, शिक्षा तक इस बदलेगा हर एक दाड़ो निरातर।
5: हिंडो स्कूल जा, आपड़े अपना भी अपना पूरा करो।
0: याद रखिए, कलम की ताकत हर मुश्किल पर भारी है। हर बच्चे की पढ़ाई हम सबकी जिम्मेदारी है।
1: होवे जयवरे सब सोरा भणेगा, तारे तो देश अगाड़ी बढ़ेगा।
0: शिक्षा नहीं तो सपना अधूरा, शिक्षा है हर बच्चे का पूरा हक।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा बेटा, नाम ही है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
7: हर घर

0: भाई ने बोलो, घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, मिसोरनी मुस्कान
1: होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट
2: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर का स्वीकार कीजिएगा साथियों प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वगट रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ,
1: आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से कशिश और मनीषा हम बात करने वाले हैं बुढ़ापे में कम से कम इतना जरूर करें कि मन हल्का रहे।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, ये जो विषय है वो बहुत खास है क्योंकि ये हर इंसान की जिंदगी का वो पड़ाव है जिससे कोई बच नहीं सकता और वो है बुढ़ापा। लेकिन सवाल ये है कि क्या बुढ़ापा बोझ बनना चाहिए या एक सुकून भरा सफर। तो श्रोता साथियों, आज हम इसी पर बात करेंगे कि बुढ़ापे में कम से कम इतना जरूर करें कि मन हल्का रहे। ये बातें जरूर रहेंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत।
2: जी हाँ, तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
0: और आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद में आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय तो बता ही चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं बुढ़ापे में कम से कम इतना जरूर करें कि मन हल्का रहे।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी और कशिश, हम देखते हैं कि जीवन एक लंबी यात्रा है जिसमें बचपन, युवा अवस्था, प्रौढ़ा अवस्था और बुढ़ापा के सभी पड़ाव आते हैं।
1: जी हाँ,
0: हर अवस्था में अपनी सुंदरता, अपनी चुनौतियाँ और अपने अनुभव होते हैं श्रोता साथियों। बुढ़ापा जीवन का वह समय है जब व्यक्ति ने बहुत कुछ देखा होता है,
1: बिल्कुल
0: बहुत कुछ सीखा होता है और अनेक जिम्मेदारियां निभाई होती हैं।
1: जी हाँ,
0: इस समय श्रोता साथियों शरीर पहले जैसा तेज नहीं रहता है, ऊर्जा कम हो जाती है, कई बार स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां भी बढ़ जाती हैं।
1: बिल्कुल,
0: और परिवार की भूमिकाएं भी बदल जाती है साथियों। ऐसे समय में सबसे जरूरी

0: बात ये होती है हमारे लिए कि हमारा मन हल्का रहे, मन प्रसन्न रहे और जीवन में हमें बोझ महसूस न हो।
1: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि जिंदगी की शुरुआत में हम सपने देखते हैं
0: जी,
1: युवा अवस्था में उन्हें पूरा करने के लिए भागते हैं कशिश, लेकिन जब बुढ़ापा आता है तो हम अक्सर सोचते हैं काश थोड़ा और जी लिया होता
0: जी हाँ।
1: काश थोड़ा और मुस्कुरा लिया होता। बुढ़ापा सिर्फ शरीर की कमजोरी नहीं है श्रोताओं, ये मन की स्थिति भी है। अगर मन हल्का हो तो उम्र सिर्फ एक संख्या बनकर रह जाता है।
0: बिल्कुल,
1: इसीलिए आपसे कहना चाहेंगे साथियों कि बुढ़ापे में सबसे बड़ा बोझ होता है पुरानी यादों का दर्द। कभी किसी की कही बातें, कभी किसी का दिया हुआ धोखा, ये सब दिल में जमा होता जाता है
0: जी।
1: लेकिन सच तो ये है कशिश और मनीषा, जो बीत गया वो अब सिर्फ एक कहानी है,
0: बिल्कुल
1: उसे जिंदगी की सच्चाई मत बनाइए श्रोताओं। अगर आप हर दिन पुराने दुखों को याद करेंगे तो मन भारी होता जाएगा
0: जी।
1: इसीलिए माफ करना सीखिए, भूलना

0: जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, मनुष्य का जीवन केवल शरीर से नहीं चलता जी, मन से भी चलता है। यह मन खुश है तो बीमारियां भी व्यक्ति के पास नहीं आती।
1: जी हाँ।
0: यदि मन दुखी है श्रोता साथियों, तो सुख सुविधाएं भी अच्छी नहीं लगती।
1: हाँ।
0: में मन हल्का रहना इसलिए आवश्यक है क्योंकि श्रोता साथियों, यह हमारे तनाव को कम कर देता है, नींद हमें अच्छी आती है और हमारे रक्तचाप और चिंता को भी कम करता है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही श्रोता साथियों, परिवार के साथ संबंध हमारे मधुर करता है, अकेलापन हमें कम महसूस होता है और जीवन जीने की इच्छा भी हमारी अच्छी बनी रहती है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए श्रोता साथियों, मन की शांति ही बुढ़ापे की सबसे बड़ी पूंजी है।
1: जी हाँ मनीषा, क्योंकि बुढ़ापे में अक्सर लोग अकेलापन महसूस करते हैं, जैसा कि कशिश आपने पहले बताया था।
0: जी हाँ।
1: बच्चे अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं, दोस्त धीरे धीरे दूर हो जाते हैं, ऐसे में सबसे जरूरी है खुद का साथ। अपने आप से बातें कीजिए श्रोताओं, अपनी पसंद के काम कीजिए, किताबें पढ़िए, गाने सुनिए, टहलने जाइए। याद रखिए, अगर आप खुद के साथ खुश है तो दुनिया की कोई कमी आपको उदास नहीं कर सकती है।
0: बिल्कुल।
1: इसलिए कहा गया है कि खुद से दोस्ती कर लो, हर कमी में भी खुशी भर लो। श्रोताओं, बुढ़ापा मतलब रुक जाना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे चलकर भी जीवन का आनंद लेना है।
0: बिल्कुल।
1: थोड़ा टहलना, हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना, किसी सामाजिक कार्य में भाग लेना, ये सब मन को हल्का और खुश रखते हैं।
0: जी
1: याद रखिए, जिंदगी तब तक है जब तक हम खुद को जीवित महसूस करते हैं।
2: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो जैसा कि हम युवा साथियों से बात कर रहे हैं कि बुढ़ापे में कम से कम हमें इतना जरूर करना है कि हमारा मन हल्का रहे।
0: जी हाँ।
2: तो ये बातें हम आगे भी करेंगे। साथियों, आगे हम जानेंगे कि मन हल्का करने के क्या ऐसे पहले मंत्र हो सकते हैं जो हमें अपनाने चाहिए।
0: जी जी।
2: तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी आपको मनोरंजन करवाना चाहेंगे इस गीत के साथ में।
0: जी बिल्कुल कशिश, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। और जैसा कि हमारी बातें चल रही थी कि बुढ़ापे में कम से कम इतना जरूर करें कि मन हल्का हो जाए।
1: जी बिल्कुल।
0: तो कशिश, जैसा कि आपने बताया था कि गीत के बाद हम बात करने वाले हैं कुछ मंत्रों के बारे में।
1: जी जी।
0: वो मंत्र हमारे जीवन के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है।
1: बिल्कुल। अगर बात करें सबसे पहले क्षमा करने की, तो हम देखते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा बोझ ये होता है कि हमारे मन में कुछ कड़वाहट रखी हुई हो जाती है किसी व्यक्ति के लिए।
0: बिल्कुल।
1: जिसके कारण भी जब हमारा बुढ़ापा आता है जागृति जी, तो हमारा मन अशांत रहता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, अगर आपने किसी को कभी माफ नहीं किया तो आप खुद ही उस दर्द को ढो रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: बुढ़ापे में जाकर ये बोझ और भारी हो सकता है, इसलिए दूसरों को माफ करने की प्रवृत्ति आप अपनाएं। खुद को भी माफ करें श्रोता साथियों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि मनुष्य जो है वो गलती का पुतला है जागृति जी।
0: जी हाँ,
1: गलती हर किसी से हो जाती है।
0: बिल्कुल।
1: तो ऐसे में हमारे युवाओं को ये ध्यान रखना है कि उन्हें दूसरों को भी माफ करना है और खुद को भी माफ करना है।
0: जी हाँ।
1: दोस्तों, आप अपनी गलती को सीख में बदल सकते हैं, क्योंकि ये भी एक अच्छा विकल्प है, कह सकते हैं कि बोझ को कम करने का। इसलिए श्रोता साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जो क्षमा होती है वो मन को मुक्त करती है।
0: बिल्कुल
2: बिल्कुल कशिश। इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को ध्यान रखना है कि वे पुरानी बातों को छोड़ दें। बहुत से बुजुर्ग लोग बार बार पुरानी बातों को याद करते हैं।
1: बिल्कुल।
2: किसने क्या कहा, किसने सम्मान नहीं दिया, किसने दुख दिया, ऐसी बातें मन को भारी कर देती है साथियों। बुढ़ापे में सबसे अच्छा काम यह है कि हम पुरानी कटु बातों को छोड़ दें।
0: जी
2: जी, जी। जो बीत गया उसे बार बार टोने से वर्तमान खराब होता है। क्षमा करना सीखें और आगे बढ़ें।
0: जी हाँ, क्योंकि अक्सर बुजुर्ग अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो सोचते हैं अब कहने से क्या फायदा।
1: जी,
0: लेकिन
1: जी।
0: ये चुप्पी श्रोता साथियों मन को भारी बना देती है। किसी से बात कीजिए, अपना दर्द, अपनी खुशी सब साझा कीजिए, क्योंकि बातें बांटने से ही मन हल्का होता है।
1: जी हाँ,
0: कहा गया है कि दिल की बात कह दीजिए, मन का बोझ अपने आप कम हो जाएगा। साथ ही श्रोता साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि बुढ़ापे में अगर आप हर दिन ये सोचे कि मेरे पास क्या नहीं है तो दुख पड़ेगा, लेकिन अगर ये सोचे कि मेरे पास क्या क्या है तो मन अपने आप हल्का हो जाएगा।
1: जी जी।
0: हर दिन भगवान का धन्यवाद कीजिए, छोटी छोटी खुशियों को महसूस कीजिए। शुक्रिया कहना सीख लेंगे तो जिंदगी को जीना भी सीख जाएंगे। कशिश और मनीषा,
1: बिल्कुल आपने सही कहा जागृति जी। अगर इसी के आगे युवाओं को बताएं तो रिश्तों को संभालना भी सीखे युवाओं, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे बड़ी ताकत हमारे रिश्ते ही होंगे।
0: जी
1: बिल्कुल। लेकिन अगर रिश्ते टूटे हुए हुए या फिर कमजोर हुए तो अकेलापन में घेर सकता है जागृति जी। ऐसे में युवाओं को कहने का मतलब यही है कि माता पिता और बुजुर्गों का सम्मान करना जरूरी है साथियों। दोस्तों से भी आप सच्चा रिश्ता रखें और अहंकार को रिश्तों के बीच में कभी ना आने दें।
0: बिल्कुल। हाँ,
1: क्योंकि रिश्तों में ही निवेश बुढ़ापे की सबसे बड़ी पूंजी है।
0: जी बिल्कुल।
1: इसी के साथ संतोष और स्वीकार्यता भी अपनाएं, क्योंकि बुढ़ापे में सबसे जरूरी गुण हमारे पास होना चाहिए वो है संतोष। क्योंकि दोस्तों, अगर हम हमेशा ये सोचते रहेंगे कि काश ऐसा होता तो बेहतर होता, तो मन कभी हल्का नहीं होगा।
0: जी हाँ।
1: इसलिए जो मिला है उसे स्वीकार करें, जीवन को धन्यवाद दें और तुलना करना छोड़ दें। क्योंकि दोस्तों, स्वीकार्यता ही सच्ची शांति है।
0: जी
2: बिल्कुल कशिश। इसी के साथ हमारे युवा साथियों को दूसरों की मदद करनी है। जब हम किसी की सहायता करते हैं तो भीतर से संतोष पैदा होता है। बुढ़ापे में श्रोता साथियों अनुभव बहुत होता है। बुजुर्ग अपने अनुभव से परिवार और समाज को दिशा दे सकते हैं।
1: बिल्कुल।
2: किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी परेशान व्यक्ति को समझना, पड़ोसी की मदद करना, अच्छे शब्द बोलना या सेवा करना। सेवा से मन श्रोता साथियों हल्का होता है और इससे हमें शांति भी मिलती है।
0: बिल्कुल।
2: इसी के साथ हम देखते हैं कि कई बार बुजुर्ग यह चाहते हैं कि घर में सभी लोग उसकी इच्छा के अनुसार चलें।
1: बिल्कुल।
2: जब ऐसा नहीं होता है तो मन दुखी हो जाता है। समय बदलता है श्रोता साथियों, सोच भी बदलती है। इसीलिए बच्चों से प्रेम रखें, मार्गदर्शन दें, लेकिन हर बात पर नियंत्रण की इच्छा छोड़ दें। इससे संबंध अच्छे रहेंगे श्रोता साथियों और आपका मन भी हल्का रहेगा।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि जिंदगी का हर पड़ाव अपने साथ एक संदेश लेकर आता है।
1: बिल्कुल।
0: और बुढ़ापा हमें सिखाता है श्रोताओं की अब दौड़ना नहीं, जीना है। कशिश
1: जी हाँ।
0: जो मिला उसका शुक्रिया करना, जो छूट गया उसे अलविदा कहना।
1: बिल्कुल।
0: और जो बचा है उसे मुस्कुराकर अपनाना ही असली समझदारी है। इसलिए याद रखिए श्रोता साथियों, मन हल्का रहेगा तो हर दिन त्योहार लगेगा।
1: बिल्कुल।
0: दिल खुश रहेगा तो बुढ़ापा भी उपहार लगेगा। कहा गया है कि ना गमों का बोझ दिल पर रखिए, ना बीती बातों को फिर से जगाओ, जितना बचा है उतना मुस्कुरा लीजिए, बुढ़ापे को फिर से खूबसूरत बना लीजिए।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। युवा साथियों आपसे कहना चाहेंगे कि वर्तमान में जो आप कर रहे हैं वही आपके बुढ़ापे का आधार बनेगा।
2: जी हाँ,
1: इसलिए हमेशा एक बात ध्यान रखें कि आज का व्यवहार ही कल का अनुभव बनेगा साथियों।
2: बिल्कुल,
1: आज के रिश्ते ही कल का सहारा बनेंगे और आज की सोच ही कल का सुकून बन सकती है जागृति जी हमारे युवाओं के लिए।
2: बिल्कुल,
1: क्योंकि बुढ़ापा कोई अंत नहीं है साथियों, बल्कि जीवन का एक शांत और सुंदर अध्याय है।
2: बिल्कुल,
1: लेकिन यह तभी सुंदर बनेगा जब आपका मन हल्का हो।
2: बिल्कुल,
1: इसलिए अपने जीवन में युवाओं माफ करना सीखें, रिश्तों को संजोना सीखें, अपेक्षाएं कम रखें और खुद से प्रेम ज्यादा करें।
2: जी हाँ,
1: और वर्तमान को अपनाएं दोस्तों, क्योंकि मन हल्का होगा तो बुढ़ापा भी हल्का होगा, सुकून भरा होगा और खुशहाल होगा।
2: जी हाँ कशिश, इसी के साथ कशिश और जागृति जी, हम हमारे युवा साथियों को कह सकते हैं कि बुढ़ापा जीवन का अंत नहीं है बल्कि अनुभव का सुंदर मौसम है।
1: बिल्कुल,
2: वह समय है श्रोता साथियों जब व्यक्ति दौड़ भाग में थोड़ा मुक्त होकर शांति से जी सकता है। यदि श्रोता साथियों काम कम हो गया तो चिंता की कोई बात नहीं है, कम से कम इतना तो जरूर करें कि आपका मन हल्का रहे। सुबह उठें, थोड़ा चलें, मुस्कुराएं, पुरानी बातों को छोड़ दें, अपनों से बात करें, पूजा करें, किसी काम में लगे रहें और छोटी छोटी खुशियों को अपनाएं।
0: बिल्कुल मनीषा, क्योंकि हमारे श्रोता साथियों से हम यही कहना चाहेंगे कि साथियों जिंदगी की किताब का आखिरी अध्याय भी उतना ही खूबसूरत हो सकता है जितना उसका पहला पन्ना।
2: बिल्कुल,
0: बस फर्क इतना है कि अब हमें साबित नहीं करना, बस महसूस करना है, जीना है और मुस्कुराना है। बुढ़ापा कोई बोझ नहीं, जैसा कि कशिश आपने कहा था, ये तो वो समय है जब इंसान खुद से सबसे ज्यादा करीब होता है।
2: बिल्कुल,
0: अगर मन हल्का है तो हर दिन एक नई सुबह जैसा लगेगा और अगर दिल शांत है तो हर रात एक सुकून भरी कहानी बन जाएगी।
2: बिल्कुल,
0: इसीलिए खुद से वादा कीजिए श्रोता साथियों कि ना किसी से शिकायत करेंगे, ना किसी से उम्मीदों का बोझ रखेंगे, बस हर दिन को हल्के मन से और खुले दिल से जिएंगे।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे युवाओं से हमारी ढेर सारी हो चुकी है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का।
2: बिल्कुल,
1: तो विदा तो हम जरूर लेंगे युवाओं, लेकिन जाने से पहले आपको कार्यक्रम के दस्तूर को निभाते हुए अंतिम गीत सुनवाना चाहेंगे।
2: जी बिल्कुल।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का हमारा कार्यक्रम युवाओं की आवाज यही समाप्त होता है। अंत में साथियों, आपसे यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी का असली सुकून इस बात में नहीं है कि आपने कितना पाया है जी, बल्कि इस बात में है कि आपने कितना छोड़ना सीखा।
1: बिल्कुल,
0: कड़वाहट, अहंकार और बेवजह की चिंताओं को। याद रखिए युवाओं, बुढ़ापा तब सुंदर बनेगा जब मन में शिकायतें कम और शुक्रिया ज्यादा होंगे।
1: बिल्कुल,
0: जब यादें बोझ नहीं मुस्कान बन जाएंगी और जब दिल हल्का हो और हर दिन एक नई सुबह जैसा लगे। आज से ही युवाओं, खुद से वादा कीजिए कि इतना जरूर करेंगे कि मन कभी भारी न हो, क्योंकि हल्का मन ही जीवन की सबसे बड़ी दौलत है।
1: जी हाँ, तो जैसा कि कशिश, बातें बहुत सारी हो चुकी है और अब समय का मान रखते हुए आज के इस कार्यक्रम से विदा लेते हैं। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज के कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
2: जी हाँ दोस्तों, हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए साथियों, आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर।
1: बिल्कुल,
2: हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी दोस्त जागृति,
2: और आपकी अपनी दोस्त मनीषा,
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
3: नमस्कार।

0: कार्यक्रम सच्चा बचपन सुनने वाले हमारे सभी साथियों को आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM।
1: हाजिर हो गए हैं साथियों कार्यक्रम सच्चा बचपन के साथ में एक नए विषय को लेकर। आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बातचीत का विषय है अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत बचपन से। हम देखते हैं कि किसी भी राष्ट्र की मजबूती उनके नागरिकों के चरित्र व्यवहार और जिम्मेदारी पर निर्भर करती है। एक अच्छा नागरिक केवल अपने अधिकार का उपयोग नहीं करता कशिश, बल्कि अपने कर्तव्यों को भी समझता है और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाता है। लेकिन यह गुण अचानक विकसित नहीं होता है, कह सकते हैं कि यह बचपन से धीरे धीरे सीखने और अपनाने से होता है।
0: जी हाँ,
1: कहना बिल्कुल सही है कशिश कि अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत बचपन से ही होती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से इसी विषय को लेकर हम हमारे श्रोता साथियों से आज ढेर सारी बातें करेंगे। लेकिन जैसा कि हमारे श्रोता साथी जानते हैं इस बात को कि मनोरंजन करना भी कार्यक्रम का दस्तूर है,
1: बिल्कुल,
0: तो क्यों ना पहले शुरुआत में गीत हम सुने और फिर से हमारी बातचीत की शुरुआत करें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वागर रेडियो 90.8 FM पर।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हुए हम बढ़ना चाहेंगे हमारे विषय की ओर। जैसा कि कार्यक्रम में हम आज बात कर रहे हैं साथियों, अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत बचपन से को लेकर, तो यहीं आपको बताना चाहेंगे कि बचपन जो है वो व्यक्तित्व निर्माण की नींव होता है। क्योंकि अंजलि जी, बचपन को उस अवस्था के नाम से जाना जाता है जब बच्चे का मन कोमल और सीखने के लिए तैयार होता है।
1: बिल्कुल।
0: इस समय जो आदतें, मूल्य, संस्कार बच्चों में डाले जाते हैं माता पिता के द्वारा, वही उनके पूरे जीवन की दिशा तय करते हैं।
1: जी हाँ।
0: हम देखें तो अगर बचपन में ही बच्चों को सही और गलत का फर्क सिखाया जाए अंजलि जी, तो वो बड़े होकर जिम्मेदार भी बनेंगे, समझदार नागरिक के रूप में उभरेंगे।
1: जी जी।
0: हम जैसा कि जानते हैं कि एक अच्छे नागरिक के ढेर सारे गुण होते हैं, जैसे कि ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, अनुशासन, समय की पाबंदी, दूसरों के प्रति सम्मान, जिम्मेदारी निभाने की भावनाएं, कानून और नियमों का पालन करना, देश और समाज के प्रति प्रेम। दोस्तों, इन सभी गुणों को बचपन से ही हमें अपने बच्चों को सिखाना है।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि हम जैसा कि कार्यक्रम के माध्यम से बात कर ही रहे हैं कि अच्छे नागरिक बनने के लिए शुरुआत हमें बचपन से करनी होती है।
1: बिल्कुल। यही कशिश अब बात आती है कि परिवार पहली पाठशाला है। श्रोता साथियों, परिवार बच्चों की पहली और सबसे महत्वपूर्ण पाठशाला होती है।
0: जी हाँ।
1: बच्चा अपने माता पिता और घर के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। यदि माता पिता ईमानदार हैं तो बच्चा भी ईमानदारी सीखता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि घर में अनुशासन है तो बच्चा अनुशासित बनता है। यदि परिवार में सम्मान और प्रेम है तो बच्चा दूसरों का सम्मान करना सीखता है। इसलिए माता पिता को अपने व्यवहार से बच्चों के लिए उदाहरण बनना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही अब बात आती है, शिक्षा और संस्कार का केंद्र विद्यालय होता है इसकी। तो दोस्तों, विद्यालय बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान नहीं देता है बल्कि जीवन जीने की कला भी सिखाता है। कशिश, बच्चों को समय पर आना, नियमों का पालन करना सिखाया जाता है। टीम वर्क और सहयोग की भावना विकसित होती है। इसी के साथ हम देखते हैं कि सामाजिक जिम्मेदारी का बोध भी कराया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: शिक्षक बच्चों को अच्छे नागरिक बनने की दिशा में प्रेरित करते हैं और उनका मार्गदर्शन करते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा। यही अगर बात करें सामाजिक जिम्मेदारी के विकास की, तो देखते हैं कि हमारे बच्चों को ये समझाना बहुत जरूरी है श्रोता साथियों, कि वे समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: जी जी।
0: और उनकी भी कुछ जिम्मेदारियां बनती है समाज के प्रति, जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, जरूरतमंदों की मदद करना जो कि बहुत जरूरी है, और पर्यावरण की सुरक्षा करना। अंजलि जी,
1: बिल्कुल।
0: हम देखते हैं कि हमारे बच्चे जब इन सभी जिम्मेदारियों को समझते हैं साथियों, तो वे समाज के प्रति सजग भी रहते हैं और उत्तरदायी भी बनते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही अगर बात करें नैतिक मूल्यों और संस्कारों की, तो जैसा कि जानते हैं कि नैतिक शिक्षा बच्चों को सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाती है।
1: जी जी।
0: जैसे कि सच बोलने की आदत, ईमानदारी से काम करने की आदत, दूसरों के प्रति दया और सहानुभूति रखना, गलत कार्यों से बचना। श्रोता साथियों, ये जो सभी गुण होते हैं वो बच्चों को एक अच्छा इंसान और नागरिक बनाते हैं।
1: बिल्कुल। यही कशिश अब बात आती है डिजिटल युग में नागरिकता की समझ की, क्योंकि आज के समय में बच्चों को डिजिटल दुनिया में भी जिम्मेदार नागरिक बनाना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: इंटरनेट का सही और सुरक्षित उपयोग करना, फेक न्यूज से बचना, दूसरों का ऑनलाइन सम्मान करना और अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखना। साथियों, ये डिजिटल नागरिकता भी आज के समय में उतनी ही महत्वपूर्ण है।
0: जी हाँ।
1: बचपन में सीखी गई छोटी छोटी आदतें ही आगे चलकर बड़े बदलाव लाती है।
0: बिल्कुल।
1: कूड़ा कूड़ेदान में डालना, पानी और बिजली की बचत करना, लाइन में खड़े रहना और दूसरों की मदद करना। साथियों, कहना चाहूंगी कि ये छोटी आदतें ही एक अच्छे नागरिक का निर्माण करती हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि हम कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से बात कर ही रहे हैं कि एक अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत बचपन से ही होती है, तो ये बातें हम आगे भी करते रहेंगे, लेकिन अभी मनोरंजन करवाते हैं साथियों को इस प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि आज कार्यक्रम में हमारी आपसे बहुत अच्छी बातें चल रही है कि एक अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत जो है वो बचपन से ही होती है।
1: बिल्कुल।
0: अगर यही बात करें कशिश अब के माता पिता, शिक्षक और समाज की क्या इसमें भूमिका होती है, तो साथियों बच्चों को अच्छा नागरिक बनाने की जिम्मेदारी केवल एक व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे समाज की होती है।
1: बिल्कुल।
0: माता पिता बच्चों को संस्कार देते हैं, शिक्षक उन्हें दिशा और ज्ञान देते हैं, समाज उन्हें व्यवहारिक अनुभव देता है। साथियों, इन तीनों गुणों के सहयोग से ही बच्चे एक आदर्श नागरिक बन सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: एक अच्छा नागरिक ही देश को आगे बढ़ाता है, वह नियमों का पालन करता है, समाज में शांति और सद्भाव बनाए रखता है, देश की प्रगति में भी योगदान देता है। इसलिए कहना चाहेंगे साथियों कि यदि हर नागरिक अपनी जिम्मेदारी समझे तो देश तेजी से विकास कर सकता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, तो हम इस बात से समझ सकते हैं साथियों कि अच्छे नागरिक बनने की प्रक्रिया बचपन से ही शुरू होती है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अंजलि जी, बचपन में दिए गए संस्कार, शिक्षा की आदतें और भविष्य के हम कह सकते हैं कि जो गुण है वो एक नागरिक का स्वरूप तय करते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यदि हम बच्चों को केवल पढ़ाई तक सीमित न रखकर उन्हें जीवन के वास्तविक मूल्यों जैसे कि ईमानदारी, अनुशासन के गुण, जिम्मेदारी की भावनाएं और सहानुभूति की शिक्षा दे तो वे न केवल अपने जीवन में सफल होंगे बल्कि समाज और देश के लिए भी उपयोगी साबित होंगे।
0: जी जी,
1: कह सकते हैं अंजलि जी कि आज के समय में जब समाज कई चुनौतियों का सामना कर रहा है, तब ये बात और भी जरूरी हो जाती है कि हम अपने बच्चों को एक जागरूक, संवेदनशील नागरिक बनने के लिए तैयार करें।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, हमें अपने बच्चों को यह सिखाना होगा कि अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों का पालन भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि बच्चे केवल परिवार का नहीं बल्कि पूरे देश का भविष्य होते हैं।
0: बिल्कुल कशिश, कह सकते हैं कि यदि हम आज उन्हें सही दिशा देंगे तो कल वे एक बेहतर समाज और मजबूत राष्ट्र का निर्माण करेंगे। इसलिए हर माता पिता, शिक्षक और समाज के सदस्य का यह कर्तव्य है कि वे बच्चों को अच्छे नागरिक बनने के लिए प्रेरित करें और उन्हें सही मार्गदर्शन दिखाएं।
1: बिल्कुल।
0: आज का संस्कार ही कल का संस्कृत समाज बनाता है और अच्छे नागरिक ही एक महान राष्ट्र की पहचान होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए हमें यह समझना बेहद जरूरी है कि अच्छे नागरिक बनने की प्रक्रिया कोई एक दिन का या एक कक्षा में पूरी होने वाली चीज नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो बचपन से शुरू होकर जीवन भर चलती रहती है।
1: बिल्कुल अंजलि जी,
0: जिस वातावरण में पलते हैं, बढ़ते हैं, जिन बातों को सुनते हैं और जिन व्यवहारों को देखते हैं, वही उनके व्यवहार का आधार बनते हैं। बच्चों को अच्छे नागरिक बनाने का मतलब केवल उन्हें नियम सिखाना नहीं है बल्कि उनके अंदर सोचने, समझने और सही निर्णय लेने की क्षमता विकसित करना है।
1: जी हाँ।
0: जब बच्चा यह समझने लगता है कि उनके छोटे छोटे काम जैसे कि सफाई रखना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना समाज पर बड़ा असर डालता है, तभी वह एक जिम्मेदार नागरिक बनने की दिशा में आगे बढ़ता है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, अगर हम बात करें श्रोता साथियों से तो दोस्तों, हमें अपने बच्चों को ये भी सिखाना होगा कि एक अच्छा नागरिक केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि दूसरों के बारे में भी सोचता है।
0: जी जी,
1: वह समाज में प्रेम, सहयोग और सम्मान का माहौल बनाता है, क्योंकि अंजलि जी ऐसे नागरिक ही किसी देश को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं।
0: जी जी।
1: साथियों, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात आपको ये बताना चाहेंगे कि बच्चों को यह एहसास आप दिलाएं कि बदलाव उनके द्वारा लाया जा सकता है। अक्सर हम सोचते हैं अंजलि जी कि बच्चे छोटे हैं तो वे क्या ही कर लेंगे, लेकिन सच तो ये है कि बड़ा परिवर्तन हमेशा छोटी सोच और छोटे कदमों से ही शुरू होता है।
0: बिल्कुल।
1: दोस्तों, अगर बच्चा आज से ही जिम्मेदारी समझने लगे तो कल वही समाज का सशक्त और जागरूक नागरिक बन सकता है।
0: जी हाँ।
1: ऐसे में माता पिता, शिक्षक और समाज को मिलकर ऐसा वातावरण बनाना होगा अंजलि जी, जहाँ बच्चे न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ते रहे बल्कि वे अपने कर्तव्यों को भी समझे।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि जब बच्चे अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी महत्व देना शुरू करते हैं, तभी एक संतुलित सशक्त समाज का निर्माण होता है। साथियों,
0: जी हाँ,
1: ऐसे में आपसे अंत में यही कहना चाहेंगे कार्यक्रम के माध्यम से कि अच्छे नागरिक कभी पैदा नहीं होते, उन्हें बचपन से समझ, संस्कार और सही मार्गदर्शन के जरिए बनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: अगर हम आज अपने बच्चों में अच्छे नागरिक के गुण विकसित करेंगे दोस्तों, तो भविष्य में हमें एक ऐसा समाज मिलेगा जो न केवल प्रगति कर रहा होगा बल्कि मानवीय मूल्यों में भी समृद्ध होगा।
0: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज कार्यक्रम में हमने बहुत अच्छी तरीके से ये जाना कि किस तरीके से अच्छे नागरिक बनने की शुरुआत जो है वो बचपन से ही होती है।
1: बिल्कुल।
0: और हम बचपन से ही कौन कौन से ऐसे संस्कार हैं जो बच्चों को दे सकते हैं। आशा करते हैं कि ये सभी बातें हमारे साथियों को अवश्य पसंद आई होगी।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ अंजलि जी,
2: चकरा का चीचा चो चकलो रम गंडो वंडो लकरा का टम अक्को टक्को इडी गिडी गिडी गो इडी पाई विडी पाई चिकी चकचो गिली गिली मल सुलु सुलु मल मकरा का हुकु बुकुरे टुकु बुकुरे चकला का बिको चिको सिली सिली सिली गो बगड़ दुम चकड़ दुम चिकी चकचो।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज के कार्यक्रम सच्चा बचपन से हम विदा लेने की अनुमति चाहेंगे। उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी हमारी आपसे बातें रही वो आपको जरूर पसंद आई होंगी।
1: जी हाँ।
0: तो साथियों, आपको हमारा आज का यह कार्यक्रम कैसा लगा इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 3201। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर
0: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। नमस्कार।

0: आपको पता है जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
1: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: भाई ने बोलो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपने रह हा, या आपने ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपने हाल रह हा, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो फिर अगर पेड़ ने रहेगा तो आपने हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना ना कदम है, ई आबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

कार्यक्रम खेतीवाड़ी हमरवारा हंग्र भाई बुनो ने आपनी बुन अंजलि नु राम राम। किसान भाई बुन आप हम रेडियो हो आपू सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM माते ने आप सबनो गणिमान स्वागत करो हो अमारे आज से कार्यक्रम खेतीवाड़ी में। जेम के भाई बुनो अमे अमारे टाइम माते हाजिर थी सह कार्यक्रम खेतीवाड़ी ने लेने एक ना विषय ने हाथे। तो भाई बुनो आज अमारी कार्यक्रम में आप तकी बातचीत नो विषय है फसल विविधीकरण एटले हांगणी खेती नु हूँ महत्व है ने हरते आपणे आने अपनाव सुए। तो आना विषय माते कार्यक्रम खेतीवाड़ी में अमारी अब तक की घना का वाते थेगा पण कार्यक्रम शुरू करा इन पहले आपने हमरा विदो आ गीत ने मोरे करा अपनी वाते। तो भाई बोनो आप हमरते रहजू आपनो रेडियो अपनी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: यहाँ के समाज की, तो ये परंपरागत जो आप कई वर्षों से हैं, जो कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है हमारे समाज का, जिसने सदियों से परिवारों को पोषण, आजीविका और खाद्य सुरक्षा प्रदान की है।
1: बिल्कुल सर। तो सर, जैसा कि आपने हमें ये बताया कि फसल विविधीकरण क्यों जरूरी है और ये क्या होता है, यही अब बात करते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है।
0: जी, तो देखिए, फसल विविधीकरण की हम बात कर रहे हैं तो वर्तमान में बहुत बड़ी आवश्यकता इसकी ये है कि जलवायु परिवर्तन के कारण बहुत सारा जोखिम आपको देखने को मिल रहा है।
1: बिल्कुल।
0: जैसे अनियमित वर्षा, कभी ज्यादा हो गई कभी कम हो गई, इसके साथ में कभी सूखा पड़ जाता है, कभी अधिक वर्षा हो रही है, तो इन परिस्थितियों में क्या है कि जो फसलें हैं सभी फसलें एक साथ प्रभावित नहीं होती है।
1: बिल्कुल।
0: जबकि अगर एक ही फसल होगी हो सकता है कि पूर्ण तरह से नष्ट हो जाए, तो इसलिए कि एक फसल अगर खराब होती है तो हमें दूसरी फसल मिल जाती है, इसलिए भी ये जरूरी है। दूसरा है परिवार के लिए पोषण में सुधार, कि जब हम विविध प्रकार की फसलें करते हैं, उगाते हैं हमारे खेतों में, तो यहाँ पे आपको परिवार के लिए अनाज मिल जाएगा, दालें मिल जाएगी, सब्जियां मिल जाएगी, फल मिल जाएंगे। अगर आप एक ही प्रकार के जैसे अनाज ही करेंगे तो बाकी चीजें आपकी छूट जाएगी।
1: बिल्कुल।
0: तो आपकी पोषण थाली है वो भी उस तरह से नहीं रहेगी जैसे परंपरागत हुआ करती थी।
1: जी जी।
0: इसी के साथ में इससे दूसरा जो इसका इम्पैक्ट है ये दिखेगा कि जो बच्चे और गर्भवती महिलाएं हैं, किशोरी बालिकाएं हैं, तो उनको इन जो विविध फसलें मिलती है जिसे हम बात करते हैं कि जैसे फूड डाइवर्सिटी, तो जैसे अगर भोजन की विविधताएं होगी तो आपके शरीर को सभी प्रकार के जो पोषक तत्व है वो आसानी से उपलब्ध होंगे। जबकि अगर आप एक ही चीज बार बार खाएंगे या बार बार बोएंगे तो उसमें क्या कि आपके शरीर के लिए भी नुकसान है, दूसरा आपकी खेती के लिए भी, आपके लिए भी जोखिम भरा रहता है ये।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ में ये है कि जैसे विविध फसलों की हम बात करते हैं तो इसमें हमेशा उम्मीद बनी रहती है आय का स्रोत, कि जब विविध प्रकार की फसलें होती है तो उसमें क्या है, कुछ फसलें ऐसी होती है जो आपके बेचने के लिए होती है, कुछ है अपने खाने के लिए होती है, कुछ फसलें ऐसी होती है जो खाने के लिए और बेचने के लिए, तो आपको वहां से जो है परिवार के लिए आपको एक आय का स्रोत भी बनती है विविधता जो फसलों में होती है। इसके साथ ही जब बाजार में हम बात करते हैं कि फसलों की बिक्री है, तो होता क्या है कि एक फसल का भाव कम हो जाता है तो दूसरे का अगर ज्यादा मिलता है तो आपको वहाँ फायदा हो जाता है कि आपको जो ज्यादा भाव मिल रहा है उसको बेच सकते हो।
1: जी जी।
0: तो और जो कम भाव है उसको आप रख सकते हो खाने के लिए अगर अनाज है तो, इस तरह से।
1: बिल्कुल सर।
0: इसके साथ ही हम मिट्टी के अगर संदर्भ से देखते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य से देखते हैं, तो जैसे किसान एक से अधिक फसलें करेंगे तो उससे क्या होगा कि मिट्टी की जो उर्वरता है वो बनी रहती है। जैसे कई प्रकार की दालें होती हैं तो दालों में जो पत्तियां हैं जो मिट्टी पे अगर वो झड़ती है, जैसे मूंग है, उड़द है, तो मिट्टी को नाइट्रोजन मिलता है आपकी मिट्टी को।
1: जी जी।
0: तो इस तरह से उसकी उर्वरता बढ़ती है। और दूसरा, मिट्टी को हरी खाद मिल जाती है, क्योंकि जब पत्तियां झड़ती है तो उसको खाद बनता है तो मिट्टी को पोषक तत्व मिलते हैं, और जो मिट्टी में जो मित्र कीट होते हैं या जीवाणु होते हैं वो भी उसको खाकर जीवित रहते हैं, वो भी आपकी मिट्टी को उर्वरक बनाने में मदद करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से आपकी मिट्टी भी उर्वरक रहती है। दूसरी बात ये है इसमें आप ऐसे भी देख सकते हैं, जैसे कीट प्रकोप की हम बात करते हैं, तो जब एक ही फसल आप खेत में बोएंगे तो हो सकता है कि कीटों का प्रकोप बहुत ज्यादा रहे।
1: जी जी।
0: लेकिन अगर आप खेत में एक से अधिक फसलें, जैसे हमारे यहाँ बोलते हैं हांगणी, तो हांगणी में क्या होता है कि आपने फसलें बोई 5-6 प्रकार, तो होता है कि कीटों का प्रकोप कम हो जाता है।
1: बिल्कुल।
0: जो कई कीट होते हैं जो एक फसल के लगते दूसरी के नहीं लगते, तो उससे फायदा ये होता है कि भैया एक फसल के लग रहा तो दूसरी में फायदा है। और आप अगर जैसे हम जीवामृत या फिर दसपर्णी का उपयोग करते हैं तो जो शत्रु कीट होते हैं, जो नुकसानदायक होते हैं, वो कीट वहां से भाग जाते हैं।
1: जी जी।
0: तो इस तरह से क्या है कि विविध प्रकार की फसलें बोना, जैसे हांगणी जैसी को अपनाना बहुत ही अच्छा है हमारे किसान भाइयों के लिए।
1: बिल्कुल, आपने सही कहा। तो सर, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, फसल विविधीकरण जिसे हम वागड़ क्षेत्र में हांगड़ी खेती के नाम से जानते हैं, तो सर जैसा कि आपने बताया कि ये क्यों जरूरी है, ये इसके क्या लाभ हैं जो हमारे किसान भाई बहनों को पता होने चाहिए।
0: जी, जैसे हमने चर्चा में पहले भी बात की है कि एक तो आपकी उत्पादन है उसमें स्थिरता रहती है, खेती में जोखिम कम होता है, प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है, और जलवायु अनुकूल खेती है उसको बढ़ावा मिलता है।
1: बिल्कुल।
0: तो कहीं ना कहीं आप जलवायु को भी यहाँ से कंट्रीब्यूट कर रहे हो आपकी विविध फसलों के माध्यम से। दूसरा है, अगर पोषण की दृष्टि से देखें तो आपको विविध प्रकार का आहार मिलेगा, जिससे आपको शरीर की आवश्यक जो पोषक तत्व है वो आसानी से आपको उपलब्ध होंगे।
1: जी जी।
0: कुपोषण जैसी बीमारियां हैं वो कम होगी, आजकल आप देख रहे हो कि महिलाओं में हीमोग्लोबिन की

0: कमी हो जाती है। तो अगर हम परंपरागत फसल और विविध फसलें करते हैं तो मदद मिलती है कि इस तरह की बीमारियां नहीं होती है।
1: जी जी।
0: दूसरा है कि जो बच्चों के लिए है, जो शारीरिक मानसिक विकास है उसमें सहायता मिलती है।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ में तीसरे प्रीफिक्स देखें हम आर्थिक रूप से, तो यहाँ पे जैसे आपको विविध फसलें होंगी तो आय के स्रोत भी आपके विविध होंगे।
1: जी जी।
0: बाजार में जैसे कम भाव उतार चढ़ाव की स्थिति में आपको अच्छा लाभ मिलेगा, जिसका भाव अधिक आप उसको सेल कर सकते हैं। इसी तरह खेती जो है आपको लाभकारी नजर आएगी। अगर आप एक ही फसल करेंगे, अगर नुकसान होता है तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह हम बात करें पर्यावरणीय लाभ का, तो एक तो जैव विविधता का संरक्षण होता है इससे, क्योंकि आपकी डाइवर्सिटी ज्यादा है, विविधताएं हैं आपके पास।
1: जी जी।
0: मिट्टी और जल संरक्षण में मदद मिलती है, और रासायनिक जो खाद है जो बाजार की निर्भरता है आप लाकर डालते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी,
1: होती है बिल्कुल,
0: तो ये भी आपको फायदा होगा। तो इस तरह से आपको अपनाने की वर्तमान की आवश्यकता है।
1: जी हाँ सर, जैसा कि आपने हमें बताया कि फसल विविधीकरण के कई सारे लाभ हैं, लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सी बार किसान भाई बहन जो है वो ये समझ ही नहीं पाते कि कौन सी फसल के साथ हम कौन सी दूसरी फसल कर सकते हैं। तो आदिवासी क्षेत्र में फसल विविधीकरण के कौन कौन से उदाहरण हैं जो उन्हें अपनानी चाहिए?
0: जी, तो देखिए हमारे यहाँ मुख्य तौर से बारिश के दिनों मक्का काफी अधिक मात्रा में होता है, तो मक्का के साथ आप उड़द डाल सकते हो, अरहर डाल सकते हो, तुअर जो है आप कर सकते हैं, इसके साथ में आप भिंडी भी उसमें डाल सकते हैं, चौले डाल सकते हैं। तो ये आपको अलग अलग प्रकार की और अलग अलग इनका ग्रोथ होता है और अलग उत्पादन की स्थिति में होती है।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। अगर इसी तरह हम सब्जी बाड़ी की बात करें तो आपने एक लाइन में बैंगन लगाए, दूसरी में टमाटर लगाए, फिर मिर्ची लगाई, या फिर आपके तुरई गिलकी है जो मेड़ों पे लगा दिया आपने, तो इस तरह से ककड़ी लगा दी आपने, बेल वाली लगा दी वो मेड़ों के पास लगा दिया आपने, और जो छोटे पौधे वाली वो वहां लगा सकते हैं।
1: जी जी।
0: और उनके बीच में जैसे धनिया है, या फिर आप लहसुन करना चाहते हो, प्याज है, तो वो आप उसमें कर सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो इस तरह से सब्जी की जो है अच्छे से आप पैदावार ले सकते हैं। और इसमें क्या है कि जैसे कुछ मेड़ों पे आपको नीम के पेड़ लगा दिए, सहजन है, करंज है, सीताफल है, संतरे, नींबू है, तो अमरूद है, आम है, तो ये जो फलों की डाइवर्सिटी है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगी।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही अब मैं जानना चाहूंगी, जब अगर हम फसल विविधीकरण अपनाते हैं तो इसमें हमें किन किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है और हम क्या करें?
0: जी, तो सबसे पहले तो ये है कि हमारे जो फसल विविधीकरण की बात करते हैं तो स्थानीय एवं परंपरागत बीजों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो फसल विविधीकरण की बात करते हैं तो स्थानीय एवं परंपरागत बीजों का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि वो हमारी जलवायु के अनुकूल होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जबकि हाइब्रिड अगर आप करते हो तो आपको पता नहीं होता कि वो कितना अनुकूल है या प्रतिकूल है या नुकसानदायक है। तो आप परंपरागत बीजों का उपयोग करें, स्थानीय जो भी आपके है। इसके साथ में जब आप मिश्रित खेती करें या हांगणी हम बात करते हैं, तो अनाज है, दाल है, तिलन है और सब्जियां, तो इनका मिक्सरण जैसे हमने पहले भी बात की थी कि भिंडी लगा दिया आपने, मक्का भी है, तुअर है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखने की जरूरत है। तीसरा कि जो मेड़े हैं उन पे हमने बात की थी, फलदार पौधे लगाए ताकि वो बहुत अच्छे रहते हैं और आने वाले समय में आपको अलग अलग प्रकार के फल प्राप्त होंगे।
1: बिल्कुल।
0: इसके साथ ही पोषण वाटिका, जिसमें हम बात पोषण बाड़ी की बात करते हैं, तो जैसे विविध प्रकार की जो सब्जियां हैं वो आप उसमें लगाएं, वो इसी तरह से जैसे हम हांगणी की बात करते हैं, मिश्रित खेती की बात करते हैं जिसमें हम बात भी कर रहे हैं बहुफसली, तो वहां पे आपको मिश्रण देखना जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: कि मेरा कितनी लाइन में मक्का है, कितनी में तुअर है, या तुअर के साथ आपने मक्का भी की है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखने की जरूरत है।
1: बिल्कुल।
0: दूसरा, आपकी मिट्टी और मौसम के अनुसार पानी की जो आवक है या क्षमता है उसके अनुसार आप बीजों का चयन करें।
1: बिल्कुल।
0: ना कि आपने जहाँ पानी बढ़ता है तो अगर वहाँ आपने मूंग उड़द लगा दिया तो वो नहीं होंगे, वो उनकी वो बहुत कमजोर होते हैं, नाजुक होते हैं।
1: बिल्कुल।
0: वो सड़ जाएंगी।
1: जी हाँ।
0: तो इस तरह से हम लोगों को ध्यान रखने की आवश्यकता।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। तो जैसा कि आज कार्यक्रम में आपने हमें बहुत अच्छी बातों से अवगत करवाया है, तो अंत में आप हमारे श्रोता साथियों को कार्यक्रम के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मैं सभी श्रोतागणों को यही संदेश देना चाहूंगा कि बहुफसली या मांगणी की बात करते हैं वो हमारे पर्यावरण के अनुकूल है और हमारे परिवार का जो पोषण है उसकी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो अधिक से अधिक इस प्रणाली को अपनाएं और अपने परिवार एवं स्वयं की जो पोषण सुरक्षा है उसको सुनिश्चित करें।
1: बिल्कुल। तो सर, आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: जी, धन्यवाद।
1: मैं बोलूं सिम की अपने मांगीलाल जी जुड़े तक।

0: पता है, जो नॉर्थ ईस्ट कभी दूर लगता था वो हमारे दिलों के और करीब आ गया है पिछले 12 सालों में, जब से नॉर्थ ईस्ट के नेशनल हाईवे की लंबाई बढ़कर 16,200 किलोमीटर हुई है। सिक्किम और अरुणाचल को पहली बार एयर कनेक्टिविटी मिली है, तब से नॉर्थ ईस्ट से दूरियां घटी हैं।
1: नॉर्थ ईस्ट अब दूर नहीं रहा, नॉर्थ ईस्ट अब दिल के भी पास है, दिल्ली के भी पास है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: सेहत नु राज हूं है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात की शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात काढ़ी ने जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। ओवे, सेहत है असली धन आपरो, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे, स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा तब कितना कष्ट घटा होगा।
4: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
0: नमस्कार। साथियों आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।
1: श्रोताओं लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से अंजलि हमारी बातें रहने वाली है कि समाज को बदलने वाले लोग साधारण होते हैं।
0: बिल्कुल,
1: यानी कि श्रोता साथियों हम अक्सर ये मान लेते हैं कि समाज में बड़ा परिवर्तन केवल बड़े नेताओं, धनवान लोगों या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा ही लाया जा सकता है। हमें लगता है कि बदलाव लाने के लिए असाधारण शक्ति, अपार धन या ऊंचा पद होना आवश्यक है।
0: जी जी।
1: लेकिन इतिहास और वर्तमान दोनों इस बात के गवाह अंजलि कि समाज को बदलने वाले अधिकांश लोग साधारण ही होते हैं।
0: जी जी।
1: वे हमारे और आपके जैसे सामान्य लोग होते हैं श्रोताओं, जिनके पास केवल एक सच्चा विचार, दृढ़ संकल्प और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना होती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से इस विषय से जुड़ी हुई ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन क्यों ना कार्यक्रम की शुरुआत का पहला गीत हम हमारे श्रोता साथियों को सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए साथी सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। और जैसा कि गीत से पहले हमारी बातें रही थी और हमने आपको कहा भी था कि आज का विषय है समाज को बदलने वाले लोग साधारण होते हैं। अंजलि, सच्चाई ये है कि समाज का निर्माण और परिवर्तन किसी एक बड़े व्यक्ति के हाथों नहीं होता, बल्कि लाखों साधारण लोगों के छोटे छोटे प्रयासों से होता है।
1: जी जी,
0: यही लोग समाज में नई सोच, नई चेतना और नए मूल्यों का संचार करते हैं। इसलिए कहा भी गया है कि साधारण इंसान की सोच महान होती है और यही बदलता है समाज की पहचान को।
1: जी हाँ जागृति जी, जब भी हम समाज में बड़े बदलाव की बात करते हैं तो अक्सर हमारे मन में किसी बड़े नेता, प्रसिद्ध व्यक्ति, उद्योगपति या किसी प्रभावशाली व्यक्ति की छवि उभरती है। हमें लगता है कि समाज को बदलने का काम केवल वही लोग कर सकते हैं जिनके पास धन, शक्ति, पद और प्रसिद्धि हो।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन जागृति जी, इतिहास और वर्तमान दोनों हमें एक अलग सच्चाई बताते हैं। सच्चाई यह है कि समाज को बदलने वाले अधिकांश लोग साधारण ही होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: वे हमारे जैसे होते हैं, वे किसी बड़े परिवार में जन्म नहीं लेते, उनके पास कोई विशेष शक्ति नहीं होती, लेकिन उनके पास एक चीज होती है, वह है समाज के प्रति जिम्मेदारी और बदलाव लाने का साहस।
0: जी हाँ,
1: आज कार्यक्रम में जैसा कि हम बात ही कर रहे हैं तो श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि बदलाव की शुरुआत किसी बड़े मंच से नहीं होती है। समाज में परिवर्तन अचानक नहीं आते, कोई क्रांति एक दिन में नहीं आती। हर बदलाव किसी एक व्यक्ति के मन में उठे छोटे से विचार से शुरू होता है।
0: जी हाँ अंजलि, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों को हम बताएं तो समाज परिवर्तन की शुरुआत हमेशा एक छोटे कदम से होती है, जैसा कि आपने बताया था। जब कोई व्यक्ति किसी समस्याओं को देखकर ये सोचता है कि ये काम कोई और क्यों करे, मैं क्यों नहीं, तभी बदलाव का बीज बोया जाता है। एक शिक्षक जो गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा देता है, एक किसान जो नई तकनीक अपनाकर दूसरों को प्रेरित करता है, एक महिला जो अपने गाँव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाती है, या एक युवा जो पर्यावरण संरक्षण के लिए अभियान चलाता है। ये सारे साधारण लोग, लेकिन इनके कार्य असाधारण परिणाम देते हैं।
1: जी हाँ,
0: समाज में परिवर्तन लाने वाले लोगों की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है अंजलि कि वे परिस्थितियों का रोना नहीं रोते, वे समस्याओं की शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने का प्रयास करते हैं।
1: बिल्कुल।
0: जहाँ अधिकांश लोग कठिनाइयों को देख कर पीछे हट जाते हैं, वही परिवर्तनकारी लोग आगे बढ़कर जिम्मेदारी भी उठाते हैं।
1: जी हाँ जागृति जी, आपने सही कहा, जो व्यक्ति समाज के बीच रहता है वही उसकी समस्याओं को सबसे अच्छी तरह समझता है। एक माँ बच्चों की शिक्षा की समस्या को समझती है, एक किसान पानी और खेती की चुनौतियों को समझता है।
0: बिल्कुल।
1: एक मजदूर रोजगार की कठिनाइयों को जानता है और एक शिक्षक बच्चों के भविष्य की चिंता करता है। श्रोता साथियों, जब ये लोग समाधान खोजने का प्रयास करते हैं तब वास्तविक परिवर्तन की शुरुआत होती है। यही कारण है जागृति जी कि समाज को बदलने की शक्ति अक्सर उन्हीं लोगों के पास होती है जो समाज के सबसे करीब होते हैं।
0: बिल्कुल।
1: कई बार लोग सोचते हैं कि अकेला व्यक्ति क्या ही कर सकता है, लेकिन श्रोता साथियों सच्चाई यह है कि हर बड़ा आंदोलन किसी एक व्यक्ति के कदम से ही शुरू होता है।
0: बिल्कुल।
1: यदि एक व्यक्ति अपने गांव को स्वच्छ रखने का संकल्प ले जागृति जी, तो दूसरे लोग उसे प्रेरित होते हैं।
0: जी हाँ,
1: यदि कोई बेटी शिक्षा प्राप्त कर सफलता हासिल करती है तो वह अनेक अन्य लड़कियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। यदि कोई युवा नशे से दूर रहकर समाज सेवा का मार्ग चुनता है तो वह कई युवाओं के लिए जीवन की दिशा बदल सकता है।
0: जी हाँ,
1: एक दीपक पूरे कमरे का अंधेरा नहीं हटाता, लेकिन वह प्रकाश की शुरुआत अवश्य करता है।
0: बिल्कुल अंजलि, तो कहा भी यह है कि जो समस्या से नहीं घबराता वही समाज में बदलाव लाता है। तो श्रोता साथी, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको यही कहना चाह रहे हैं कि यदि हम इतिहास पर दृष्टि डाल पाए तो अनेक महान व्यक्तियों ने बहुत साधारण परिस्थितियों से अपनी यात्रा शुरू की थी।
1: जी जी,
0: उनके पास न कोई विशेष संसाधन थे और न ही कोई विशेष व्यक्ति, लेकिन उनके भीतर समाज के लिए कुछ अच्छा करने का जुनून था और यही जुनून उन्हें सामान्य से असामान्य बनाता है। वास्तव में महानता जन्म से नहीं आती श्रोताओं, बल्कि कर्मों से आती है। और जो व्यक्ति अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर समाज के हित में सोचता है वही सच्चा परिवर्तनकारी बनता है। समाज को बदलने के लिए बड़े मंच की नहीं श्रोताओं, बल्कि बड़े हृदय की आवश्यकता होती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी। लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना, यही बात करें जागृति जी सच्चा स्वराज और साधारण नागरिक की, तो श्रोता साथियों, सच्चा स्वराज हमें सिखाता है समाज का निर्माण केवल सरकारों से नहीं होता, समाज का निर्माण नागरिकों के व्यवहार, विचार और जिम्मेदारियों से होता है। यदि हम केवल शिकायत करते रहते हैं श्रोता साथियों और स्वयं कुछ नहीं करें तो बदलाव की उम्मीद करना कठिन है, लेकिन यदि हम अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने लगे तो परिवर्तन निश्चित है। स्वराज का अर्थ केवल जागृति जी अधिकार प्राप्त करना नहीं है, स्वराज का अर्थ है अपने कर्तव्यों को समझना और समाज के प्रति उत्तरदायी बनना।
1: जी हाँ,
0: बहुत से लोग बड़े काम करने के अवसर का इंतजार करते हैं, लेकिन वास्तव में श्रोता साथियों, समाज छोटे छोटे कार्यों से बदलता है। किसी जरूरतमंद बच्चे को पढ़ाना, किसी बुजुर्ग की सहायता करना, पेड़ लगाना, पानी बचाना, साफ सफाई रखना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना, अफवाहों से बचाव, सत्य ईमानदारी का पालन करना।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, ये सभी छोटे कार्य दिखाई भले साधारण देते हैं, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है।
1: बिल्कुल,
0: समाज की मजबूती इन्हीं छोटी छोटी अच्छाइयों पर टिकी होती है।
1: जी हाँ अंजलि, क्योंकि समाज को बदलने वाले लोग किसी चमत्कार की प्रतीक्षा नहीं करते, वे स्वयं परिवर्तन का माध्यम बन जाते हैं।
0: बिल्कुल,
1: वे ये नहीं सोचते कि कोई आएगा और बदलाव करेगा, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं ही बदलाव की शुरुआत करूंगा।
0: बिल्कुल,
1: कई बार हम देखते हैं कि लोग सोचते हैं कि उनका छोटा सा प्रयास क्या फर्क ला सकता है, लेकिन श्रोता साथियों, इतिहास बताता है कि बड़े परिवर्तन हमेशा छोटे कदमों से ही शुरू हुए हैं।
0: जी जी,
1: एक पौधा लगाने से हरियाली बढ़ती है, एक बच्चे को पढ़ाने से भविष्य बदलता है, और एक सही विचार से पूरी पीढ़ी प्रभावित हो सकती है। और कहा भी गया है कि बूंद बूंद से सागर बनता है, और छोटे छोटे प्रयास मिलकर बड़े बदलाव का रूप लेते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए श्रोता साथियों, किसी भी अच्छे कार्य को छोटा नहीं समझना चाहिए। समाज को बदलने वाले लोग इसी सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। आज आवश्यकता ऐसे लोगों की है जो ईमानदारी, करुणा, सहयोग और जिम्मेदारी के मूल्यों को अपनाएं। समाज की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं श्रोताओं, बल्कि अच्छे चरित्र और मजबूत मानवीय मूल्यों से होती है। जब साधारण लोग अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाते हैं, तब समाज स्वतः ही बदलने लगता है अंजलि। और हमें समझना होगा श्रोताओं, समाज कोई अलग इकाई नहीं है, समाज हम सब मिलकर बनाते हैं। यदि हम बदलेंगे तो समाज बदलेगा, यदि हमारी सोच सकारात्मक होगी तो समाज भी सकारात्मक बनेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, हर समाज में ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी प्रसिद्धि की इच्छा की सेवा करते रहते हैं, वे किसी सम्मान की अपेक्षा नहीं करते, वे केवल अपने कर्तव्यों को निभाते हैं। कभी कोई व्यक्ति रक्तदान करता है, कोई शिक्षा के लिए सहयोग करता है, कोई जरूरतमंद परिवार की मदद करता है, कोई गांव में स्वच्छता अभियान चलाता है। ये सभी लोग समाज के अनदेखे नायक होते हैं, और यही लोग समाज की असली ताकत हैं।
1: बिल्कुल,
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि हमें क्या करना चाहिए, तो हमें अपने आसपास की समस्याओं को पहचानना है, शिकायत करने की बजाय समाधान का हिस्सा हमें बनना है, समाज के प्रति जिम्मेदारी का भाव विकसित करें, बच्चों में अच्छे संस्कार विकसित करें, सहयोग और सेवा की भावना बढ़ाएं, सकारात्मक सोच अपनाएं और अपने छोटे छोटे कार्यों की शक्ति को समझें। याद रखिए श्रोता साथियों कि हर बड़ा बदलाव किसी साधारण व्यक्ति से ही शुरू होता है।
1: बिल्कुल,
0: कह सकते हैं जागृति जी श्रोता साथियों से कि समाज को बदलने वाले लोग किसी दूसरी दुनिया से नहीं आते, वे हमारे बीच ही रहते हैं। वे वही लोग होते हैं जो परिस्थितियों का इंतजार करने के बजाय पहल करना चुनते हैं। वे वही लोग होते हैं श्रोता साथियों जो ये नहीं पूछते कि कोई और क्यों नहीं कर रहा, बल्कि ये सोचते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ।
1: बिल्कुल,
0: दुनिया में जितने भी सकारात्मक परिवर्तन हुए हैं, उनके पीछे ऐसे ही साधारण लोगों की असाधारण सोच और निरंतर प्रयास छुपे हुए हैं। उन्होंने अपनी सीमाओं का बहाना नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने अपनी ताकत में बदल दिया। उन्होंने संसाधनों की कमी से ज्यादा अपने इरादों की मजबूती पर भरोसा किया।
1: बिल्कुल, और इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम ये कहना चाहेंगे अंजलि कि श्रोताओं, समाज को बदलने वाले लोग किसी विशेष ग्रह से नहीं आते, वे हमारे बीच ही रहते हैं, वे साधारण परिवारों से आते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं, संघर्षों का सामना करते हैं, लेकिन उनके भीतर एक असाधारण संकल्प ही होता है अंजलि।
0: बिल्कुल,
1: और यही संकल्प उन्हें समाज परिवर्तन का वाहक बनाता है। आज यदि हम सच्चे स्वराज का सपना साकार करना चाहते हैं, तो हमें किसी नायक की प्रतीक्षा करने के बजाय स्वयं जिम्मेदारी उठानी होगी।
0: बिल्कुल,
1: हर व्यक्ति अपने क्षेत्र में ईमानदारी, सेवा और जागरूकता का दीप जलाएगा। जब करोड़ों साधारण लोग जागेंगे, तब समाज में असाधारण परिवर्तन अवश्य आएगा। इसलिए याद रखिए, इतिहास उन लोगों को याद नहीं रखता जो केवल परिस्थितियों की शिकायत करते हैं, इतिहास उन लोगों को याद रखता है जो साधारण होते हुए भी असाधारण साहस दिखाते हैं और समाज को नई दिशा देते हैं। तो श्रोता साथियों, यदि अगर आप सोचते हैं कि आप छोटे हैं और कुछ नहीं बदल सकते, तो याद रखिए एक छोटी सी चिंगारी पूरे अंधकार को चुनौती दे सकती है। अंजलि,
2: बिल्कुल।
1: तो हमारे श्रोता साथियों को हम यही कहना चाहेंगे कि समाज बदलने का अपने भीतर अरमान रखिए। सच्चा स्वराज तभी आएगा इस संसार में जब हर नागरिक बदलाव की जिम्मेदारी अपने हाथों में रखेगा।
0: बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हम बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जान पाए। आशा करते हैं कि सभी बातें हमारे श्रोता साथियों को अवश्य पसंद आई होगी, क्योंकि अब समय हो चला है हमारे आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
1: जी हाँ,

0: साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो भी बातें रही कार्यक्रम सच्चा स्वराज के माध्यम से वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, मगर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वाकधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vakdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर
2: और आपके अपने साथी अंजलि पारशर का प्यार भरा
3: नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
2: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ
2: श्रोता साथियों, आज हम कार्यक्रम में ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर घर, हर परिवार और हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है बिगड़ती जीवन शैली से स्वास्थ्य पर नुकसान और सही जीवन शैली हम कैसे अपनाएं।
0: जी हाँ,
2: क्योंकि हम देखते हैं कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सुविधाएं तो बहुत सारी प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे अपनी सेहत से दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल,
2: देर रात तक जागना, घंटों मोबाइल चलाना, जंक फूड खाना, शारीरिक श्रम से बचना और तनाव में रहना, ये सब हमारी रोजमर्रा की आदतों का हिस्सा बनता जा रहा है।
0: जी हाँ,
2: लेकिन श्रोता साथियों, क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटी छोटी आदतों का हमारे शरीर मन पर कितना बड़ा असर पड़ता है? तो आज हम इसी विषय पर विस्तार से बात करेंगे और समझेंगे कि बिगड़ती जीवन शैली से क्या स्वास्थ्य नुकसान हो रहे हैं और सही जीवन शैली हम कैसे अपनाएं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, आपने सही कहा, तो बातें ढेर सारी होंगी आज के इस कार्यक्रम में श्रोता साथियों से हमारी, लेकिन शुरुआत में जैसा कि गीत संगीत के साथ मनोरंजन करना कार्यक्रम का दस्तूर है,
2: बिल्कुल,
1: तो इसी दस्तूर को निभाते हुए हमारे साथियों को हम सुनवाते हैं यहाँ पर एक प्यारा सा गीत।
2: बिल्कुल
0: जी, बिल्कुल कशिश, आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसे कि दोस्तों, गीत से पहले बातचीत की शुरुआत हो चुकी है और विषय के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं बिगड़ती जीवन शैली से होने वाले स्वास्थ्य पर नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली को हम कैसे अपनाएं इस विषय पर।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि हम सभी देख रहे हैं दोस्तों कि आज के समय में विज्ञान और तकनीक ने हमारे जीवन को पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक तो बना ही दिया है।
1: जी जी,
0: मोबाइल फोन, इंटरनेट, ऑनलाइन सेवाएं, अंजलि जी, फास्ट फूड और आधुनिक साधनों ने हमारी दैनिक दिनचर्या को काफी आसान बनाया है।
1: जी हाँ,
0: लेकिन इसके साथ ही हमारी जीवन शैली पर कई ऐसे बदलाव भी हुए हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बनते जा रहे हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं साथियों जहाँ हमारे पास समय की कमी है, तनाव है, अनियमित खानपान बढ़ता जा रहा है, शारीरिक गतिविधियों की कमी है और डिजिटल उपकरणों पर बढ़ती निर्भरता है। इन सभी के कारण हमारे जीवन को कई ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
2: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि जीवन शैली का अर्थ है हमारे रोजमर्रा का रहन सहन, खान पान, सोने जागने का समय, काम करने का तरीका और हमारी आदतें। श्रोता साथी, जब हमारी दिनचर्या असंतुलित होती है तो खान पान पौष्टिक न होने के कारण हम देखते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है वो खराब होने लगता है। शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती है और मानसिक तनाव बढ़ जाता है, तब इसे बिगड़ती जीवन शैली कहा जाता है।
1: बिल्कुल,
2: आज तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है लेकिन इसके साथ साथ शारीरिक सक्रियता भी कम करती है।
1: बिल्कुल,
2: लोग पैदल चलने की बजाय वाहन का उपयोग करते हैं, घर का खाना छोड़कर बाहर का भोजन पसंद करते हैं।
1: जी हाँ,
2: मनोरंजन के लिए खेलकूद की जगह मोबाइल और टीवी पर निर्भर हो जाते हैं।
1: जी हाँ,
2: इस तरीके से हम कह सकते हैं कि बिगड़ती जीवन शैली इस तरीके से हमारी बिगड़ रही है।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि आजकल लोग पौष्टिक भोजन के बजाय जंक फूड, फास्ट फूड और तले भुने पदार्थों का अधिक सेवन करते हैं। ये खाद्य पदार्थ शरीर के आवश्यक पोषक तत्वों को कम कर देते हैं जिसके कारण हम देखते हैं कि बीमारियां बढ़ने लगती हैं। साथ ही हम देखते हैं कि तकनीकी सुविधाओं के कारण

0: को बेहतर बना सकते हैं।
1: बिल्कुल,
0: जैसा कि आपने बताया कि वर्तमान में अनियमित दिनचर्या के कारण लोगों की जीवन शैली बिगड़ रही है। लोग देर रात तक मोबाइल चलाते हैं, सुबह देर से उठते हैं, जिसके कारण उनकी नींद पूरी नहीं होती है और उनके शरीर को आराम नहीं मिल पाता है। दोस्तों, इन सभी चीजों से थकान, चिड़चिड़ापन और कई स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही हम देखते हैं कि स्वास्थ्य पर कई सारे नुकसान पड़ते हैं, जैसे कि मोटापे की समस्या बढ़ जाती है, मधुमेह का खतरा, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मानसिक स्वास्थ्य पर असर और नींद की समस्या, और साथ ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है।
0: बिल्कुल,
1: इस तरीके से कशिश और मनीषा, हम कह सकते हैं श्रोता साथियों से कि बिगड़ती जीवन शैली के कारण हमारे स्वास्थ्य पर कई सारे नुकसान होते हैं।
0: जी।
1: आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि स्वस्थ जीवन शैली क्यों जरूरी है और हम इसे कैसे अपना सकते हैं। लेकिन अभी मन कर रहा है एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करने का।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना कि बिगड़ती जीवन शैली क्या है और इसका स्वास्थ्य पर क्या असर होता है।
1: जी हाँ,
0: यही बात करते हैं सही जीवन शैली क्यों जरूरी है। तो श्रोता साथियों, सही जीवन शैली केवल बीमारी से बचने का माध्यम नहीं है, बल्कि बेहतर जीवन जीने का आधार है।
1: जी हाँ,
0: एक स्वस्थ जीवन शैली व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत, मानसिक रूप से संतुलित और सामाजिक रूप से सक्रिय बनाती है। इससे जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है और व्यक्ति अधिक खुश और ऊर्जावान महसूस करता है।
1: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये तो आपने हमारे श्रोता साथियों को बताया कि सही जीवन शैली क्यों अपनाना जरूरी है। यही अगर हम श्रोता साथियों को बताएं कि सही जीवन शैली वे कैसे अपनाएं,
2: बिल्कुल,
1: तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें संतुलित आहार लेना है। भोजन में हरी सब्जियां, फल, दालें, अनाज, दूध और सूखे मेवे शामिल करें साथियों। अधिक तेल, नमक और चीनी वाले खाद्य पदार्थों का सेवन कम करें। साथ ही श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि प्रतिदिन कम से कम 30 से 45 मिनट तक व्यायाम करें। योग, पैदल चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, ये सब हम कह सकते हैं कि अंजलि जी और कशिश हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं। साथ ही श्रोता साथियों, आपको पर्याप्त नींद लेनी है। प्रतिदिन 7 से 8 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है। समय पर सोने और जागने की आदत विकसित करें। और श्रोता साथियों, आपको पर्याप्त पानी भी पीना है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए।
0: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। अब यही अगर बात करें कि स्वस्थ जीवन शैली में योग का क्या महत्व है, तो देखते हैं कि भारत की प्राचीन योग परंपरा आज पूरी दुनिया में अपनाई जा रही है।
1: जी हाँ,
0: क्योंकि योग शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करता है। देखा जाता है श्रोता साथियों कि जब हम अपने जीवन शैली में योग को शामिल करते हैं तो इसके ढेर सारे लाभ होते हैं। जैसे कि तनाव कम होता है, शरीर को लचीला यह बनाता है, मानसिक शांति देता है, रक्त संचार को बेहतर करता है और इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है साथियों।
1: जी हाँ,
0: ऐसे में आपको प्रतिदिन कुछ मिनट योग और ध्यान करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सकता है।
3: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। यही हम श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि नशे से दूर रहें। तंबाकू, शराब और अन्य नशीले पदार्थ जो होते हैं वो स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। इनसे दूरी बनाकर रखना स्वस्थ जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने से बीमारियों का पता चलता है और प्रारंभिक अवस्था में ही उसका इलाज किया जा सकता है।
1: जी हाँ,
3: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन शैली केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है। परिवार यदि पौष्टिक भोजन, नियमित दिनचर्या और सकारात्मक वातावरण को बढ़ावा दे तो बच्चों में भी अच्छी आदतें विकसित होती हैं।
1: बिल्कुल,
3: स्कूल, पंचायत, स्वयंसेवी संस्थाएं, सामुदायिक संगठन भी स्वास्थ्य जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, स्वास्थ्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बाजार से खरीदा जा सके।
1: हाँ,
3: यह हमारी रोजमर्रा की आदतों से बनता है और उन्हीं आदतों से बिगड़ता भी है। आधुनिक जीवन की सुविधाएं हमारे लिए उपयोगी है, लेकिन जब सुविधाएं हमारी सक्रियता छीनने लगे, स्वास्थ्य पोषण पर भारी पड़ने लगे और स्क्रीन हमारे परिवार, प्रकृति और स्वयं से हमारा रिश्ता कमजोर करने लगे, तब हमें रुककर अपनी जीवन शैली पर विचार करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
3: याद रखिए श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं है, इसका अर्थ है ऊर्जा से भरपूर शरीर, शांत मन, सकारात्मक सोच और जीवन के प्रति उत्साह। अच्छी सेहत किसी एक दिन के प्रयास से नहीं बनती, बल्कि छोटे छोटे अच्छे निर्णयों से बनती है। समय पर सोना, संतुलित भोजन करना, नियमित व्यायाम करना, तनाव को नियंत्रित रखना और अपने शरीर की जरूरतों को समझना, इसी के माध्यम से हम अपने स्वास्थ्य को सही रख पाते हैं।
1: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं कि आज की युवा पीढ़ी सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स और डिजिटल दुनिया में अधिक समय बिताती है।
2: बिल्कुल,
1: इसीलिए युवाओं को विशेष रूप से अपनी दिनचर्या पर ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि श्रोता साथियों, युवा वर्ग स्वस्थ जीवन शैली को अपनाए तो वह न केवल स्वस्थ रहेंगे बल्कि पूरे समाज को भी प्रेरणा देंगे। साथ ही हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने में परिवार और समाज की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
2: बिल्कुल,
1: माता पिता बच्चों को अच्छी आदतें सिखाएं, विद्यालय स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा दी और समाज में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
0: बिल्कुल, बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं साथियों के बिगड़ती जीवन शैली आज हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ी है। अनियमित दिनचर्या, असंतुलित भोजन, तनाव, डिजिटल उपकरणों पर ज्यादा निर्भरता, ये हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे लेकिन नुकसान तो पहुंचा रही है। श्रोता साथियों, यदि समय रहते हमने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो भविष्य में गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का सामना हमें करना पड़ सकता है।
1: बिल्कुल,
0: ऐसे में स्वस्थ जीवन शैली अपनाना कोई कठिन कार्य नहीं है। छोटी छोटी आदतें जैसे कि संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम, पर्याप्त नींद, सकारात्मक सोच और नशे से दूरी साथियों हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है।
3: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें हो गई है और अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: जी हाँ, बिल्कुल जी।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागदरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
2: इसी के साथ श्रोता साथियों, आप हमारी ईमेल आईडी लिख लीजिए, इसके जरिए भी आप अपने राय सुझाव हमें पहुंचा सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
0: तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
2: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को
3: नमस्कार।

हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। आप सभी सुन रहे हैं दोस्तों आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में, जहां हम बात करते हैं दोस्तों उन ख्वाबों की जो आंखों से निकलकर हकीकत बनना चाहते हैं और उन हौसलों की भी जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। कार्यक्रम के माध्यम से आज एक नए विषय को लेकर हम बातचीत करेंगे। साथियों, आज का हमारा विषय है खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है। तो बातें ढेर सारी होंगे इस विषय को लेकर, जानेंगे कि खुद पर विश्वास का क्या मतलब है और ऐसा होना क्यों जरूरी है। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है, तो क्यों ना दोस्तों पहले मनोरंजन इस गीत के साथ हम करें। तो आप सभी बने रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM के कार्यक्रम सपनों की उड़ान में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम सपनों की उड़ान में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुकी हूँ कि आज हम बात कर रहे हैं कि खुद पर विश्वास क्यों जरूरी है। दोस्तों, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है जब हम अपने ही कदमों पर शक करने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हम ये नहीं कर पाएंगे, हम दूसरे जितने अच्छे नहीं हैं। लेकिन साथियों, सच क्या है? सच तो ये है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा खुद पर विश्वास ही है। खुद पर विश्वास का मतलब है दोस्तों अपने फैसलों पर भरोसा रखना, अपनी क्षमताओं को पहचानना और गिरकर भी दोबारा उठने की हिम्मत रखना। क्योंकि दोस्तों, जब इंसान खुद पर विश्वास करता है तो वो मुश्किल से मुश्किल रास्ते को भी पार कर पाता है। अगर इस बात को एक छोटी सी कहानी के माध्यम से मैं आपको समझाऊं, तो दोस्तों एक बार की बात है कि एक छोटा सा लड़का था जिसका नाम था आरव। उसे गाना बहुत पसंद था, लेकिन उसकी आवाज उतनी अच्छी नहीं थी। जब भी वो गाता, लोग उसका मजाक उड़ाते थे। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होने लगा और उसने गाना छोड़ दिया। लेकिन उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा आरव, अगर तुम खुद पर भरोसा नहीं करोगे तो कोई और भी तुम पर भरोसा नहीं करेगा। यह सुनकर आरव को थोड़ा अच्छा लगा। उसने फिर से कोशिश की, हर दिन प्रैक्टिस की, गलतियां भी की और उन गलतियों से सीखा भी और आगे बढ़ता गया साथियों। और एक दिन क्या हुआ, आरव यानी कि वही लड़का जो स्टेज पर खड़ा था और लोग उसकी आवाज की तारीफ कर रहे थे, क्यों? क्योंकि उसने खुद पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि आरव की थी। जैसा कि हमने कहानी के शुरुआत में ही जाना कि जब लोग आरव का मजाक उड़ाते थे तो उसकी वजह से आरव का आत्मविश्वास थोड़ा सा डगमगा गया था। लेकिन उसे प्रोत्साहित करने के लिए उसकी माँ उसका सहारा बनी और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन यहाँ पर आरव ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी माँ की बात की गहराई को समझा और फिर से कोशिश करना शुरू किया साथियों। और अंत में आरव सफल हो ही गया। क्योंकि हम देखते हैं दोस्तों कि खुद पर विश्वास करना एक, कह सकते हैं कि एक अदृश्य ताकत होती है जिसे हम सभी देख नहीं पाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि खुद पर विश्वास करना इतना जरूरी क्यों है? तो दोस्तों, आपको बताना चाहूंगी कि जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो आप दूसरों की बातों से जल्दी नहीं टूटते, आपके फैसले बेहतर होते हैं, यानी कि आपको किसी भी निर्णय लेने में कंफ्यूजन कम होता है और आप स्पष्ट तरीके से सोच पाते हैं साथियों। आप डर से बाहर निकलते हैं, क्योंकि डर तो हमेशा रहेगा, लेकिन विश्वास आपको उससे लड़ना सिखाएगा साथियों। और हम जैसा कि जानते हैं कि बिना विश्वास की कोई भी सपना कभी पूरा नहीं होता, बल्कि अधूरा रह जाता है। इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम खुद पर भरोसा रखेंगे तो हम आगे भी बढ़ेंगे, हम फैसले भी अच्छी तरीके से ले पाएंगे और हमारी सोचने की क्षमता भी दोस्तों स्पष्ट होगी, जिससे हम कभी असफल नहीं होंगे और जो लक्ष्य हमने तय किया है उस पर हम बेहतर तरीके से काम भी कर पाएंगे और सफलता के मुकाम पर जरूर पहुँचेंगे साथियों। तो जैसा कि बातें मैं आपसे कार्यक्रम के माध्यम से कर ही रही हूँ और विषय हमारा चल रहा है बातचीत का कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है और ऐसा हम कर भी कैसे सकते हैं, तो ये बातें आगे भी होंगी। लेकिन अभी मैं आपको सुनवाना चाहूंगी यहाँ पर एक प्यारा सा गीत। तो आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली बातचीत की ओर। जैसा कि कार्यक्रम सपनों की उड़ान में विषय हमारा बहुत ही अच्छा चल रहा है कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, और जैसा कि हम गीत से पहले जान पाए थे कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, अब यहीं अगर दोस्तों आपको बताएं तो जब हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, खुद पर विश्वास की कमी हर काम को बिगाड़ सकती है। आप हर काम में डर महसूस करेंगे, दूसरों से तुलना आप अपनी करते रहेंगे, और मौके आपके सामने आएंगे लेकिन आप उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप अपने ही सपनों से दूर होते चले जाएंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई जब हम खुद पर विश्वास नहीं करते हैं तो क्या होता है। अब यही सबसे महत्वपूर्ण बात अब हम यहाँ पर ये जान लेते हैं कि खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाया जाए। तो दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपका आत्मविश्वास कम हो रहा है तो आपको हर दिन कुछ अच्छा करना चाहिए, जैसे कि आप खुद की तारीफ कर सकते हैं, आप खुद को नई नई चीजों के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। दोस्तों, नेगेटिव लोगों से आप दूर रहें, क्योंकि जो लोग आपको नीचे गिराते हैं उनसे दूरी बनाना बहुत जरूरी है। इसी के साथ दोस्तों, गलती करना गलत नहीं है लेकिन उन्हें दोहराना गलत है, इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी है, ना कि उन गलतियों को दोहराना है। साथ ही दोस्तों, खुद से आप पॉजिटिव बातें करें, क्योंकि दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब हमारे अंदर नकारात्मकता रखते हैं तो उसकी वजह से भी हमारे कई काम बिगड़ जाते हैं। इसलिए आपको खुद पर भरोसा रखना चाहिए। आप खुद से ये कह सकते हैं कि मैं हर काम को कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और मैं बेहतर बन रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, ऐसे पॉजिटिव बातें खुद से करने से होगा ये कि आपके अंदर सकारात्मक चीजें आएंगी, और सकारात्मक होने से आपके सारे काम दोस्तों अच्छे से हो पाएंगे। साथ ही अपने लक्ष्य को भी स्पष्ट रूप से तैयार करें, क्योंकि जब लक्ष्य साफ होगा तो विश्वास अपने आप ही बढ़ेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम कह सकते हैं कि खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है। अगर दोस्तों आप आज ये सोच रहे हैं कि मैं नहीं कर सकता, तो एक बार रुकिए और खुद से ये पूछिए कि क्या आपने कोशिश की, क्या आपने खुद पर भरोसा किया। अगर जवाब नहीं आता है दोस्तों, तो आज से ही आपको शुरुआत करनी है खुद पर विश्वास करने की, क्योंकि जब तक आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, तब तक कोई और भी आप पर विश्वास नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों, प्रयास करना न छोड़ें, क्योंकि जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं तो हम चाहकर भी उस काम में सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं। दोस्तों, हमेशा याद रखें कि दुनिया में हर सफल इंसान की कहानी एक जैसी होती है। उन्होंने खुद पर विश्वास किया जब कोई और उनके साथ नहीं था, तब भी उन्होंने खुद पर विश्वास रखा। जब रास्ते मुश्किल थे, जब हालात उनके खिलाफ थी, लेकिन उन्होंने फिर भी कभी हार नहीं मानी, और आज वही लोग हमारी प्रेरणा बन चुके हैं। साथियों, हम देखते हैं श्रोता साथियों कि हर सफल इंसान के पीछे कोई ना कोई अच्छी आदत छिपी हुई होती है, और उसी अच्छी आदत को हमें पहचानना है। क्योंकि दोस्तों, सफल तो हम सभी होना चाहते हैं, हर कोई अपने अपने क्षेत्र में सफल होना चाहता है, लेकिन बस कमी ये रह जाती है कि हम खुद पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। इसलिए आज से खुद पर विश्वास करें, खुद से ये कहें कि जो काम दूसरे कर सकते हैं वो काम मैं भी कर सकता हूँ, जिस काम में मैं असफल हुआ हूँ उसमें सफलता प्राप्त करना मेरा कर्तव्य है। अगर ऐसी सकारात्मक बातें आप खुद से करेंगे दोस्तों, तो आपको अपने लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम सपनों की उड़ान में हमने जाना कि खुद पर विश्वास करना क्यों जरूरी है, तो ऐसे में याद रखें दोस्तों कि आपका सबसे बड़ा दोस्त आप खुद हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आत्मविश्वास है। इसलिए अपने सपनों को पंख दीजिए और एक लंबी उड़ान भरिए श्रोताओं, क्योंकि आसमान उन्हीं का होता है जो खुद पर विश्वास रखते हैं। इन्हीं आशाओं के साथ अब जैसा कि बातें मेरी आपसे कार्यक्रम में ढेर सारी हो चुकी है, और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा मैं जरूर लूंगी दोस्तों, लेकिन जाने से पहले आपको मनोरंजन करवाना चाहूंगी एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम सपनों की उड़ान में।

तो दोस्तों ये था हमारा आज का कार्यक्रम सपनों की उड़ान। अंत में कार्यक्रम के माध्यम से आपको यही कहना चाहेंगे कि जिंदगी की इस दौड़ में सबसे बड़ा सहारा अगर कोई है दोस्तों तो वो है आपका खुद पर विश्वास। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, रास्ते कितने भी उलझे हुए क्यों न हो दोस्तों, अगर आप खुद पर भरोसा रखते हैं तो कोई भी मंजिल दूर नहीं होती। कभी भी खुद को कम मत आंकिए क्योंकि आपके अंदर वो ताकत है साथियों जो आपको आपकी हर मंजिल तक पहुंचा सकती है। तो आज से ही एक वादा कीजिए खुद से, अपने सपनों से और अपनी मेहनत से कि चाहे जो भी हो जाए आप खुद पर विश्वास कभी नहीं खोएंगे। क्योंकि दोस्तों उड़ान पंखों से नहीं हौसलों से होती है और हौसलों की शुरुआत होती है खुद पर विश्वास से। इन्हीं बातों के साथ अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूं कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, कार्यक्रम सपनों की उड़ान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए दोस्तों आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो दोस्तों आपसे हमारी फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम सपनों की उड़ान में एक नई उड़ान भरे विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ दोस्तों नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपने आपने मैं देखाए तो आपने आपने पाए वारा राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाइने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: पता है लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
4: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
3: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।